0: डॉक्टर जयशंकर मजकूरा चार खलीजी मुल्कों के वज़राए खारजा और आला क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं ताकि दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग दिया जा सके और इलाकाई हालात व वाक़यात के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जा सके। महाराष्ट्र के साहिली और घाट के इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने पालघर, रायगढ़, नासिक और पुणे के घाट इलाकों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया है। दूसरी जानिब मुंबई समेत साहिली अजला और शुमाली महाराष्ट्र के कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां बाज मुकामात पर औसत से शदीद बारिश का इम्कान है। शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र इंतजामिया ने एहतियाती इकदाम किए हैं, जबकि NDRF और SDRF की टीमों को हसास इलाकों में हाई अलर्ट पर रखा गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: महाराष्ट्र के घाट के इलाकों में इंतहाई शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है, जहां लोनावाला में 600 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। मिट्टी के तोदे खिसकने के खतरे के बायस कई सड़कों पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया है, जबकि मुतअद्दिद सियाहती मकामात को एहतियातन बंद कर दिया गया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसी बारिश की पेशगोई के बाद इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी किया है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर मुंबई, थाने, नवी मुंबई, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और नासिक, सतारा और पुणे के हसास घाट इलाकों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। गुज़श्ता रोज़ मुंबई समेत कई साहिली जिलों में 100 से 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज साहिली कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और वस्ती महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मुल्क के शुमाल मशरक के बाद इलाकों, उड़ीसा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में हल्की से औसत बारिश का इम्कान है। भारत के पहलवानों ने थाईलैंड के शहर पाटाया में हुए 20 साल की उम्र तक के एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पहलवानों ने मजमूई तौर पर 20 तमगे अपने नाम किए, जिनमें 4 तलाई, 7 चांदी और 9 कांसे के तमगे शामिल हैं। भारत ने मुख्तलिफ वजन के जुमरों में मुसलसल उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और खवातीन की कुश्ती और मर्दों के फ्री स्टाइल दोनों जुमरे के टीम मुकाबलों में टॉप 3 में जगह बनाई। फुटबॉल में स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मैच का वाहिद और फैसलाकुन गोल मिकेल मेरिनो ने दूसरे हाफ के पहले मिनट में किया। इधर पुर्तगाल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ऐलान किया है कि वो अपनी टीम के प्री क्वार्टर फाइनल से बाहर हो जाने के बाद अगले फीफा वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
2: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर जकार्ता पहुंचे, सदर प्राबोवो सुबियांतो ने किया इस्तकबाल। इसी खबर को रोजनामा इनकलाब और दीगर अखबारात ने भी अपने सफ़े अव्वल पर पेश किया है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के मामले में NIA की जिमनी चार्जशीट में हाफिज सईद मुलजिम करार, इस खबर को बेशतर अखबारात ने अपने पहले सफ़े पर अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप लिखता है, मगरबी बंगाल में राज्यसभा की 3 सीटों पर 24 जुलाई को होगा जिमनी इंतखाब। फीफा आलमी कप में नॉर्वे ने 5 बार की चैंपियन ब्राजील को 2-1 से शिकस्त देकर पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। इस बातचीत का मकसद भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे स्ट्रेटजिक शराकतदारी को नई रफ्तार देना है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि पिछले 5 बरसों के दौरान इमदाद बाहमी की वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ अफराद की जिंदगी में नई तवानाई पैदा की है। पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में मुजाहरीन ने पाकिस्तान की हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो 9 जुलाई को हतमी और फैसलाकुन एहतजाज किया जाएगा। और भारत ने पाटाया में मुनक़िदा 20 साल तक की उम्र की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 4 तमगों समेत 20 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
3: आकाशवाणी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडिया वेव 483.1।

0: मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: दिनांक 2 जुलाई से 8 जुलाई तक राज्य भर में मनाया जा रहा है बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं।
2: बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है अब भ्रष्टाचार के खिलाफ।
1: भ्रष्टाचार की शिकायत टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल करें या संपर्क करें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो अथवा विशेष निगरानी इकाई कार्यालय में।
2: भ्रष्टाचार मुक्त बिहार।
1: निगरानी विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार मृत रैयतों की जमाबंदी स्वयं अपडेट करेगी। अपर समाहर्ता और भूमि सुधार उप समाहर्ता हर महीने करेंगे अंचलवार समीक्षा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के 4वें वर्ष में प्रवेश के लिए CGPA की बाध्यता खत्म। और मौसम विभाग ने आज कटिहार, किशनगंज, बांका, भागलपुर और पश्चिम चंपारण जिले में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार मृत रैयतों की जमाबंदी स्वयं अपडेट करेगी। ऐसे रैयतों के उत्तराधिकारियों को अपने नाम से दाखिल खारिज कराने के लिए अब अंचलों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। विभागीय मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि अपर समाहर्ता और भूमि सुधार उप समाहर्ता प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह में अंचलवार समीक्षा करेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि राजस्व कर्मचारी जन्म मृत्यु निबंधन अभिलेख, चौकीदारी रिपोर्ट, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मृत जमाबंदी धारकों की पहचान करेंगे। यह कर्मचारी आवश्यक जांच के बाद उत्तराधिकारियों से संपर्क कर दस्तावेज प्राप्त करेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार

0: किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगी।
1: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बाइलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बाइलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम सीएससी की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं, 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं, 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
0: श्री शाह ने एक राष्ट्रीय रैंकिंग ढांचा शुरू करने की भी घोषणा की। इसके अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली सहकारी समितियों को मान्यता दी जाएगी और उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रदेश के सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के 4वें वर्ष में प्रवेश के लिए 7.5 CGPA की बाध्यता खत्म कर दी गई है। लोक भवन के अनुसार संबंधित पाठ्यक्रम के अध्यादेश में संशोधन कर यह शर्त खत्म की गई है। संशोधन के बाद अब 6 सेमेस्टर पूरा करने वाले सभी विद्यार्थियों को 7वें सेमेस्टर यानी 4वें वर्ष में प्रवेश मिलेगा। किसी भी विद्यार्थी को केवल कम CGPA के कारण 4वें वर्ष में जाने से नहीं रोका जाएगा। इस बारे में राज्यपाल सह कुलाधिपति के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि संशोधित अध्यादेश को राज्यपाल की स्वीकृति मिल चुकी है। जल्द ही सभी विश्वविद्यालयों को इसके अनुरूप कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर पार्क या सड़कें बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा है कि राष्ट्र निर्माण में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान से नई पीढ़ी को परिचित कराने के लिए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रत्येक जिले में स्थानीय प्रशासन उपलब्ध भूमि और आवश्यकताओं के आधार पर किसी पार्क या सड़क का चयन करेगा। आवश्यकता पड़ने पर नए पार्क या सड़क का भी निर्माण कराया जाएगा। इधर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह समेत अन्य गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश भर में आज सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अररिया जिले के फॉरबिसगंज प्रखंड की हरिपुर पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में भाग लेंगे। इस दौरान वे लोगों की समस्याएं सुनेंगे। गौरतलब है कि आज लोगों की समस्याओं के प्रभावी और समयबद्ध समाधान के लिए प्रदेश के सभी प्रखंडों में प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक व्यक्ति शिकायत या समस्या के लिए सहयोग हेल्पलाइन 1100 या सहयोग पोर्टल पर संपर्क कर सकते हैं। विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले 11 और 12 जुलाई को गया जी में विधायकों का 2 दिवसीय प्रबोधन होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। कार्यक्रम में लोकसभा की संस्था प्राइड के प्रशिक्षक विधानसभा सदस्यों को विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देंगे। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। कल नामांकन के पहले दिन राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के प्रत्याशी उपेंद्र सहनी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। प्रत्याशी 13 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे। मतदान 30 जुलाई को होगा, वहीं मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। उपचुनाव के लिए राजद ने रेखा कुमारी को उम्मीदवार बनाया है, वहीं एनडीए की ओर से अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। इस सीट से जनसुराज पार्टी से प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण

0: इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। जदयू के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में मंत्री अशोक चौधरी का बयान उनका निजी राय है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री कुमार ने स्पष्ट किया है कि यह पार्टी या सरकार की राय नहीं है।
1: उनकी निजी राय हो सकती है, हमारी पार्टी की राय नहीं है, सरकार की राय नहीं है। जो लोग इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं उनको समझ बूझ करके बातचीत करना चाहिए या समझ बूझ के बातचीत रखना चाहिए।
0: प्रदेश में पत्थर भूखंडों की बंदोबस्ती अब ई नीलामी सह निविदा का माध्यम से कराई जाएगी। राज्य सरकार ने इस कार्य की जिम्मेदारी जिला समाहर्ताओं को देने का निर्णय लिया है। खान और भूतत्व विभाग के अनुसार अब खनन पट्टों का आधार मूल्य पहले की तुलना में अधिक होगा। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक खनन पट्टे में उपलब्ध पत्थर की वास्तविक मात्रा के आधार पर न्यूनतम सुरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाएगा। इससे ई नीलामी में प्रतिस्पर्धा बढ़ने और अधिक राजस्व मिलने की संभावना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों तक राज्य में बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। विभाग ने आज कटिहार और किशनगंज जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि बांका, भागलपुर और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
1: दिनांक 7 जुलाई राज्य के अधिकांश भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के बांका, भागलपुर एवं पश्चिम चंपारण जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के कटिहार एवं किशनगंज जिलों में एक दो स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान भागलपुर में सबसे अधिक 47.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। प्रदेश के प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर हेलीकॉप्टर से पर्यटन के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। पर्यटन विभाग ने मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 15 जुलाई से शुरू होगी। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग का लिंक अभी तक लाइव नहीं हुआ है। इस संबंध में बिहार पर्यटन और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। विभाग ने लोगों से थर्ड पार्टी वेबसाइट या एजेंट के माध्यम से बुकिंग या भुगतान नहीं करने की अपील की है। मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर से संपर्क में रहने के मामले में आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक के पास से एक देसी पिस्टल और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार देवेंद्र ने बताया कि मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
2: जब इनसे पूछताछ किया गया तो पता चला कि सीमा पार के एक नेटवर्क है जो राणा भाई से संबंधित है, उनसे ये संपर्क में थे और इनके दो और सहयोगी थे जो मिलकर कुछ आतंकी घटना करने की इनके द्वारा संभावना थी, जिस संबंध में लगातार अनुसंधान भी किया जा रहा है। वर्तमान में इस संबंध में एक थाना में कांड दर्ज किया गया है जो BNS की धारा 113(3)(5) और आर्म्स एक्ट की धारा 25(26) के अंतर्गत दर्ज करते हुए लगातार अनुसंधान में इनके जो भी सहयोगी हैं और इनका जो भी नेटवर्क है उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है।
0: आरोप है कि मिल्की खानपुर निवासी मोहम्मद सद्दाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के संपर्क में था, जो बिहार ATS से जुड़े एक मामले में भी नामजद है। निगरानी जांच की टीम ने धनरुआ अंचल कार्यालय के लिपिक शैलेश कुमार को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी

0: के अनुसार लिपिक परिमार्जन प्लस के तहत जमीन के कागजात ऑनलाइन अपलोड करने के लिए रिश्वत ले रहा था। भोजपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रदेश में शराबबंदी कानून समाप्त होने की भ्रामक खबर फैलाने के मामले में आरा के साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज की है। भोजपुर पुलिस अधीक्षक राज ने बताया कि भ्रामक वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने भाषण की आवाज को AI से एडिट कर यह झूठा दावा किया गया है। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को दौरे के लिए टीम में शामिल किया गया है। टीम में पहली बार तेज गेंदबाज यश ठाकुर और अशोक शर्मा को भी शामिल किया गया है। 23 जुलाई से शुरू हो रहे इस दौरे में 3 T20 मैच खेले जाएंगे। श्रेयस अय्यर भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इधर भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज नॉटिंगहम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे शुरू होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, चंपत राय को राम राम, कृष्ण मोहन को कमान। दैनिक भास्कर ने इसी खबर का शीर्षक दिया है, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे। प्रभात खबर लिखता है, BRO के फंड के गबन से जुड़े मामले में बिहार समेत 11 राज्यों में CBI का छापा। दैनिक जागरण ने लिखा है, बिहार के मॉडल स्कूलों में शामिल की जाएंगी राजस्थान की विशिष्टताएं। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, मानहानि केस में बेतिया कोर्ट ने प्रशांत किशोर को किया तलब। आज अखबार की सुर्खी है, सक्षमता पास नियोजित शिक्षक बनेंगे विशिष्ट शिक्षक। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार मृत रैयतों की जमाबंदी स्वयं अपडेट करेगी। अपर समाहर्ता और भूमि सुधार उप समाहर्ता हर महीने करेंगे अंचलवार समीक्षा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के चौथे वर्ष में प्रवेश के लिए CGPA की बाध्यता खत्म। और मौसम विभाग ने आज कटिहार, किशनगंज, बांका, भागलपुर और पश्चिम चंपारण जिले में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
2: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें। जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
3: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज पर। न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप के माध्यम से आप हमें अपने स्मार्टफोन पर भी सुन पा रहे हैं। आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम।

0: घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक कई क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय
2: जिंदगी है तो है समस्याएं भी समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी रविवार दिन में 11 बजे।

कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: भोर होते उठ जाओ किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाए लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराए लगैत अछि, ऊर्जा आबय वाला काल्हि लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप सँ सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतनि।
2: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं हैत तो खेती नहीं हैत, आ खेती जो नहीं हैत उपजा नहीं हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी

जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11

0: गुलाम अली और उबैर चिन्ना की आवाज़ में आपने इस गज़ल को समाप्त किया सामईन। और आज की तारीख 7 जुलाई ये इसलिए ख़ास है कि आज हिंदी अदब के एक अजीम और हिमाजहद शख्सियत पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की यौम विलादत है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी एक बेहतरीन अफसाना निगार, नक़ाद, मुहक्किक और मौर्रिख थे। आपकी वजह शोहरत, आपका जो शोहरा आफाक अफसाना, उसने कहा था है जिसने उर्दू और हिंदी फिक्शन पर गहरे नक़ूश छोड़े थे। विलादत इनकी जो हुई थी वो इनके आबाई जो है ताल्लुक़ इनके ख़ानदान का वो हिमाचल प्रदेश के ज़िला कांगड़ा के गुलेर गांव से था। और यही वजह थी कि उन्होंने अपने नाम के साथ गुलेरी को अपने नाम का हिस्सा बनाया था। वालिद इनके पंडित शिव कुमार शर्मा संस्कृत और हिंदी के मशहूर आलिम थे। आपको संस्कृत, हिंदी, अंग्रेज़ी, पाली और प्राकृत जैसी मुख्तलिफ ज़ुबानों पर उबूर हासिल था। ये द्विवेदी युग के एक अहम तरीन स्कॉलर्स में शुमार किए जाते थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शुबह तारीख और धर्म के प्रोफेसर थे। आपने कदीम तारीख, फ़लसफ़ा और आसार कदीमा पर बेहतरीन तहकीकी काम भी किया था। उसने कहा था ये जो अफसाना है उसका सबसे मकबूल अफसाना है क्योंकि ये हिंदी अदब की तारीख में एक ऐसी संगबील की हैसियत रखता है जिसमें कहानी पहले जंग अजीम के पस मंज़र में कुर्बानी, वफा और मोहब्बत के जज्बे पर मबनी है। ये अपने दौर के फ्लैशबैक तकनीक की बेहतरीन मिसाल भी है। दिगर अहम कहानियों में अगर हम देखें सामीन तो बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन वगैरह काफ़ी अहमियत के हामिल हैं और काफ़ी मशहूर भी हैं। आपके तंज़ो मज़ा और फ़लसफियाना मज़ामीन भी बहुत मकबूल हुए जैसे कछुआ धर्म। आपने बहुत कम लिखा लेकिन जितना लिखा वो मेयार और तासीर में लाफानी था। 12 सितंबर 1922 को काशी में आपका इंतकाल हो गया। यकीनन हमने अपने पिछले ज़माने की तारीख को जब भी उसके औराक को पलटा है तो हमें मुख्तलिफ हिमाजहत शख्सियतों से वास्ता पड़ा है जो अपने अंदर बहुत सारी खूबियों को समो करके रखे हुए थे और उन्होंने अपनी उन काविशों के ज़रिए अपने आइंदा आने वाली नस्लों के लिए बहुत सारी बेहतरीन और उम्दा मिसालें छोड़ी हैं। उनमें एक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी थे। आए सामीन, इस गुफ्तगू के बाद हम आपको अपने अगले पेशकश की जानी मुतवज्जे करते हैं। ये भी एक गुफ्तगू है जिसमें उनवान है हसरत मोहानी, सियासी और अदबी खिदमात के हवाले से। और इसमें मोहम्मद आलम की डॉक्टर रिजवानुल्लाह से गुफ्तगू लीजिए। हम आपकी समातों के हवाले की दे रहे हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं।
1: हम जानते हैं कि मौलाना हसरत मोहानी हिंदुस्तान के एक अजीम मुजाहिद आज़ादी थे और मुजाहिद आज़ादी के साथ साथ मुख्तलिफ मैदानों के अंदर उनकी नुमाया खिदमात है। मौलाना की जो मुख्तलिफ और हमा जहत खूबियाँ हैं हम अपने मेहमान गिरामी जनाब मोहम्मद रिजवानुल्लाह आरवी से जानना चाहेंगे कि हसरत मोहानी जो एक अजीम मुजाहिद आज़ादी थे, सहाफ़ी थे, बुलंद पाया शायर थे, आप उनकी सबसे मुमताज़ खूबी क्या महसूस करते हैं?
2: देखिए, इसमें शक नहीं कि तहरीक आज़ादी में हसरत मोहानी का जो अहम और नुमा

0: किरदार रहा है और मुजाहिदाना किरदार रहा है, वो बिला शुबा उनकी शख्सियत की इम्तियाजी खसूसियत है और इम्तियाजी शान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी सहाफत को या उनकी शायरी को नज़रअंदाज कर दिया जाए, बल्कि सच पूछिए तो उनकी शख्सियत की तामीर और तश्कील में उनकी सहाफत और शायरी ने बहुत अहम किरदार अदा किया है, और इसके बगैर उनकी शख्सियत, अगर इस पर बात न की जाए तो उनकी शख्सियत अधूरी और तशना रहेगी। लेकिन यह भी हकीकत है कि उनकी सहाफत और शायरी जो थी के जरिए एक मखसूस क्लास तक पहुँचे, पढ़े लिखे लोगों तक पहुँचे, लेकिन हिंदुस्तानी आवाम तक उनकी जो तहरीक आज़ादी में जद्दोजहद रही और अमली सियासत में जो उनकी सरगर्मी रही, उसने उनको गोया हिंदुस्तानी आवाम तक पहुँचाया। और उनकी तबीयत में शुरू से बगावत का अंसुर शामिल था, अंग्रेज़ मुखालिफत में वो पेश पेश रहते थे, और उनके दौरे तालिब इल्मी में से जब वो अलीगढ़ में दाखिला हुआ उनका, उसी वक्त से वो अमली सियासत में सरगर्म हो गए थे। चुनांचे उनके तलबा यूनियन का सेक्रेटरी भी बनाया गया। सब
1: हिंदुस्तान के बुलंद पाया जो है हमारे कायद थे महात्मा गांधी या नेहरू वगैरह
0: जी,
1: उन लोगों से इनके बहुत करीबी मरासिम थे
0: यकीनन,
1: और उसी पाया के ये भी जो है
0: यकीनन उनके करीबी मरासिम थे, बल्कि मैं ये कहूंगा कि अपनी बेबाकी और सदाकत के सिलसिले में कोई मसलहत पसंदी इनके यहाँ नहीं थी, और इसीलिए बेबाक लीडर थे, और इसीलिए महात्मा गांधी के जो अदम तशद्दुद का फलसफा था वो उनसे इत्तफाक नहीं रखते थे। ये चाहते थे कि नहीं, कुछ सख्ती अगर करनी पड़े आजादी हासिल करने के लिए तो वो भी हमको अपनाना चाहिए,
1: आजादी के लिए जो भी कुर्बानी
0: देनी पड़े, और कुर्बानी दी भी इन्होंने, सिर्फ मतलब जवानी जमा खर्च नहीं, बल्कि आप देखेंगे कि जब इन्होंने उर्दू में मामला जारी किया तो इतने सख्त मजामीन लिखे अंग्रेजों के खिलाफ के जेल भी जाना पड़ा, और वो पर्चा भी उनका बंद हो गया,
1: कई मरतबा
0: जेल जाना पड़ा, तो ये सारी कुर्बानियां दी उन्होंने,
1: कई मरतबा वो पर्चा जारी हुआ और फिर जो है से उनका वही तेवर रहा,
0: बिल्कुल
1: तीन मरतबा वो पर्चा जो है,
0: कई मरतबा पर्चा बंद हुआ, कई मरतबा जेल गए, लेकिन
1: जो मिशन था, उनका जो तेवर था, उन्होंने बाकी रखा
0: पाए इस्तेकामत में, कहीं से कोई लगदेश उनके।
1: और इसी तरह से ये भी कहा जाता है कि उनकी स्वदेशी तहरीक जो है, इसमें उन्होंने स्वदेशी तहरीक में बहुत ही बढ़ चढ़ के
0: बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और गैर मुल्की मसनूआत का बाइकआउट किया, इतना ही नहीं बल्कि खुद स्वदेशी दुकान भी खोल ली, और इससे भी आगे बढ़ के पूरे शुमाली हिंद का दौरा करके सबको मायल किया उन्होंने कि आप लोग ऐसा काम कीजिए। तो ये सही है कि उनकी शख्सियत का अहम हिस्सा उनकी सहाफत भी है, उनकी शायरी भी है, लेकिन हकीकत है ये जो आपने कहा कि इम्तियाजी खसूसियत क्या है, तो इम्तियाजी खसूसियत तारीख आजादी में उनके जिद्दोजहद है, उनकी अमली सियासत में सरगर्मी है, और उनका मुजाहिदाना किरदार।
1: अच्छा, ये भी कहा जाता है कि हमारे जो मुल्क के मुजाहिदीन आजादी थे तो पहले हुकूक के लिए और अपनी हिस्सेदारी के लिए ये कोशा थे, सबसे पहले मुकम्मल आजादी का नारा ये हसरत मोहानी ही ने दिया कि हमें मुकम्मल आजादी चाहिए, हमें हिस्सेदारी नहीं चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और इसी बिना पर ये एक तरफ थे और तमाम लीडरान दूसरी तरफ थे, अकेले मुकम्मल आजादी का नारा दिया, हिंदुस्तान की मुकम्मल खुद मुख्तारी।
1: अहमदाबाद कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसको बहुत ही शद्दोमत के साथ मुकम्मल आजादी का नारा सबसे पहले उन्होंने दिया।
0: और ये और बात है कि जो आपने कॉन्फ्रेंस का नाम लिया उसमें इनकी तजवीज मंजूर नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद हिम्मत नहीं हारे, और आखिर में हालात ऐसे हुए कथा खार के इनकी तजवीज पर लोगों
1: आवाम के जहन में सबसे पहले
0: ये
1: पैगाम तो गया और उनका ये मुद्दा आगे बढ़ा।
0: इनकी अवलियात बहुत सी है, सिर्फ मतलब स्वदेशी तहरीक आपने जो कहा मुकम्मल आजादी नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की मुकम्मल खुद मुख्तारी और सत्याग्रह का तस्वुर और इंकलाब जिंदाबाद का नारा।
1: आपने सही फरमाया, आजादी दिलाने में इंकलाब जिंदाबाद का बहुत ही नुमाया रोल है। तो इस सिलसिले में जब हम गौर करते हैं और पढ़ते हैं तो महसूस करते हैं कि इसके लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी, उनके परहेज को जो है बंद कर दिया गया, उनके मकान को जायदाद को जब्त किया गया, उनको कई मरतबा जेल में जाना पड़ा,
0: बिल्कुल
1: उनके अहलिया निशातुन्निसा
0: थी, उनको
1: उनके साथ ये बहुत ही मसायक
0: बिल्कुल
1: गुजरना पड़ा,
0: उनके कई रिश्तेदारों का इंतकाल हो गया जेल में रहते हुए, लेकिन कभी उन्होंने अंग्रेजों से कोई दरखास्त की कि हमको जाने दिया जाए। और एक बहुत बड़ी कुर्बानी जो जिसका जिक्र आपने शायद नहीं किया, जिसका दर्द वही महसूस कर सकते थे, वो किताबों के बहुत शौकीन थे और अपनी बेहतरीन लाइब्रेरी उन्होंने कायम की थी, वो सारी लाइब्रेरी को जब्त कर लिया गया, जिसका बहुत बड़ा सदमा हुआ,
1: इल्मी सरमाया को
0: बिल्कुल जाया कर दिया गया,
1: लेकिन
0: बहुत शौक से उन्होंने जमा किया था, और उसी सरमाया की बुनियाद पर कई शोरा का तस्करा उन्होंने तरतीब दिया था।
1: उनका ये भी एक कमाल है कि अदब की खिदमत भी हमेशा करते रहे,
0: हमेशा
1: यहाँ तक कि जब जेल में भी गए तो जेल के अंदर भी उन्होंने जो है अपने मशे सुखन को जारी रखा। उनका भी बहुत ही मशहूर शेर है,
0: मशे
1: सुखन जारी,
0: चक्की
1: की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी वहाँ भी अपने जो है शेर व अदब को उन्होंने जारी रखा, और जेल की सलाखों के अंदर भी उनके हौसले जो है पस्त
0: नहीं हुए।
1: हर चंद दिल शहदा हुर्रियत कामिल का मंजूर दुआ लेकिन कैद मोहब्बत भी।
0: हाँ।
1: तो जो उनकी शायरी है
0: जी,
1: तो शायरी के हवाले से

0: स्थल है
1: वही, वही हसरत हाँ। सुनते ही दिल में जो
0: उतर जाए क्या,
1: तो ये कितनी सादगी से उन्होंने शायरी को पेश किया है कि शायरी जो मकसूद तक और जो जिंदगी का जो असल मकसद है वहाँ तक पहुँचाने में शायरी कितनी मददगार होती है।
0: पूरी पूरी शायरी उनकी सादगी की मिसाल है,
1: सादगी की मिसाल,
0: चाहे वो किसी मौजू पर कहा हो लेकिन सादगी सब में नुमाया है इनकी।
1: और जहाँ पे हुस्न का सरापा पेश किया है, इश्क को पेश किया है, तो वहाँ पे भी महबूब को बहुत ही हसीन पैराए में पैकर तशी की है। महबूब पे उनका बहुत मशहूर शेर है, लाया है दिल पे कितनी खराबी ऐ यार तेरा हुस्न
0: शराबी।
1: और इसी तरह से फिरती है अब तक दिल की नजर में कैफियत उसकी वो नीम खाबी,
0: नीम खाबी।
1: तो ये जो है अपने महबूब का जो सरापा जो है बहुत ही सादगी के साथ उन्होंने पेश किया।
0: एक बात जो हमने कहा शुरू में आपसे कि उनकी शायरी के अहम खसूसियत में, वो तो खैर हुस्न इश्क की तर्जुमानी अपनी जगह पर है लेकिन तसव्वुफ का रंग भी है। जैसे एक मशहूर शेर है कि गुनाह अपना नहीं साबित खता के फिर भी कायल हैं, अदब का है यही शेवा यही शान तसव्वुफ है। तो ये जो उनके यहाँ एक तसव्वुफ का रंग भी है, कौमी शायरी भी उनके यहाँ है कि जफा हाय कामयाब देखिए कब तक रहे, हुब वतन मस्त ख्वाब देखिए कब तक रहे। ये अंग्रेजों के जुल्म सितम की तरफ गया इशारा है। अपनी शायरी के जरिए आवाम को तहरीक भी दी है कि आप बेदार हों और अपने हकूक के लिए और अपने मकसद के लिए उठ खड़े हों। तो ये सारी चीजें सारी पहलू उनके शायरी में नुमाया तौर पर नजर आती हैं।
1: आरिफाना शायरी में उनका ये शेर भी बहुत मशहूर है, इश्क रोज आफजू पे अपने मुझको हैरानी नहीं, जलवा रंगी ये तुझको नाज यकताई नहीं।
0: हाँ, नाज यकताई नहीं,
1: बिल्कुल आरिफाना कलाम है। और उनकी ये गजल भी बहुत मशहूर है, रोशन जमाल यार से है
0: अंजुमन तमाम,
1: रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिश गुल से चमन
0: तमाम।
1: का एक खास पहलू हमें ये भी नजर आता है कि वो सहाफत को भी हमेशा अपना ही हिज्जा बनाए रखे रहे और उर्दू मुअल्ला के जरिए एक दो साल नहीं तकरीबन 40 साल तक नौजवानों में और मुल्क के बाशिंदों के दरमियान सियासी बेदारी और इनकलाबी रूह फूकते रहे और उसके जरिए उन्होंने बहुत ही नुमाया खिदमात अंजाम दी है। इतने अरसे तक किसी भी मैगजीन
0: बार बार जारी रखना, बार बार जारी करना, ये बड़ी बात।
1: तो आप उनके सहाफती किरदार से
0: उनके बुनियादी तौर पर उर्दू मुअल्ला का इजरा उन्होंने किया था वो अदबी मकसद पूरा करने के लिए, चूंकि उनको शोरा का तस्करा तरतीब देना था लेकिन उस जमाने के हालात ऐसे थे कि वो सियासत से अलग रह ही नहीं सकते थे। चुनांचे शुरू ही से उसमें मजामीन शाये होने लगे इनके अपने भी और इनके जो हम ख्याल लोग थे उनके भी मजामीन को इन्होंने शाये किया, जिसमें बाल गंगाधर तिलक थे उस जमाने में जितने भी जो रहनुमायान कौम थे, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ जहनसाजी भी करना था और हिंदुस्तानी अवाम को मुतहद भी करना था अंग्रेजों के खिलाफ। इसमें कोई शक नहीं कि उन मजामीन से जहनसाजी हुई और उस जमाने में और भी सहाफी थे लेकिन इनकी सहाफत जो है सबसे मुमताज थी, इस वजह से कि इनको बिल्कुल इब्तदाई दौर में अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को मुत्तहिद करने में, लोगों के सियासी शऊर को बेदार करने में उर्दू मुअल्ला का जो अहम कारनामा है उसको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता।
1: बल्कि उर्दू मुअल्ला में ये देखते हैं कि उन्होंने अपने जिंदगी के तजर्बात और मुशाहदात को जो जेलों के अंदर है
0: मुशाहदात जिंदा के नाम से तो एक किताबी तरतीब थी बाद में लेकिन किस्तों में छपा था पहले,
1: जो एक तारीखी दस्तावेज है,
0: क्या कहना है, वो जेल की पूरी दस्तावेज है वो जो किस्तों में छपा था उर्दू मुअल्ला में, बाद में मुशाहदात जिंदा के नाम से वो जो है किताबी शक्ल में शाये हुआ।
1: और फिर इसी मुजल्ला के जरिए हम ये भी देखते हैं कि उन्होंने उस जमाने के जो अजीमुल मर्तबा शोराए किराम थे उनकी शायरी को भी पेश किया, यहाँ तक कि गालिब के जो दीवान है उनके अशार की तशरीह भी उन्होंने सिलसिलेवार उन्होंने दीवान गालिब के अशार की उन्होंने तशरीह पेश किया।
0: इसी वजह से ना एक मशहूर नाकिद ने लिखा है उनके इसी पहलू पर बात करते हुए कि लोगों ने उनको महज शायर समझ लिया लेकिन हकीकत यह है कि उनसे बड़ा तनकीद निगार, उससे बड़ा तस्करा निगार उर्दू दुनिया में कम पैदा हुआ है। और भी बिल्कुल इब्तदाई जमाने में जब उन्होंने मील का पत्थर गोया रखा, बाद में लोगों ने फिर उस पर इमारत तामीर की लेकिन हकीकत यह है कि उस जमाने में जब इतनी सहूलत भी नहीं थी, खुद से सारा काम करना था, किताबें इकट्ठा करना था, तो 11 जिल्दों में शोरा का तस्करा तरतीब देना, शोरा के अशार की तशरीह करना, ये आसान बात नहीं था जो उन्होंने कारनामा अंजाम दिया उर्दू मुअल्ला के जरिए।
1: और ये भी हम देखते हैं कि उन्होंने रिसाला के निकालने में या किताबों के शाये करने में अपना सरमाया लगाया,
0: बिल्कुल किसी तरह का तावन कहीं से न इल्मी तावन न माली तावन, जो कुछ करें किया खुद अपने तौर पर इन्होंने किया।
1: और ये भी तो बड़ा अदबी कारनामा है कि जदीद शोरा के कलाम को उन्होंने 7 जिल्दों में शाये,
0: 7 जिल्दों में, जी हाँ। और हैरत है कि इतना अमली तौर पर इतना सरगर्म हो रहते हुए कैसे इतना वक्त निकाल लेना, तमाम चीजों को तरतीब देना।
1: हम चाहेंगे कि चलते चलते आप उनकी कोई मशहूर गजल हमारे सामने के लिए पेश करें।
0: जी, आपके हुक्म की तामील में उनके अपने मखसूस अंदाज की दो गजलें पेश कर रहा हूँ। महबूब है महबूब की हर बात बजा है, अब मुझसे तकाफुल भी वो फरमाए तो क्या है, फिर शिकवे गम का मुझे क्यों शौक हुआ है, फिर हंस के वो कह देंगे यही तेरी सजा है।
1: वाह वाह वाह,
0: हम खुश हैं बहरहाल जफा हो के वफा हो,

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का ये पहला गीत आपको सुनवाते हैं कोड़ा कागज़ फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज़ में।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे। ये फिल्म थी कोरा कागज़ से। फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। मुकेश का गाया ये प्यार सा गीत हम आपको सुनवा रहे थे, फिल्म थी संबंध। लीजिए इस कार्यक्रम का ये अगला गीत आपके लिए।

सची कहा कि अगर प्यारी बात को भी लोग चिल्ला कर कहें तो वो बात प्यारी नहीं लगती, लेकिन अगर गुस्से वाली बात भी कोई मुस्कुरा कर कहे तो लोगों को बेहतर लगती है। प्यार भरे फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। आजाद देश के गुलाम इस फिल्म में आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल को। लीजिए अब सुनिए इस कार्यक्रम का ये अगला गीत एक बार फिर मोहम्मद रफी। फिल्म का नाम है उपहार।

एक दूजे के लिए। जी हाँ, इस फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं आज की हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। श्रोताओं, आज की हमारी इस पहली सभा में दोपहर 1:15 पर एक बार फिर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं। आज है मंगलवार। आकाशवाणी दरभंगा से अब समय हो चला है हमारे बज्जी का कार्यक्रम अंगना का।

अंगना सुने वाला सब श्रोता के हम विजेता सिन्हा प्रणाम करत हती। अपने सबके बजिका के साप्ताहिक कार्यक्रम अंगना में स्वागत है। आई हम फिर से अपने समक्ष उपस्थित हती। देखो

0: आज के समय में प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, चाहे वो जल प्रदूषण रहे, ध्वनि प्रदूषण रहे, वायु प्रदूषण रहे, मतलब हर तरह के प्रदूषण अपना सबके चारों तरफ फैलल है। जहाँ नदी, तालाब, पोखर में कूड़ा कचरा बहा के, कल कारखाना के कचरा बहा के, गंदा पानी बहा के नदी, तालाब आ पोखर के जल दूषित कैल जा रहा है। खूब तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजा करके ध्वनि प्रदूषण के बढ़ावा दिल जा रहा है। सड़क पर दिन रात मोटर गाड़ी जैसन धुआं निकले वाला वाहन चलित है। ये धुआं आसपास के माहौल के दूषित करे के साथ साथ अपने सबके शरीर के अंदर भी प्रवेश करैया, जे हमारे सबके स्वास्थ्य के भी प्रभावित करैया। आज के समय में बड़का बड़का शहर में गाछ वृक्ष के काट के वहाँ पर बड़का बड़का इमारत बनायल जाइया, जकरा कारण वहाँ भी वायु प्रदूषण बढ़ल रहैया। अगर दिवाली के समय पटाखा के जलायल जाइया तो ओकर धुआं जल्दी नहीं साफ होइया आ कते दिन तक वातावरण में उ जहरीला धुआं फैलल रहैया। इतने नहीं, गंदगी के अंबार लगल रहे से जहाँ तहाँ मृत जानवर के फेंके से भी पर्यावरण के नुकसान होइया। प्लास्टिक के बनल चीज के उपयोग करे से भी बहुत नुकसान होइया, काहे कि प्लास्टिक कभी भी नष्ट नहीं होइया। एकरा उपयोग करे से भी नुकसान है आ नष्ट करे से भी नुकसान है, तो प्लास्टिक के उपयोग से जितना हो सके बचे के चाही। तो ई सब कारण से वातावरण दूषित रहैया, पर्यावरण पर एकर कुप्रभाव पड़ैया आ पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पड़ैया। देखो, पर्यावरण के नुकसान से एकरा असंतुलित होइ से कितने तरह के प्राकृतिक प्रकोप आवैया। ई प्रकोप कहियो बाढ़, कहियो सुखार तो कहियो भूकंप के रूप में हमरा सबके झेले पड़ैया। जैसे हमर जीवन संकट में आ जाइया, जान माल के भारी नुकसान होइया। ई सब तरह के प्राकृतिक प्रकोप नहीं होय के लेल पर्यावरण के सुरक्षित रखना अति आवश्यक है। इतने नहीं, पृथ्वी पर जीवन के बचावे में पर्यावरण के संतुलित बनल रहे में अपना सबके योगदान करे के चाही। गाछ वृक्ष आ जीव जंतु के सुरक्षा की जिम्मेदारी उठावे के चाही। ज्यादा से ज्यादा संख्या में गाछ वृक्ष लगावे के चाही, ताकि ई बड़का बड़का गाछ वृक्ष अपना सबके साफ आ शुद्ध हवा मिल सके। नदी तालाब के पानी शुद्ध रहे के चाही, ताकि विषम परिस्थिति में वो जल हमरा सबके काम आ सके। कूड़ा कचरा के नदी तालाब में बहावे के बदले ओकरा कोनो खाली जगह पर जहाँ आसपास कोनो घर नहीं हो वहाँ नष्ट करे के चाही, ताकि केकरो भी एक जहरीला धुआं नुकसान नहीं पहुँचा सके। देखो, आज जे पर्यावरण संरक्षण के जरूरत पड़ रहा है ओकरा लेल कहीं ना कहीं हम खुद भी जिम्मेदार हती। अइला ई जीवन के बचावे के लेल धरती पर होय वाला प्राकृतिक प्रकोप के रोके के लेल हमरा सबके आगे आवे के होइत। आ ई तखनिए संभव है जब हम पर्यावरण के संरक्षण करब, ओकर सुरक्षा करब। अइला हर केकरो जागरूक रहे पड़त, तखनिए हम सब स्वच्छ, शुद्ध आ सुंदर वातावरण में रह सकत हती आ खुलल हवा में सांस ले सकत हती। पर्यावरण संरक्षण के संबंध में एगो छात्रा के की विचार है, उनका की कहना है, आओ सुनित हती।
1: पर्यावरण के संरक्षण के मतलब है अपना जीवन का संरक्षण करना। पर्यावरण के अस्तित्व के बनाए रखे के लेल सबसे ज्यादा जरूरी है प्रदूषण के रोकना। आज सड़क पर दिन रात खूब गाड़ी दौड़ रहल है, चल रहल है। एकर धुआं से पर्यावरण के खूब नुकसान होइया, जहाँ तहाँ कूड़ा कचरा से वातावरण प्रदूषित होइया। पर्यावरण के बचावे के लेल एकरा रोकना बहुत जरूरी है। साथ ही जरूरी है हरा भरा गाछ के कटाई के रोकना। कई लोग ऐसन है कि जरूरत पड़ला पर हरा भरा पेड़ काटे में टनको न हिचकैया, जैसे पर्यावरण के दिन प्रतिदिन नुकसान हो रहल है। हरा भरा पेड़ कभी नहीं काटे के चाही, बल्कि जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक पेड़ लगावे के चाही, तभी पर्यावरण के रक्षा हो। पर्यावरण के रक्षा करना कोनो एक आदमी के काम नहीं है, एकरा लेल सबके आगे आवे के हो। एक दूसरा के पर्यावरण संरक्षण के लेल साथ देवे के हो। गंदगी और प्रदूषण फैलावे वाला आदमी के टोके के पड़त, रोके के पड़त। आज जे स्वच्छता अभियान चल रहा है, ई पर्यावरण के लेल काफी लाभदायक है। पर्यावरण के संरक्षण के लेल पेड़ पौधा लगावे

0: के अलावा स्वच्छता पर विशेष ध्यान देवे के होय। आज कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं समय पर बारिश नहीं हो रहा है, कभी बाढ़ आवे या तो कभी भूकंप आवे या इस प्राकृतिक प्रकोप पर्यावरण के असंतुलित होय के कारण होय। ऐला ई बात के सबके समझे के होय कि पर्यावरण के संरक्षण करना बहुत जरूरी है और ई तभी संभव है जब एकरा लेल सब मिल के सोचक।
1: अखनी अपनी पर्यावरण संरक्षण के संबंध में एगो छात्रा के विचार सुनित रही। अब आओ कार्यक्रम में आगे बढ़े थती आ अरुण कुमार अकेला के ई लोकगीत सुनित हती।

भाई साफ सफाई करके अपन धरती के चमके भाई, साफ सफाई करके अपन धरती के चमके भाई। गंगा जल के महिमा के बतावे के होतई,

जल है। शिव शंकर के जटा से निकलल ईता गंगा जल है। हिमगिरी से चल कर सिंधु तक ई जल निर्मल है।

अखनि अपने अरुण कुमार अकेला के गायल ई लोकगीत सुनत रही। अब आओ कार्यक्रम में एक बे फिर से आगे बढ़े थती आ बात करे थती बात अपन धरोहर के। आई हम बात करे थती बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिला में कांटी में स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर के। ये मंदिर मुजफ्फरपुर शहर से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। ये बिहार के एकमात्र छिन्नमस्तिका मंदिर है। ये मंदिर सैकड़ों साल पुरान है। छिन्नमस्तिका मंदिर अपन रहस्यमयी आ अलौकिक मान्यता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ देवी अपन कटल सिर के हाथ में ले आ अपन सहेली के रक्तपान करत प्रकट भेल हथिन। ये स्थान आत्म बलिदान त्याग आ तंत्र साधना के प्रमुख केंद्र है। यहाँ की मान्यता है कि माता पार्वती

0: सहेली सबके मतलब डाकनी शाकनी के भूख मिटावे के लेल हुनका तृप्त करे के लेल अपना सिर काट लेले रहथिन। देवी के ई रूप आत्म बलिदान अहंकार के विनाश आ आध्यात्मिक ज्ञान के प्रतीक है। ई दुनिया के ई संदेश देवत है कि सर्वोच्च शक्ति के लेल सब कुछ न्यौछावर कैल जा सकैया। छिन्नमस्तिका मंदिर में देवी के प्रतिमा के सिर कटल है आ उ कामदेव के शरीर पर खड़ा हतन। ई दुनिया के दोसर सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। ई मंदिर तंत्र साधना के लेल भी प्रसिद्ध है। ई मंदिर में स्थित माता के प्रतिमा देखे के लेल यहाँ के विशेषता के जाने के लेल दूर दूर से लोग आवेत हतीन। यहाँ तीज त्योहार पर जना मकर संक्रांति हो विजयादशमी हो ई सब अवसर पर बहुत बड़का मेला लगैत है आ ई मेला में शामिल होए दूर दूर से भक्त आवेत हतीन। लोग सब यहाँ के पवित्र नदी में स्नान करित हतीन। मेला के दौरान यहाँ के प्राकृतिक सुंदरता के भी आनंद लेल जा सकैया। ई मंदिर के एगो ई भी विशेषता है चट्टान पर लाल धागा बांध के आ नारियल चढ़ा के मन्नत मांगे के भी रिवाज है। ई विश्वास के साथ कि मन्नत अवश्य पूरा होत आ ऐसन होइया भी। माँ छिन्नमस्तिका अपन भक्त के खाली हाथ कभी नहीं लौटावित हतीन, हुनकर मनोकामना अवश्य पूरा करित हतीन। देखू माँ छिन्नमस्तिका मंदिर घूमे के लेल एगो बेहतरीन आ खूबसूरत जगह है। यहाँ मंदिर के वातावरण बहुत ही शांत है। यहाँ भक्त ध्यान करे आ मानसिक शांति के लेल आवेत हतीन। ई मंदिर के मुख्य गुम्बद आ वास्तुकला देखे में काफी आकर्षक लगैया आ यहाँ घूमे वाला लोग सबके ई आकर्षक के केंद्र बनैया। देखू वैसे त माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के विषय में बहुते बात है पर आए बात अपन धरोहर में बस इतनी। अब आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ित राम बाबू नीरव के खिस्सा सुनित हती। शीर्षक है शिबू भैया के अरमान।
1: श्रोता भाई बंधु प्रणाम करित हती। हम प्रस्तुत छे अपन कहानी शिबू भैया के अरमान लेके। शिबू भैया एकदम से फूल के महंत हो गया है। ओकरा बधाई देवे के लिए गांव के सैकड़ों आदमी ओकर दरवाजा पर जुटल है। वही भीड़ में मुखिया जी भी शामिल हतन। आई शिबू से ज्यादा खुशी मुखिया जी की हो रहा है। जे सपना शिबू देखले रहे वही सपना तो मुखिया जी भी देखले रहलन। आई उ सपना साकार हो गया। शिबू के छोटका भाई ननका यानी रामनाथ हाकिम बन गए। वह कोनो छोटका मोटका हाकिम न एकदम से बहुत बड़का हाकिम। मुखिया जी कह रहा था कि शिबू के भाई ननका SDO साहब बन गया है IAS के।

है वह शहर में रह के आधुनिक लड़की बन गेल है। तब भी शिवू कुछ न बोलल। मुखिया जी निराश होके कहे लागलन, हम समझ गेली शिवू, तोरा ई रिश्ता मंजूर न है। अच्छा कोनो बात न, ऐसा न कहो मुखिया जी। शिवू घबरा के बोल पड़ल, ई तो हमर सौभाग्य है जे आई अहाँ हमर ननका के ब्याह अपन बेटी से करे के लिए चाह रहल छी। अहाँ कहाँ गाँव के अनाथ शिवनाथ और कहाँ मुखिया प्रतारथ बाबू। शिवू के आँख से खुशी के आंसू टपके लागल। मुखिया जी भी गदगद हो गेलन। शिवू हम ई समझू कि रिश्ता पक्का। हाँ हाँ एकदम पक्का। शिवू खुशी से झूमे लागल। अपन हाथ में मुखिया जी मिठाई के डिब्बा ले ले रहलन। वही में से एगो मिठाई निकाल के शिवू के मुँह में ठूस दिलन। शिवू भी पीछे न रहल, वह उनका मुँह में एगो मिठाई ठूस दिलक। रामरति किवार के ओर से ये सब तमाशा देखित रहे। मुखिया जी के गेला के बाद वो झट से शिवू के सामने आके खड़ा हो गए। ई की कर दिली अहाँ, तनिक क्रुद्ध भाव से वो कहे लागल। ननका से ब्याह बिना पूछले? अरे ननका से पूछे कौन बात है, वो हमर भाई है, बेटा है, कोनो हालत में वो हमर बात न टारत। शिवू के अपन ननका पर पूरा भरोसा रहे। तभी जमाना बदल गया है, तू चुप। शिवू एकदम से खींच पड़ल, तू हर समय हमर भाई के बुराई देखते रह गए, आई के बाद हम अपन ननका के खिलाफ एको शब्द बुराई के न सुनब। रामरति सुबह सुबह के रोए लागल। ओकरा पीछे पीछे झुनकी खड़ा रहे, वो अपन माई के भीतर खींच के ले जाके चुप करावे लागल। शिवू के स्वीकृति मिल गया जाए के बाद मुखिया जी के चैन कहाँ रहे। उस शिवू से अनुमति लेके दीनदयाल जी के साथ चल गए रामनाथ से मिले। बहुत कोशिश कैला के बाद उनका सबके रामनाथ से भेंट भेल। मुदा रामनाथ अब वो रामनाथ न रहे, एकदम से बदल गए रामनाथ। हाकिम बनला के बाद तो ओकर रुआबे दोसर हो गए। पहले तो वो अपन गांव के मुखिया जी और अपन बचपन के गुरु जी के भी न पहचानलक, आ जब पहचानलक तब उनका सबसे ठीक ढंग से बातों न कैलक। तभी मुखिया जी ओकरा बता देलक कि उनकर बेटी से रामनाथ के ब्याह शिवनाथ पक्का कर दिले है। ये बात सुन के रामनाथ के चेहरा पर भूचाल जैसन आ गेल, मुदा वो कुछ बोललक न। मुखिया जी आ दीनदयाल से खिन्न मन से गांव लौट गेलन। मुखिया जी के मन में आयल कि शिवू के सब बात बता देवे चाहिए, मुदा दीनदयाल जी उनका रोक दिलक। रामनाथ के बदल जाए के और शादी के इनकार कर देवे के बाद सुन के शिवनाथ के बहुत तकलीफ होत। वो भोला भला इंसान है, ओकरा से ये सब बात बर्दाश्त न होत। यही खातिर शिवनाथ से अभी कुछ न बताओ, मुखिया जी मन महसूस के रह गेलन। सरकारी जिप्सी देख के पूरा गांव में हलचल मच गया। जिप्सी में ड्राइवर के साथ राइफलधारी पुलिस बैठल रहे। पीछे वाला सीट पर साहब वाला रुआब के साथ रामनाथ तथा ओकरा पीछे ओकर अर्दली बैठल रहे। गाड़ी के पीछे पीछे गांव के अबोध बच्चा सब शोर मचावित दौड़ित रहे। जिप्सी सीधा शिवनाथ के दरवाजा पर आके रुक गेल। सरकारी गाड़ी आ वही में पुलिस के देख के शिवनाथ एकदम से घबरा गेल, मुदा जैसे ही ओकर नज़र अपन ननका पर पड़ल कि ओकर छाती फूल के गुब्बार बन गेल। हाकिम बनला के बाद पहले बार रामनाथ गाँव में आयल रहे। अपन हाकिम भाई के देख के शिवू के आँख जुड़ा गेल। रामरति जल्दी आ, देख अपन ननका हाकिम बन के आ गेल हो। शिवू गला फाड़ के चिल्ला पड़ल। घर के भीतर से रामरति आ झुनकी निकल के आयल। ये दोनों भी रामनाथ के देख के रोमांच से भर गेल। रामनाथ गाड़ी से उतरल आ बिना केकरो और देखले सीधा घर के भीतर घुस गेल। ओकर ऐसन व्यवहार देख के तीनों आदमी के ठकमुर्गी लग गेल। पहले तक कभू रामनाथ ऐसन न कहलक, जब भी आवत रहे तो अपन भैया भौजी के पाछू के प्रणाम करित रहे, झुनकी के चोटी पकड़ के झुलावित रहे आ दुलार से कहित रहे, भौजी झुनकी तो तार गाछी जैसन बढ़ल जा रहा हो, एक कर शादी हम कोनो राजकुमार से करब, मुदा आज उ सब बेकार हो गेल, भैया जरा भीतर आइए। रामनाथ के करकदार आवाज़ सुन के तीनों के होश उड़ गेल। तैसे शिवू भीतर पहुँचल, ओकरा पीछे रामरति या झुनकी भी। मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? शिवू के देखते रामनाथ बारूद जैसन फट पड़ल। ओकर तेवर देख के शिवू के जैसे ठकमुर्गी लग गेल। रामरति या झुनकी के भी माथा चकरा लागल। रामनाथ के ऐसन रूप उ सब कहियो न देखले रहे। शिवू के तो समझे में न आयल रहे कि ओकर से कौन गलती भे गेल जे रामनाथ आग बबुला हो रहा है। आपने बिना मुझसे पूछे मुखिया जी की बेटी के साथ मेरी शादी क्यों पक्की कर दी? अब शिवनाथ के समझ में आयल कि आखिर ननका इतना पगला कहे गेल है। ननका बात यह है कि चुप रहिए, इतना कस के डपट दिलक रामनाथ शिवू के कि ओकर बोलती बंद भे गेल। ननका ननका कहकर मेरा अपमान मत कीजिए और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैं किसी भी कीमत पर मुखिया जी की बेटी के साथ शादी नहीं करूंगा। मैं इस लायक हो चुका हूं कि अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकूं। रामनाथ क्रोध से उपनीत तेजी से घर से बाहर निकल गया। शिवू के ऐसा लागल जैसे कोई ओकरा आसमान से नीचे धकेल दिले हुए। पल भर में ही ननका ओकर अरमान के बड़ी निर्ममता पूर्वक कुचल के चल दिलक। शिवू के दिल में टीस उठल आ एक आग करके बैठ गया। अपन पति की हालत देख रामरति के कलेजा फाटे लागल। काका, झुनकी चिखित चिल्लाइत रामनाथ के पीछे दौड़ल। झुनकी रुक, इतने जोर से चिल्लायल शिवू कि झुनकी के कलेजा दहल गेल। मर गेलो तुहर ननका काका, खबरदार आई के बाद इस हमर घर में ओकर नाम के चर्चा भी न होए के चाहिए।
शिवू निढाल होके गिर पड़ल।

0: तामरती आ झुनकी छाती पिट पिट के रोए लागल।
1: अखनी अपने राम बाबू नीरव के कहानी सुनित रही शिबू भैया के अरमान। अब कार्यक्रम में समय हो रहल है शब्द सरिता के। आए शब्द सरिता में बज्जिका के कुछ खास शब्द आ ओकर मायने। शब्द सरिता में सबसे पहले एगो शब्द आयल है पचरा, जेकर मायने होइया झंझट। जेना लोग कहत हतीन दोसर के पचरा में नहीं पड़े के चाही, मतलब दोसर के झंझट में नहीं पड़े के चाही। तब पचरा के मायने भेल झंझट। छूछे, एकर मायने है खाली। जेना लोग कहत हतीन हमरा भोजन में छूछे रोटी है, मतलब खाली रोटी है। तो छूछे के मायने भेल खाली। अनेजा, एकर मायने है इंतजार। जेना कोनो कोनो लोग कहत हतीन कि हम भोर से लेके साँझ तक हुनकर अनेजा करत रही, मतलब हुनकर इंतजार करत रही, लेकिन वो नहीं अयलन। तो अनेजा के मायने भेल इंतजार। कछ मच्छी, मतलब बेचैनी। जेना लोग कहत हतीन वो बच्चा के बुखार के कारण कछमच्छी लगल रहे, मतलब बेचैनी लगल रहे। तो कछमच्छी के मायने भेल बेचैनी। एगो शब्द आयल है गुमान। जेना लोग कहत हतीन हमरा अपन बच्चा के ऊंचा पद प्राप्त करत देख बहुत गुमान होइया, मतलब बहुत गर्व होइया। तो गुमान के मायने भेल गर्व होना। चस्का, मतलब लत। जेना लोग कहत हतीन हमरा चाय के बहुत खराब चस्का लगल है, मतलब लत लगल है। जब तक चाय नहीं पिए थती तब तक सिर दर्द नहीं दूर होइया। तो चस्का के मायने भेल लत। खोतिया, माने कर्ज। जेना कोनो कोनो लोग कहत हतीन केकरो से भी खोतिया लेना, मतलब कर्ज लेना ठीक नहीं होइया। जितना पैसा रहे उतने काम करे के चाही। तो खोतिया के मायने भेल कर्ज। खखनल, मतलब व्याकुल होना। अपन पोता पोती के देखे के लेल बहुत दिन से खखनल है, मतलब व्याकुल है। तो खखनल के मायने भेल व्याकुल होना। शब्द सरिता के अंत में एगो शब्द आयल है गौत, मतलब मवेशी। जेना लोग कहत हतीन मवेशी पालत हती तो ओकर गौत के भी ध्यान रखे के चाही, ओकर चारा के भी ख्याल रखे के चाही। तो गौत के मायने भेल मवेशी के चारा। तो ई रहे बज्जिका के कुछ खास शब्द आ ओकर मायने। बज्जिका कार्यक्रम अंगना अब संपन्न होइया। बज्जिका कार्यक्रम अंगना अपने सबके कैसन लगैया, अपने अपन विचार अपन सुझाव एगो चिट्ठी के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से हमरा भेज सकेत हती। हमर पता है बज्जिका कार्यक्रम अंगना द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा। पिन कोड है 8460004। ईमेल के पता है akashwanidarbhanga@gmail.com। तो अब प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा के संग हमरा यानी विजेता सिन्हा के दू

शोभा गोटो के सुर में भी आप सुन रहे थे उपशास्त्रीय संगीत। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं,
2: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए।
1: बहुत सुंदर विचार, आप सबको धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊ पाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू।
2: और राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं
1: जी।
2: तो अजीत जी, क्यों न इस सप्ताह हम चर्चा करें एक ऐसी चीज की जो हम सबके चारों ओर उपलब्ध है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन
1: जी, लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की
2: जी।
1: आज हम चर्चा करेंगे पेड़ों के बारे में और लेंगे उनके बारे में दुर्लभ जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं विमलेश जी से।
2: जी अजीत जी, तो श्रोताओं आपको बता दें, पेड़ हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे पुराने, बड़े और महत्वपूर्ण जीव हैं। इनकी उत्पत्ति लगभग 40 करोड़ साल पहले हुई थी। ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं।
1: जी विमलेश जी, प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों के पैदा होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया
2: जी।
1: विमलेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आए?
2: जी अजीत जी, सचमुच ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ी, मिट्टी बनी और कार्बनिक गैसें कम हुई।

0: हुई जिनसे जानवरों के लिए भूमि पर रहना आसान हुआ। बिना पेड़ों के ऑक्सीजन कम मिलती जिसके कारण स्थलीय जीवों का रहना असंभव हो जाता।
1: जी, तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की उत्पत्ति की।
0: जी
1: चलिए अब जानते हैं पेड़ों के बारे में कुछ रोचक बातें। इनकी दुनिया ऐसे दुर्लभ और अनोखे रहस्यों से भरी है जो श्रोताओं सचमुच हमें हैरान कर देंगी।
0: जी सचमुच। तो श्रोताओं आपको बता दें कि पेड़ों का अपना सोशल नेटवर्क होता है जिसे वनस्पति विज्ञानी वुड वाइड वेब कहते हैं।
1: अरे वाह, वुड वाइड वेब यानी यहाँ भी इंटरनेट की तरह www है।
0: जी
1: लेकिन विमलेश जी, ये होता क्या है?
0: अजीत जी, ये कोई इंटरनेट नहीं है लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल है।
1: जी हमने अक्सर मातृ वृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
0: बिल्कुल,
1: मातृ वृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़ों से जुड़ जाती हैं।
0: जी
1: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं।
0: जी ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं।

0: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं।
1: जी, ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं। ऐसे पेड़ों को मातृवृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक माता की तरह दूसरे पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों की। अजीत जी, आपने कहा कि पेड़ एक दूसरे को रासायनिक संदेश भी भेजते हैं, इसे जरा श्रोताओं को तो बताइए।
0: जी विमलेश जी, ये जानना सचमुच बहुत रोचक होगा। देखिए, पेड़ पौधे बोल तो नहीं सकते, लेकिन वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को हवा और कवकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं।
1: जी,
0: ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है।
1: श्रोताओं, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी पेड़ या पौधे पर कीटाणु हमला करते हैं तो वे पत्तियों द्वारा हवा में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं, जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं,
0: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिकों ने ये भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं।
1: तो श्रोताओं, पेड़ों के बीच का संचार मूक है, लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन रसायनों, आपस में जुड़ी हुई जड़ों, कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
0: एक बात और श्रोताओं, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं।
1: जी,
0: इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है तो कुछ समय बाद वहाँ नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
1: इसलिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओ, कैसी लगी ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है श्रोताओ, मातृवृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मातृवृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
0: आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है, तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।
2: Your attention please. Air India announces the arrival of its flight number AI-806 from Bombay. Your attention please. Air India announces.
3: पापा, कायरा का ये हवाई अड्डा कितना शानदार है।
4: हाँ बेटा।
3: दादाजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
4: यहीं कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते।
3: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
4: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सुरिनाम जाना पड़ गया था।
3: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
4: हो सकता है कि...
5: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।
4: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
5: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊं। आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी।
4: अच्छा अच्छा, कादिर मेरी बेटी श्वेता से मिलो। और श्वेता, ये हैं अब्दुल कादिर मोहम्मद फादिल।
6: अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह श्वेता बिटिया को तो मिस्री अभिवादन भी आता है। चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुँचा दो।
4: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो, आओ
7: आओ चलो आओ।

0: प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
1: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
2: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं।
3: अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
0: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है। जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
3: अच्छा, काहिरा नहीं अल काहिरा।
0: हाँ
3: पापा, पापा हुँ? वो देखो, नील नदी है ना।
1: हाँ, वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
0: लीजिए, वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा, घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
1: अरे कादिर भाई, एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
0: नहीं, अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा, मैं चलता हूं।
1: अच्छा अच्छा।

0: कादिर अंकल, ये बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
1: अरे बाप रे, यहाँ कितनी भीड़ है। कादिर, क्या आज कोई खास बात है?
2: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं।
0: अच्छा, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
2: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं, कुछ तो झुग्गियां बनाकर रहते हैं।
0: दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
2: हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ, तुम्हें जलेबी खिलवाएं।
0: जलेबी? वैसी ही जैसे हमारे देश में मिलती है?
2: हाँ बिल्कुल वैसी।
1: कमाल है
2: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं, यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
1: वाह।
2: और ईद के मौके पर सिवैयाँ भी मिलती हैं।
0: मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी।
2: ठीक है, चलो उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है,
1: और इसके बाद घर लौट जाएंगे।
0: इतने जल्दी?
1: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?
0: हाँ, जाना है।
2: फिर ठीक है, कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा। अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं।
1: हाँ।

0: पिज़ा का महान स्फिंक्स।
1: बाप रे, कितना विशाल है
0: ये स्फिंक्स। 18 मीटर ऊंचा और 57 मीटर लंबा है। कहते हैं ये 5000 वर्ष पुराना है।
1: अच्छा कादिर अंकल, स्फिंक्स का चेहरा आदमी जैसा और बाकी शरीर बैठे हुए शेर जैसा क्यों बनाया गया है?
0: पहले लोग ये रहस्य नहीं जानते थे, लेकिन फिर इस विशाल स्फिंक्स के पंजों के बीच एक प्रार्थना कक्ष में एक शिलालेख मिला, जिससे पता चला कि ये स्फिंक्स सूर्य देव हर्माचीज का एक रूप है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जिससे ये गीजा के पिरामिडों को शैतानी शक्तियों से बचा सके।
2: वाकई बड़ा भव्य है। अच्छा ठीक है, अब भीतर चलकर पिरामिड देखते हैं। आओ।
1: चलिए पापा।
0: यहाँ गीजा में तीन पिरामिड हैं। वो देखो सबसे बड़ा पिरामिड, जानती हो श्वेता इसकी ऊंचाई कितनी है?
1: क्या पता, ये तो पहाड़ जैसा लगता है।
0: हाँ, इसकी लंबाई 147 मीटर है।
1: कादिर अंकल, इन्हें क्यों बनवाया गया था?
0: दरअसल ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं या फैरो के मकबरे हैं, जैसे आगरे का ताजमहल है ना।
2: इसका मतलब इन पिरामिडों में फैरो की कब्रें हैं।
0: कब्रें नहीं है, शव रखे जिन्हें ममी कहते हैं। ममी शब्द अरबी भाषा से आया है जिसका मतलब है संरक्षित शरीर।
1: मिस्री लोग शव को संरक्षित क्यों रखते थे?
0: उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो ये मानते थे कि आत्मा पक्षी की तरह दिन भर उड़ती फिरती है और रात होने पर अपने शरीर में लौट आती है, इसलिए शरीर को संरक्षित करना जरूरी था, नहीं तो वो लौट कर कहां आती।
2: कादिर, ममी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा।
0: हाँ मिस्टर वर्मा, इसमें 70 दिन लगा करते थे।
2: ओ, तो क्या हर व्यक्ति की ममी बनाई जाती थी?
0: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत में दफना दिया करते थे और रेत उन्हें सुरक्षित रखती थी। फिर बाद में महत्वपूर्ण लोगों के लिए मकबरे बनाए जाने लगे, लेकिन इन मकबरों के भीतर उतना सूखापन नहीं होता था जितना बाहर की रेत में होता था।
2: ओ,
0: इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया, नहीं तो वे नष्ट हो जाते।
1: पापा पापा, वो देखिए एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है।
0: बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो।
1: किस लिए?
0: ये लड़का 6 मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगेगा।
2: अरे वो देखो वो उतरने भी लगा।
1: पापा, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी का जो किला है ना, उसके 54 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने वालों से इनाम लेता है।
2: अरे लो, वो उतर कर हमारी ओर ही आ रहा है। वाह वाह, शाबाश बेटा शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो, ये हमारी तरफ से इनाम।
1: पापा, मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं?
2: अरे नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है, थककर चूर हो जाओगी। देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है। हाँ
1: तो फिर चलिए।
2: हाँ तो आओ, चलो आओ, खादे आओ।

0: श्वेता, कहो कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा अंकल। देखिए, काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया। पापा कहाँ हैं?
0: अभी आ रहे हैं, स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए।
1: चलो अच्छा है, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है।
0: वो देखो श्वेता, नील नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे हैं।
1: और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं?
0: कपास चुन रही हैं। जानती हो, कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है। यहाँ एक साल में कपास की 3 फसलें उगाई जाती है।
1: अच्छा, उस खेत में किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। ये तो हमारे देश जैसा ही है। अंकल, यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते?
0: अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी है, बस नील नदी के किनारे किनारे ही तो, बाकी सब तो रेगिस्तान ही है।
2: फिर भी हमें आपका देश बहुत आकर्षक लग रहा है।
1: पापा, मेरे लिए खाने को क्या लाए?
2: ये तले हुए आलू, डबल रोटी की सैंडविच, दूध और कहवा।
0: ओह शुक्रिया, मिस्र की 3 खास चीजें हैं, कहवा, गप्पे और हुक्का।
2: अच्छा ठीक है।

0: तो कहवा तो ये रहा, अब गप और हो जाए।
1: इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा।
0: क्यों?
1: वहाँ लोग कहवा पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं।
2: अंकल, वो औरतें सर पर क्या रखकर लेके जा रही हैं?
1: अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
0: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
1: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहली पूछो।
2: पूछिए।
1: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है। बताओ कैसे?
2: हर साल पानी चढ़ता है।
1: हाँ, इतना कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है।
0: और मिस्र में वर्षा होती नहीं।
1: हाँ,
0: अजीब सी बात है।
1: हार गए?
2: हाँ अंकल, आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता है?
1: प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए। 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: देखिए, नील नदी में दो नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है। पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है। साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है।
2: मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर
0: ए श्वेता, तुम झूठ कब से बोलने लगी?
1: जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे, इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता। बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।
2: बुरी बात है।
0: सो तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना।
1: अब तो जान गए हैं, फिर भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है।
2: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
0: हाँ बेकादर, इस सवाल का जवाब तो जाने।
1: इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं। मैं पूछ कर बताऊंगा।
2: अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?
0: वाह, कितना सुंदर गीत है। अच्छा कादिर, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं?
1: इस स्टीमर से तो नहीं। कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा।
2: वहाँ क्या है अंकल?
1: 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है।
0: इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा।
1: हाँ बिल्कुल, अब सिंचाई आसानी से हो जाती है। बांध से पैदा हुई बिजली से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है।
0: आबू सिंबल के मंदिर भी यही कहीं है ना कादिर?
1: हाँ, बांध के पास ही पहाड़ी पर। हाँ। जानते हैं, बांध के पीछे जो झील बनाई गई है, ये मंदिर उसमें डूब गए होते। लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन मंदिरों को बड़ी होशियारी से घाटी से हटवाकर पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया।
2: पापा, मैं भी देखूंगी वो मंदिर।
0: अरे मुझसे कहने का क्या फायदा बेटा, अपने कादिर अंकल से कहो।
2: अंकल ले चलेंगे ना हमें?
1: हाँ हाँ, अगर तुम एक पहेली बूझ दो तो।
2: क्या फिर से पहेली? क्या आबू सिंबल के मंदिर की भी कोई पहेली है?

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नील के किनारे, और अब इसी के साथ हम अपने उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आइए सुनते हैं नए फिल्मी गीतों को। गीतों की शुरुआत हम करने जा रहे हैं फिल्म अनुवाद से। गायक कलाकार हैं सोनू निगम, सुखविंदर सिंह, विजय प्रकाश, महालक्ष्मी अय्यर और मोहम्मद दानिश। संगीत निर्देशन मिथुन ने किया है। गीतकार शहद कादरी।

अभिनव शेखर के गीत और संगीत को अभी आप सुन रहे थे फिल्म मिस्ट्री ऑफ टैटू से। गायक कलाकार अभिनव शेखर और प्रज्ञा दासगुप्ता। श्रोताओं आइए सुनते हैं अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म तू झूठी मैं मक्कार। गायक हैं अरिजीत सिंह, गीत रचना अमिताभ भट्टाचार्य ने की है, संगीत दिया है प्रीतम ने।

प्रशांत पांडे के लिखे इस गीत को भी आप सुन रहे थे फिल्म लापता लेडी से। संगीत दिया था राम संपत ने, गायक कलाकार अरिजीत सिंह। श्रोताओं आइए सुनते हैं एक और गीत अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म डंकी से। गीत रचना इरशाद कामिल की है और संगीत दिया है प्रीतम ने।

फिल्म डंकी का गीत अभी आप सुन रहे थे। अरिजीत सिंह की आवाज में इसी गीत के साथ नए फिल्मी गीतों का सिलसिला भी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे दिनांक 5 जुलाई 2026 को प्रसारित कार्यक्रम हेलो जिंदगी के संपादित अंश का प्रसारण। सूत्रधार होंगे संजय कुमार, प्रस्तुतकर्ता असद दौत।

शोर यूं ही नहीं परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा। पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था, जिस्म जल जाएंगे जब सर पे साया न होगा। आज इस बात में कोई भी शक नहीं कि जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के क्षरण, प्रदूषण, बाढ़ और जल संकट जैसी अनेक अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदाओं की चुनौतियों से जूझ रही है, तब भारत में 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाने वाला वन महोत्सव सप्ताह केवल वृक्षारोपण का अभियान नहीं है, बल्कि एक पेड़ माँ के नाम के प्रेरक सूत्र के साथ पृथ्वी पर जीवन बचाने का राष्ट्रीय संकल्प बन चुका है। वास्तव में यदि वर्तमान समय की आवश्यकताओं को देखा जाए तो वन महोत्सव से बड़ा कोई उत्सव हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका संबंध केवल

0: पर्यावरण से ही नहीं बल्कि मानव सभ्यता के भविष्य और उसके अस्तित्व से भी है। भारतीय परंपरा में वनों को देवतुल्य माना गया है। वे केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि पृथ्वी के फेफड़े, जैव विविधता के सबसे बड़े आश्रय, नदियों के संरक्षक, जलवायु संतुलन के प्रहरी तथा करोड़ों लोगों की आजीविका के आधार हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से ठीक पहले जुलाई 1947 में दिल्ली में चलाए गए व्यापक वृक्षारोपण अभियान ने वन महोत्सव की अवधारणा को जन्म दिया था, जिसे तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी ने 1950 में राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। जुलाई के प्रथम सप्ताह का चयन इसलिए किया गया इस महोत्सव के लिए क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान मिट्टी में पर्याप्त नमी होने से पौधों के जीवित रहने की संभावना सर्वाधिक रहती है। आज यह अभियान भारत के वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन का जीवंत प्रतीक बन चुका है। अब सवाल ये है कि क्या हम वन संरक्षण के महत्व से अवगत हैं भी या नहीं, और अगर अवगत हैं भी तो क्या इसमें हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती भी है या नहीं बनती है, क्या हम इन जिम्मेदारियों का निर्वहन कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, और सबसे बड़ा सवाल ये कि इन जिम्मेदारियों की अनदेखी हमारे अस्तित्व के लिए कितनी घातक है, क्या इसका तनिक भी भान हमें है भी या नहीं। कुछ इन्हीं बेहद महत्वपूर्ण तथ्यों पर केंद्रित है आज का हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है हेलो जिंदगी। श्रोताओं नमस्कार, संजय की तरफ से। वन संरक्षण का महत्व और हमारी जिम्मेदारी, यही आज की हेलो जिंदगी का विषय और इस बेहद खास विषय पर चर्चा और आप श्रोताओं को जरूरी जानकारी और परामर्श देने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं पर्यावरण विज्ञान के जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर मुकेश प्रसाद। डॉक्टर मुकेश प्रसाद, आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में पहली बार आपका स्वागत, नमस्कार, कैसे हैं सर?
1: ठीक हूँ, नमस्कार संजय जी, और आपको श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार।
0: वन संरक्षण के महत्व को लेकर बहुत सारी बातें होंगी आज इस कार्यक्रम में, लेकिन जिज्ञासा ये भी है कि डॉक्टर मुकेश प्रसाद कहाँ के रहने वाले, कहाँ से आते हैं और जहाँ तक का सफ़र आपने एक शिक्षाविद होने के नाते पूरा किया है, ये सफ़र कैसा रहा है, कहाँ पढ़ाई लिखाई, संक्षेप में बता दें।
1: मैं इसी मिथिला क्षेत्र से हूँ और मैं यहीं से हूँ। मेरी शुरुआती एजुकेशन तो यहीं हुई, बाद में हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली गए, दिल्ली विश्वविद्यालय से हमने आगे की पढ़ाई की और उसके बाद सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट से हमने अलग अलग जो पर्यावरण में है हमने हायर एजुकेशन और रिसर्च किया है।
0: कहाँ के रहने वाले हैं आप?
1: मैं मधुबनी जिला का रहने वाला हूँ, मधुबनी जिला से, और उसके बाद अभी मैं कार्यरत हूँ मिथिला यूनिवर्सिटी में।
0: पर्यावरण को लेकर जब हम वन बोलते हैं, फॉरेस्ट, तो ये क्या है?
1: देखिए, अगर हम एक आम तरह से देखते हैं तो एक सिंपल जंगल या फॉरेस्ट या वन हमें कुछ पेड़ दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हमें इसके टेक्निकल उसमें जाएं कि ये हमारे लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जैसे किसी भी जीवन यापन करने के लिए हमें लाइफ के अलग अलग पहलू पे देखना पड़ता है, वैसी हवा पानी ये जंगल ही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम इसे उस तरीके से नहीं देख पाते। तो इसके लिए क्या है कि वन हमारा शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और जो हमारे जीने के लिए उपजाऊ मिट्टी, ये सारी प्रोवाइड करता है, जिससे हमें अपना फूड फॉडर और शेल्टर, जो हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए होता है, सारी उत्पत्ति हमें वन से होती है। साथ में ये भी देखा जाता है कि वन को हम इतना नेग्लेक्ट कर देते हैं कि उसका दोहन इतना तेजी से हो रहा है कि वो समय आ गया है जिसके बाद हमें मुड़के देखना पड़ेगा।
0: सही बात है। एक श्रोता जुड़ गए, इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, आगे भी उनसे बात कर लें। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। हेलो,
2: नमस्कार सर।
0: जी नमस्कार,
2: सर मनुष्य के लिए तो कई जिम्मेवारी है जिसमें वन संरक्षण की जिम्मेवारी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें वन संरक्षण से लेकर के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय जीवन वास करता है और अपना जीवन बिताता है। सर, तो मेरा कहने का मतलब

0: की व्यक्ति, समाज, राज्य, देश के लोगों को इस तरह अपना जिम्मेदारी निभाना चाहिए जिससे वन सुरक्षित हो। दूसरा है कि लोग मजबूरी वर्षा पेड़ काटते हैं अर्थ उत्पादन के लिए, परिवार चलाने के लिए, पर पेड़ लगाने से असमर्थ हो जाते हैं, भूल जाते हैं। किस तरह से अधिक पेड़ लगाया जा सकता है एवं इसका संरक्षण किया जा सकता है सर। तीसरा है सर, प्रखंड जिला के अधिकारी पदाधिकारी पेड़ों का पौधा देकर मुफ्त या कम कीमत पर तो बिहार और देश के मजदूर किसान इसे संरक्षण कर अपने जिम्मेवारी निभा सकते हैं।
1: जी
0: और है सर कि अनुकूल बारिश, अनुकूल धूप, अनुकूल उपज, अनुकूल स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए इस प्रतिकूल विचार और व्यवस्था को हटाना होगा सर।
1: चलिए, बहुत सारी बातें आ गई आपकी तरफ से मोहन पासवान जी, आप एक तरह से कार्यक्रम की भूमिका ही रख देते हैं। लगातार

0: उसका संरक्षण किया जा सकता है सर। तीसरा है सर, प्रखंड जिला के अधिकारी पदाधिकारी पेड़ों का पौधा देकर मुफ्त या कम कीमत पर तो बिहार और देश के मजदूर किसान इसे संरक्षण कर अपने जिम्मेवारी निभा सकते हैं।
1: जी
0: और है सर की अनुकूल बारिश, अनुकूल धूप, अनुकूल उपज, अनुकूल स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए विचार और हटाना होगा।
1: चलिए, बहुत सारी बातें आ गई आपकी तरफ से मोहन पासवान जी, आप एक तरह से कार्यक्रम की भूमिका ही रख देते हैं। लगातार कई सवाल आप करते हैं, लेकिन सवाल बड़े अच्छे होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, और इन सवालों के लिए आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद भी करते हैं। मोहन पासवान जी, सुनिएगा, कार्यक्रम में एक एक कर सारी चर्चा हम करेंगे, है ना। हम वहीं से बात लेते हैं जहाँ से आपने कहा कि हम तो पेड़ काटते हैं मजबूरी से, लेकिन उतने ही मनोयोग से पेड़ लगाते नहीं है। और सुनिएगा, सारे सवालों को हम एक एक कर शामिल करेंगे पूरे कार्यक्रम में। मोहन पासवान जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद,
1: प्रणाम प्रणाम। और एक श्रोता हमारे फोन लाइन पर इस समय है,
2: रघुनंदन सिंह। पहले तो जितने भी आकाशवाणी के स्टाफ है, जो पदाधिकारी आए हैं, और आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम है।
1: जी प्रणाम।
2: सबसे बड़ी चीज है जो वन की कटाई जो हो रही है, तो खास करके 90% आदमी का आजीविका उसी से है, लेकिन घर में खर्चा ज्यादा पड़ता है तो विवश हो करके या तो जमीन बेचते हैं या गाछ बेचते हैं। इस पर गाछ नहीं बेचने के लिए उनको तत्पर होना चाहिए। तो जब तक हमारी कम से कम मिनिमम आवश्यकता है उसकी पूर्ति जब तक बाहर से नहीं होगी, तब तक वृक्ष की कटाई बंद नहीं होगी। कहने के लिए 100 कहते हैं हम, दिन रात गांव में रहता है, पहली बात। दूसरा बात, जो अगर कोई गाछ लगाना चाहता है तो उसके लिए सरकार मुफ्त में गाछ दे।
1: अच्छा।
2: खरीद करके गाछ लगाना सबसे संभव नहीं है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई। यही तो मेरा पास है, सरकार
1: सरकार की तरफ से मुफ्त पेड़। बहुत अच्छी बातें, बहुत
2: के लिए क्या करना होगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छे सवाल आपने किए हैं और ज़रूरी सवाल भी है आज के दिन, इस पर सोचना भी चाहिए। जमीन और पेड़ बेचना पड़ता है लोगों को, लेकिन हम पेड़ बेच देते हैं लेकिन पेड़ लगाते नहीं। और दूसरी बात यह कि अगर सरकार की तरफ से मुफ्त पेड़ दिए जाएँ तो सहायता मिलेगी, सहायता तो मिल रही है सरकार से, और पेड़ उपलब्ध भी हैं,
3: उपलब्ध कराए जा रहे हैं,
1: वन विभाग की तरफ से भी है, और
3: मनरेगा के उसमें भी आता है कि आप कुछ योजनाएं लेके,
1: और साथ ही साथ कृषि विभाग से अगर संपर्क करें, जिला में हर जिला में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां से संपर्क करें, तो न सिर्फ पेड़ प्राप्त होंगे लगाने के लिए पौधे, बल्कि उसका संरक्षण वो कैसे करेंगे उसकी भी जानकारी दी जाती है। एक और श्रोता जुड़ गए, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी नमस्कार। हेलो,
4: नमस्कार, मैं अरुण कुमार लाल दास सुंदरपुर बिहार दरभंगा से बोल रहा हूँ।
1: जी नमस्कार।
4: सुझाव है
1: जी,
4: है ना, इसको ध्यान पूर्वक सुना जाए।
1: अवश्य।
4: आप सुन, एक हफ्ता पहले आपके लहरिया सराय के बगल में आई गांव के एक आदमी 94 साल की उम्र में अपना जन्मदिन मना रहे थे, उन्होंने 94 पेड़ लगाया।
1: अच्छा अच्छा जी।
4: उसका नाम राजेंद्र लाल दास है।
1: जी जी,
4: मेरे करने का मतलब है कि आप इस रेडियो के माध्यम से लोगों को ये संदेश दीजिए,
1: हम
4: अपना जन्मदिन मना रहे या विवाह का त्योहारी मना रहे, तो जितने दिन के लिए मनाते हैं उतने पेड़ वो रोपें, और रोप करके के पर्यावरण को और वन को उन्हें बढ़ाने के लिए दिशा में काम करें। ये मेरा पहला सुझाव है
1: जी।
4: और दूसरा मेरा कहना यह है कि प्रशासन के द्वारा अभी यहाँ से ये बिलोंग करते हैं मुकेश बाबू, मधुबनी हो, दरभंगा हो, हर जगह जो है लगातार पेड़ों को काटा जा रहा है। इससे पहले वाले प्रोग्राम में भी पर्यावरण प्रोग्राम जो आपका था उसमें भी मैंने प्रश्न किया था कि दरभंगा महाराज के द्वारा 52 बीघा में पेड़ रोपा गया था आम का, जो मैं हम लोग बचपन से

0: ठीक है, अब एक भी पेड़ नहीं है, प्रशासन इसके लिए क्या कर रहा है, लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, इस पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी, ये मेरा कहना।
1: देखिए, एक सुझाव जो आया है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, आपने दरभंगा महाराज द्वारा 52 बीघा में जो लगाया गया था वहाँ भी पेड़ की कटाई हुई है, ये चिंता का विषय है। क्या कहेंगे आप?
2: कहीं पे भी अगर पेड़ की कटाई होती है तो उसे हमें देखना चाहिए कि कहाँ मिनिमम रोकना जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि पेड़ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और हमें प्रयास करना चाहिए कि कम से कम हो या ना के बराबर हो, तभी हमारा जीवन और हमारे जो ज़रूरतें हैं और साफ़ हवा, साफ़ पानी और साफ़ जल के लिए वो बनी रहेगी। कोई भी एक्टिविटी होती है उसके दोगुने या तिगुना अगर कहीं से हटाएगा तो कहीं लगाया भी जाता है, तो ये देखने वाली बात है कि कहाँ उससे ज़्यादा लगाया गया है कंपनसेटरी फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर कहीं कटा है तो कहीं उससे दोगुना लगाया जाना चाहिए। और जो इनका एक दूसरा सवाल था कि हर जन्मदिन या हर एक त्योहार के एनिवर्सरी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने एक सुझाव दिया है, सभी लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पहले देखेंगे, पहले जनरेशन के लोग अपने आप ही जहाँ उनको जगह मिलती थी, फलदार हो या छायादार हो, वो पौधे लगाए थे, उनके जीवन का एक हिस्सा था कि इस तरीके से लगाया जाए। तो ये एक बहुत ज़रूरी है आम लोगों के लिए जो ये चाहते हैं कि हम कैसे अपने आप को कंट्रीब्यूट कर सके इस कठिन परिस्थिति में। तो मेरा कहना है कि हर एनिवर्सरी पे, जन्मदिन पे या दूसरे महत्वपूर्ण दिवस पे वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करें।
1: जी नमस्कार, हेलो,
3: महाकांत सिंह सर बोल रहा हूँ।
1: हाँ महाकांत सिंह जी, बताइए कैसे हैं?
3: बढ़िया सर।
1: हनुमानगढ़ राजस्थान से?
3: राजस्थान से सर।
1: जी बताइए, आज क्या जिज्ञासा है?
3: सर आज बहुत अच्छा विषय आपने रखा है। 11 सितंबर 1730 को जोधपुर जिला के खेजरी गांव में अमृता देवी के नेतृत्व में खेजरी के पेड़ को बचाने के लिए 363 आदमी शहीद हो गए सर। आज सरकार अकेले क्या करेगी जब तक इसको सर जनता, आपने तो सर इसको जनता के लिए जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए यह प्रोग्राम रखे हैं सर।
1: बिल्कुल,
3: हम तो अपने घर के बच्चे का जन्मदिन में भी पेड़ ही लगाते हैं राजस्थान में सर।
1: बहुत अच्छा करते हैं महाकांत सिंह जी, बहुत बढ़िया करते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि हमारी परंपरा रही है पेड़ लगाने की। हमारे पूर्वज जो है ना वो इतने दूरदर्शी थे कि वो सिर्फ पेड़ नहीं लगाते थे महाकांत सिंह जी, वो पोखर खुदवाते थे, तालाब खुदवाते थे, वो कुआं खुदवाते थे ताकि लोग पानी सही ढंग से प्राप्त कर सकें, पी सकें। वो इतने मतलब परोपकारी, तो छोड़ दीजिए शब्द थोड़ा छोटा हो जाएगा, इतने दूरदर्शी थे वे। आज देख लीजिए हमने कितने तालाब भर दिए, हमारे पूर्वजों के खुदवाए हुए तालाब। आज अगर किसी को कहा जाए कि आप एक तालाब खुदवाइए तो पसीने छूट जाएंगे उनके।
2: इसमें जो प्रकृति हमें मिला है कि हमारे एज ए हम कस्टोडियन है, हम जो आने वाले जनरेशन है उसकी कस्टोडियन है। हम लोगों को इस तरह से देखना चाहिए कि ये हमें अपने पूर्वज से मिला है और हम जो बेहतर स्थिति में हैं वैसी आगे वाले जनरेशन अपने बच्चों को ये दे।
1: सही बात है। एक श्रोता और जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार।
4: नमस्ते सर।
1: जी नमस्ते, अपना नाम बताएं।
4: चंदेश्वर साहब, ब्रह्मपुर पूर्वी जाले प्रखंड से बोले। मुकेश जी को, संजय जी को नमस्ते मेरे तरफ से।
1: नमस्ते हमारी तरफ से भी आपको चंदेश्वर जी।
4: और हम भी यहाँ का जिले भी जब बीज ले जा करके राजस्थान में क्या कहते रत्नगर में छीट दिए हैं, अब होगा ना होगा ऊपर वाला जाने।
1: अच्छा अच्छा लेकिन चंदेश्वर जी, ये जागरूकता के बीज जो आज हेलो जिंदगी में हम बिखरा रहे हैं हर जगह है ना, ये जागरूकता के पेड़ उगेंगे या ना उगेंगे ये चंदेश्वर जी आप पर डिपेंड करता है, ये आप पर निर्भर करता है कि आप हमारी बातों को किस तरह से लेते हैं, है ना। क्या जिज्ञासा है चंदेश्वर जी, व्यक्त कीजिए। मुकेश जी मुस्कुरा रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, बताइए।
4: सबसे बड़ा ज्ञानी और धार्मिक आदमी वही होते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए पेड़ लगाते हैं।
1: सही
4: और
1: बात।
4: अभी के समय में एक भी पेड़ बाल बच्चे के लिए, चाहे हम अल्लाह दादा लगा के गया था, हमारा नाना लगा के गया था, ऐसा भी सबों में ये वो नहीं मिलेगा सर।
1: सही बात।
4: अभी हम लोग भी अपने बच्चे के लिए 10 पेड़ लगा दिए हैं, लगा रहे हैं, बीच में

0: आम का पेड़ भी हमें दो गो लगाए हैं तो और हर पेड़ लगाए हुए हैं। ऐसी बात हमारे पेड़ जितनी भी जगह सब तो हम पेड़ से हम भर दिए हैं।
1: सही,
0: लेकिन हर इंसान को भरना चाहिए अपने बच्चे लिए के लिए। अभी देखिए, अभी पूछिए दादा तुम्हारे लिए क्या लगाया, तो कुछ नहीं लगाया। दादा पेड़ लगाया था तो पापा ने बेच दिया, पैसा के काम पर आकर बेच दिया, तो बच्चे के लिए रखा क्या पापा ने?
1: सही बात है।
0: और समाज के लिए कहीं से थक करके आते हैं, कोई देखिए चोर चाकर जितने भी बड़े बड़े पेड़ थे सबको काट करके आते बेच दिए हैं। इतनी आरा मिल हो गया है लेकिन उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आखिर आरा मिल में तो यही पेड़ों ने काट करके ले जाकर के उसको लकड़ी किराई करता है, तख्ता बनाता है और भी कोई।
1: सही बात है। देखिए चंद्रेश्वर जी, सूखे हुए पेड़ को काटने में तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हरे हरे यही बात है, हरे पेड़ को नहीं काटना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपकी चिंता बहुत सही है। अगर हम नहीं लगाते हैं तो हमें काटने का हक नहीं है पेड़ों को, है ना? सही बात है। हम किसी को अगर सांसें नहीं दे पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं, तो सबकी सांसें क्यों खींच रहे हैं भाई, है ना? सही बात है।
2: हाँ, तो इसमें जैसे चंद्रेश्वर जी ने कहा कि लोगों को एक एक जागरूकता, जैसे चंद्रेश्वर जी के एक जागरूक बन गए कि आप कैसे, तो वैसी तरह आप दो चार लोगों को अवेयर करें। अगर आप लोग भी अवेयर करेंगे, जो पहले से ही अवेयर है, जागरूक है, दो चार को अगर जागरूक करेंगे कि उसका महत्व क्या है, तो वैसे ही धीरे धीरे धीरे लोगों को समझ आएगा कि हमें आने वाले अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए ये ज़रूरी है। और हम लोग तो कर ही रहे हैं, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं चंद्रेश्वर जी। बहुत
0: ऐसे मत करो, पेड़ लगाओ, बाल बच्चे के लिए लगाओ, कभी हम कहेगा दादाजी लगाया, नानाजी लगाया, तो उससे तुम्हारे परिवार का भी नाम चलता है, बच्चों को भी खुश होता है, समाज में भी सुखी होता है। और ये सब होना चाहिए। देखिए कोई पाक टोकी है तो पानी खोल दिया तो चल रहा है, कोई बंद करने वाला कोई नहीं है। अरे आने वाले समय में, पिछले साल देखिए पानी रुक गया था तो कितना भी परेशान हो गया था, टैंकर से पानी गांव-गांव में आना शुरू हो गया था।
1: सही बात है।
0: ये सब पर आदमी को ध्यान, ये सब पर्यावरण का कमी के कारण होता है, हम लोग का सोच की कमी के कारण होता है।
1: चंद्रेश्वर जी, इस कार्यक्रम में बने रहिएगा, सुनिएगा जरूर। डॉक्टर मुकेश प्रसाद जी, एक और श्रोता जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार।
3: नमस्कार सर, मैं दिनेश मिश्रा, शिक्षक।
1: हाँ हाँ, शिक्षक है आप।
2: नमस्कार
1: जी।
3: आजकल विषय है सर
1: जी,
3: उसमें मेरा ये कहना है, हम लोग घर के आस पास आज से नहीं पुरातन जमाने से ही गंगा जारी रहता है चारों ओर। लोग कहता था कि ये लोग क्या घर में रहेगा, घर के चारों ओर तो खाली जंगल ही जंगल रहता है।
1: अच्छा अच्छा,
3: तो उस दिन हंसी लगता था इस बात को, नहीं समझ पाते थे, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि जंगल पूरा लोग क्यों लगाते थे। आज पूरा फिर वृक्षारोपण जंगल लगाओ अभियान चला है, जरूर कहीं ना कहीं हम लोग के पूर्वज जो थे वो दूरगामी सोच के व्यक्ति थे।
1: बिल्कुल।
3: आज जो है जागरूकता है, पेड़ नहीं लगा रहे हैं, पेड़ लग भी रहा है
1: जी,
3: लेकिन कहीं कहीं ऐसा देख करके आसपास पद लगता है कि बड़े बड़े अधिकारी लोग जो है वो पेड़ लगाते हैं, छोटा सा ही पौधा क्यों, लेकिन पेड़ लगाते हैं और फोटो खींच करके मीडिया में देते हैं
1: जी।
3: उस पेड़ का फिर क्या हुआ, पानी पड़ा कि नहीं पड़ा, गाछ मर गया या जिंदा है, उसको देखने वाले कोई नहीं होते हैं। तो क्या इसे जागरूकता है कि केवल
1: दिनेश
3: से फोटो खींच करके दे देने से?
1: दिनेश मिश्रा जी, आपकी जिज्ञासा
3: तो
1: जो है
3: होना चाहिए ना सर।
1: दिनेश मिश्रा जी, आपकी जिज्ञासा और चिंता दोनों बातें हमारी समझ में आ रही हैं। सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए और सोशल मीडिया में मीडिया पे पोस्ट करने के लिए,
3: नाम कमाने के लिए
1: अगर पौधरोपण कर रहे हैं तो वो सही नहीं है, ये आपका कहना है और ये आपकी चिंता भी है और सही भी है, है ना जी। नमस्कार, अपना नाम बताएं।
4: मरिया भिंडी, कल्याणपुर समस्तीपुर से बोल रहा हूँ। राम कुमार शाह मेरा नाम हुआ।
1: हाँ राम कुमार शाह जी,
4: मुझे याद है मैं प्राथमिक विद्यालय में जब पढ़ रहा था
1: जी,
4: तो उस समय एक शिक्षक थे, नाम पर बोल रहा हूँ, उनका कहना था कि देखो जिस दिन इस पृथ्वी पर से वृक्ष समाप्त हो जाएंगे मानव भी समाप्त हो जाएगा, है ना
1: जी, जी।
4: अब मैं अब देख रहा हूँ कि उनका जो कथन है वो एकदम पूर्णतः सत्य है। ऐसे पृथ्वी ही एक ग्रह है जहाँ वायुमंडल है, जल मंडल है, भूमंडल है, और इस उसके

0: स्वरूप यहाँ जीव मंडल है।
1: सही बात है
0: जी श्रीमान,
1: बहुत बहुत हाँ बड़े अच्छे विचार और बहुत अच्छी बातें आपने रखी कार्यक्रम में राम कुमार शाह जी। बहुत सारी बातें वही आई हैं, उन्होंने कहा कि वृक्ष समाप्त तो मानव समाप्त है। आखिर वृक्ष का महत्व है क्या, वन का महत्व क्यों है और ये कैसे कार्य करता है ताकि हम जीवित रहें, हमें प्राण वायु हमें मिले।
2: जैसे आपने वृक्ष के महत्व कहा, उससे पहले ये कह रहा हूँ कि मानव हम ये समझ रहे हैं कि वृक्ष सिर्फ हमारे लिए हैं। इस पे देखिए कि और जीव जंतु भी डिपेंड रहता है, लेकिन हमने हमारे पास हम पिरामिड के सबसे ऊपर हैं तो हम ये सोचते हैं कि वृक्ष सिर्फ हमारे लिए है, और जीव जंतु भी है और जानवर भी है, उसके लिए भी वृक्ष उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे लिए है, तो उसके बारे में हम अभी नहीं सोचते। तो जैसा आपने कहा कि इम्पोर्टेंस, देखो आप वन को हम किस तरह देखते हैं, हमारी ज़रूरत के हिसाब से देखते हैं कि हमें लकड़ी की ज़रूरत है, हमें कहीं कुछ ज़रूरत है, हमें
1: ऑक्सीजन की ज़रूरत है।
2: हाँ, लेकिन लोग इस तरह नहीं देखते कि हमारे जीवन यापन के लिए जो हवा पानी और जल और भूमि चाहिए उसके लिए भी वृक्ष उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर हमें पानी चाहिए शुद्ध पानी, तो जहाँ वृक्ष होगा वो अपने आप ही जल का स्रोत बनेगा और अपने ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा, जहाँ नहीं तो बह के बाहर चला जाएगा।
1: सही बात,
2: तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा क्या, उपजाऊ भूमि, अगर जहाँ पे है आपने देखा उसके पत्ते या उसके होता है तो उससे ज्यादा हमें खेतों में जाता है, तो उससे खेतों की उपजाऊ भूमि बढ़ती है, तो वो भी हमारे उपजाऊ भूमि के लिए जरूरत है, अदर वरना वो पूरा अनुपजाऊ हो जाएगा। दूसरा क्या है कि आप उसके अलावा साफ हवा, जो सभी लोग जानते हैं, तो जो हमारे जिंदगी के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो तो हमें वृक्ष से मिल जाती है। तो ये हमें समझने की बात है, वृक्ष सिर्फ एक पेड़ या लकड़ी नहीं माने, उसको ये मनाए कि पूरा एक इकोसिस्टम है, एक पूरे वातावरण को वो अपने में समाये रखता है।
1: एक और श्रोता जुड़ गया है जी, नमस्कार।
3: जी नमस्कार सर, मेरा नाम रमन कुमार है, जी जगदलपुर गाँव बहादुर प्रखंड जिला दरभंगा से बोल रहे हैं।
1: जी रमन कुमार जी, क्या जिज्ञासा है बताइए।
3: सर हम विशेषज्ञ सर जो है उनसे हम पूछना चाहते हैं कि जो गंगा माता का जो तट है उसके दोनों तरफ जो उसका किनारा होता है, क्या उसके तरफ वृक्ष सरकार के द्वारा या फिर लोग के द्वारा लगाया जा सकता है, जिससे कि आकस्मिक बाढ़ उनके जो मिट्टी है वहाँ का कटाव को रोका जा सकता है और हरियाली भी बढ़ेगी।
2: इसमें सरकार की तरफ से कार्य योजना पे कार्य चल रहा है, जिसमें दोनों तरफ का जो वृक्षारोपण कार्य भी चल रहा है, और वन विभाग और जो लोकल प्रशासन है वो उससे आप संपर्क कीजिए तो आपको बता देंगे कौन से प्रजाति के लगाया जाए, तो आप भी लगा सकते हैं, और उसके लिए कार्य योजना कई स्तर पे वो किया जा रहा है। पेड़ एक पेड़ पूरा एक इकोसिस्टम होता है, वो हवा मिट्टी और जलवायु सभी को परिवर्तन रखता है, और स्पेशली आपने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो लैंडस्लाइड मडस्लाइड ये सारे जो दिक्कत आती है, जिसके एक बड़े स्तर का पहाड़ खिसक जाता है या पूरा मिट्टी खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ पे पेड़ों का लगाना बहुत ज़रूरी है और वो बांधे रखती है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है वहाँ के लिए।
1: चलते चलते डॉक्टर मुकेश प्रसाद, इस मुहिम में लगे हुए लोग के लिए आप क्या संदेश देंगे?
2: मेरा ये संदेश होता है कि वो सिर्फ मानव के लिए बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र सेवा तो कर ही रहे हैं, पूरी मानव प्रजाति के लिए एक बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। सिर्फ मानव ही क्यों, सभी जीव जंतु का जीने का अधिकार इस पृथ्वी पे दिया है और इस पृथ्वी पे सभी को रहने का अधिकार है। तो मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद करूँगा जो जागरूक कर रहे हैं, जो पेड़ लगा रहे हैं और आगे भी जागरूक करते रहेंगे। वो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं, तो उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा।
1: ये बताते हुए श्रोताओं, हम आपसे आज्ञा चाहेंगे कि आज की हेलो जिंदगी का विषय था वन संरक्षण का महत्व और हमारी जिम्मेदारी। बतौर विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर पर्यावरण विज्ञान विभाग, मारवाड़ी कॉलेज, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, आपने हमें समय दिया, हमारे श्रोताओं के लिए समय निकाला, आपके प्रति हमारा आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपको भी संजय जी और आपको श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, मिलेंगे अगले रविवार को इसी कार्यक्रम में इसी समय दिन में 11 बजे। तब तक के लिए कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा, संयोजक असद दाऊद के साथ मुझे संजय को अनुमति दीजिएगा। नमस्कार।
4: जिंदगी कैसी है पहले?

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो जिंदगी, ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप कुछ ही क्षणों में सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में सुगमता आएगी।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे, जिसे उन्होंने

0: भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रवींद्र ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का बिंतांग आदिपूर्णा सम्मान से सम्मानित किया जाना सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। इस दौरान कई सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि महिलाओं की भागीदारी को मजबूती प्रदान की जा सके। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 132 अंक बढ़कर 78,417 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो के घर में दिन के 1:05 हो रहे हैं। अब आप जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे केंद्र से होने वाले आज के आगामी कार्यक्रमों के संदर्भ में।

श्रोताओं 1:10 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से देशभक्ति गीत। फिल्मी गीतों का आने लेंगे दोपहर 1:15 पर। 2:10 पर हम आपको सुनवाएंगे रोजगार सूचना।

दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे हमारे किन से फिल्मी गीतों को। दिन के 3 बजे हम आपको सुनवाएंगे बज्जी का लोकगीत। संध्याकाल 5 बजे आप सुनेंगे हमारे केंद्र से युवा को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। युववाणी के अंदर श्रोता सुनेंगे तरुण मिथिला।

फिल्मी गीतों का आनंद लेंगे संध्या काल में 5:40 पर। विद्यापति गीतों को हम आपको सुनाएंगे शाम 6:10 पर। कार्यक्रम गांव घर आप सुनेंगे संध्या 6:30

संध्या 7 बजे हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। संध्या काल में आप आनंद ले सकेंगे फिल्मी गीतों का 7:52 पर। मैथिली साहित्य के कार्यक्रम सिंगर हार आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर।

रात्रि 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे विविधा सर्वभाषा में देववाणी, सुनेंगे 9:45 पर। साथ ही फिल्मी गीतों का आनंद ले सकेंगे रात्रि काल में 10:00 एक फनकार में। सभा की समाप्ति 11:10 पर की जाएगी। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यही समाप्त।

श्रोताओं आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रस्तुत होने वाले आज के आगामी कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। ये सुनते हैं देशभक्ति गीत ए आर रहमान की आवाज में।

ए.आर. रहमान और उनके साथियों को अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत में। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब हम आपको लिए चलते हैं फिल्मी गीतों के सफर पर। सफर का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म हरी दर्शन से।

हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे फिल्म पगला कहीं का में। गायक कलाकार मोहम्मद रफी, संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन ने किया था। श्रोताओं आइए सुनते हैं सफर का अगला गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म 9-2-11 से। गीत रचना मजरू सुल्तानपुरी की है, संगीत दिया है एस डी बर्मन ने।

तेरे घर के सामने। इस फिल्म का गीत अभी आप सुने थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। गीत रचना हसरत जयपुरी की, संगीत दिया था एस डी बर्मन ने। अगला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं फिल्म आस का पंछी से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और मुकेश। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में गाए इस गीत को अभी आप सुन रहे थे फिल्म फर्ज से। आवाज दी थी मुकेश और लता ने, गीतकार आनंद बख्शी। श्रोताओं अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म हमराज से। गीत रचना साहिल लुधियानवी ने की है और इस गीत को अपने धुनों से सवारा है रवि ने।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे गीत फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार आनंद बख्शी और संगीत दिया था कल्याण जी आना जी ने। आइए सुनते हैं एक और गीत इसी फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में।

हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म गीत से। संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। श्रोताओं, ये सुनते हैं अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म आराधना से। गायक कलाकार किशोर कुमार, संगीतकार एस डी बर्मन और बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश की सभी पंचायतों में आज सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड की हरिपुर पंचायत में आयोजित शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और इसके समाधान के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर आयोजित जनसंवाद को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि घुसपैठ और आतंकवाद के लिए राज्य में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार बिहार को घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में अब राज्य सरकार के स्वामित्व वाले राजमार्ग, बड़े पुलों और बाईपास पर भी टोल टैक्स देना होगा। परिवहन विभाग ने पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026 लागू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत 2 लेन से अधिक लेकिन 4 लेन से कम चौड़ाई वाले स्टेट हाईवे पर NH की निर्धारित दर का 60% टोल लिया जाएगा। वहीं राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा निर्मित 250 मीटर लंबाई वाले पुलों पर भी टोल टैक्स वसूला जाएगा। टोल की वसूली केवल फास्टैग या अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के माध्यम से होगी। अधिसूचना के अनुसार स्थानीय निवासियों, 2 पहिया वाहनों, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहनों तथा अन्य अधिसूचित श्रेणियों को नियमानुसार छूट का प्रावधान होगा। विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले 11 और 12 जुलाई को कयाची में विधायकों का 2 दिवसीय प्रबोधन होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। प्रबोधन कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। कार्यक्रम में लोकसभा की संस्था प्राइड के प्रशिक्षक, विधानसभा सदस्यों को विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देंगे। NDA की एक महत्वपूर्ण बैठक पटना में 10 जुलाई को होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक में जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार समेत NDA के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बताया कि बैठक में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की रणनीति के साथ साथ अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। प्रदेश के सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के 4वें वर्ष में प्रवेश के लिए 7.5 CGPA की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। लोक भवन के अनुसार संबंधित पाठ्यक्रम के अध्यादेश में संशोधन कर यह शर्त खत्म की गई है। संशोधन के बाद अब 6 सेमेस्टर पूरा करने वाले सभी विद्यार्थियों को 7वें सेमेस्टर यानी 4वें वर्ष में प्रवेश मिलेगा। किसी भी विद्यार्थी को केवल कम CGPA के कारण 4वें वर्ष में जाने से नहीं रोका जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:10 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे रोजगार सूचना।

लेखा परीक्षक एवं सहायक 2026 ने कुल 1829 पद निकाले हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 14/7/2026, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 3/8/2026 है। इस पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल रखी गई है, अधिकतम उम्र 40 वर्ष। इस पद की विस्तृत जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। JKSSB 2026 ने कुल 130 पद निकाले हैं। इस पद के आवेदन शुरू होने की तिथि 22/6/2026 थी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21/7/2026 है। इस पद के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष रखी गई है। इसके विस्तृत जानकारी आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाकर देख सकते हैं।

BOI 2026 ने 779 पद निकाले हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 30/6/2026 थी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20/7/2026 है। इस पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष रखी गई है। इस पद की विस्तृत जानकारी आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट bankofindia.bank.in पर जाकर देख सकते हैं। SBI ने कुल 1500 पद निकाले हैं। इस पद के आवेदन शुरू होने की तिथि 18/6/2026 थी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8/7/2026 है। इस पद के लिए उम्मीदवार आवेदक न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल और अधिकतम उम्र सीमा 30 साल रखी गई है। इस पद की विस्तृत

रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन एग्जामिनेशन 2026 ने कुल 6,557 पद निकाले हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 30 जून 2026, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 है। इस पद के लिए आवेदक की न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष रखी गई है। ग्रेड थर्ड के लिए जीआर वन सिंगल के लिए टेक्नीशियंस के लिए 33 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है। इसी के साथ रोजगार सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से रोजगार सूचना। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप कुछ ही क्षणों में सुनेंगे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार। कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
1: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम

0: ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
0: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
0: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है।
2: रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और

0: आने का आग्रह किया।
1: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
2: 6300 हेक्टेयर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग, जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
3: जनजाति समूह का सामूहिक विकास ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा, जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नाशिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: पुणे जिले के घाट क्षेत्र, लोनावला, माहौल, तामिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र, जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है, में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है, हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।

0: उधर गुजरात में भी कई जगहों खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो के घर में दिन के 2:30 हो रहे हैं। पुनः हम आपको ले चलते हैं फिल्मी गीतों के सफर पर। सफर का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म गाइड से। गायक कलाकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार सचिन देव बर्मन।

संगीत निर्देशन कल्याण जैना जी ने किया था। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म खुशबू से। गीत रचना गुलजार ने की है, संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।

रवि के संगीत निर्देशन में गाए इस गीत को अभी आप सुन रहे थे फिल्म हमराज से। गाय कलाकार महेंद्र कपूर, गीतकार साहिर लुधियानवी। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज में फिल्म किस्मत से। गीत रचना SH बिहारी ने की है और संगीत दिया है OP नैयर ने।

हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को भी आप सुन रहे थे फिल्म अंदाज से। गायक कलाकार थे किशोर कुमार। संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन ने किया था। इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का सिलसिला भी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है बज्जी का लोकगीत। कलाकार हैं कृष्ण कुमार श्याम।

विवाह सिन्हा के स्वर में अभी आप सुन रहे थे बज्जी का लोकगीत के अंतर्गत विवाह गीत। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टोडो की घड़ी में दिन के 3:20 हो रहे हैं। यह सभा यहीं समाप्त होती है। पुनः हम उपस्थित होंगे अपने आगामी कार्यक्रमों के साथ संध्या 5:00। तब तक के लिए दीजिए अनुमति।

जी दोस्तों, आपने सुना अभी ये खूबसूरत सगी जंजीर फिल्म से हम बात कर रहे हैं हमारी डांसिंग क्वींस के बारे में, और हमारे साथ जुड़े हमारे कुछ श्रोता जिनके संदेश हम शामिल कर लेते हैं। श्री सुधाकर, राजे जाधव, प्रशांत, संचित वयाल, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वत, सानवी, कल्पना देशमुख हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से। सुदर्शन मुखी जी हमारे साथ जुड़े हुए शांतिनगर सोनीपत से। नीतीश कुमार, तनुजा, ईशांत, लखनलाल दिवांगन, सावित्री बाई हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पहादा पलारी छत्तीसगढ़ से। अगला संदेश हम तक आया है और इसको पहुंचाने वाले हैं डीबी राणा, नेहरू विहार, दिल्ली से। अगला संदेश आया है वीरगांव गुजरात से अजित भावसर, प्रमीला भावसर जी का, और लिखते हैं कि आज के प्रोग्राम में कुकू हेलन जैसी अन्य पुरानी डांसर अभिनेत्रियों पर प्रोग्राम चल रहा है, गाने अच्छे लग रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपरकोट

मोहल्ला चौकटी बुलंदशहर से मोहम्मद सैयद अब्बासी निगत परवीन अब्बासी शहनवास सरफराज फरदीन सुहान अरजान अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजित भावसर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने एक अच्छी लंबी सारी रिसर्च करके लिस्ट भेजी है, हेलेन अरुणा ईरानी बिंदु जयश्रीटी फरियाल कुकू जैसी जो स्पेशल प्रमुख डांसर थी उनके बारे में उन्होंने लिखा। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी खूबसूरत जानकारी के लिए। सुदर्शन मुखी जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं शांतिनगर सोनीपत से और ये थे दोस्तों वो संदेश जिनके जरिए हमारे सभी श्रोता हम तक जुड़े कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज में। हम बात कर रहे हैं डांसिंग क्वींस के बारे में। 60s-70s के दशक में अगर हम बात करें डांसिंग क्वीन के सफ़र की तो हेलेन का विदेशी ग्रेस था, वहीं बिंदु की थी कातिलाना अदाएं। लेकिन इसी दौर में एक ऐसी डांसर कम एक्ट्रेस भी आई जिसके डांस में गजब का देसीपन, कमाल की फुर्ती और एक ऐसी एनर्जी थी जिसे देखकर जो भी दर्शक थे वो अपनी सीटों पर झूमने लगते थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हरफन मोला कलाकार अरुणा ईरानी की। अरुणा ईरानी जिन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू किया लेकिन 70 का दशक आते आते उन्होंने अपने डांस के दम पर एक ऐसी पहचान बनाई कि उस दौर के हर बड़े कलाकार की पहली पसंद बन गई अरुणा ईरानी। तो दोस्तों अरुणा ईरानी की डांसिंग स्किल्स और जो उनकी एक्टिंग स्किल्स थी अगर उनकी बारे में बात करें तो वो लाजवाब थी। जिस भी फिल्म में अगर वो होती थी उनका डांस नंबर होता था तो उस फिल्म का हिट होना अपने आप में एक पैमाना होता था कि ये फिल्म हिट जाएगी। तो दोस्तों अरुणा ईरानी जी के ही एक खूबसूरत से गीत के साथ, एक खूबसूरत से डांसिंग नंबर के साथ अब मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति इस खूबसूरत से कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज की समाप्ति की। छोड़े जाती हूँ आप सभी के लिए खूबसूरत सा गीत कारवां फिल्म से लता जी की आवाज़ में। इसी के साथ अब मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: दिल पर वश नहीं होता है इस मामले में कि लोग कितना भी खुद
1: तो
0: को समझा लें।
1: देखिए जी बिल्कुल, हम कितना भी समझा लें लेकिन हमारी भी नजर जब कार्यक्रम रहता है ना, चलता होता है ममता जी, तो हम ये देखते हैं कि और कितने कमेंट्स आए, और कितने कमेंट्स आए, ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो अच्छे से अच्छे जो कमेंट्स अपने
0: श्रोताओं तक पहुंचाए
1: हम।
0: लेकिन यहाँ पर उद्देश्य अलग है ना, लेकिन जो उद्देश्य गलत होता है अपनी प्रसिद्धि पाने का, वो एक अलग मुद्दा है। अब और बातें करेंगे, फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं।
1: चलिए।

0: विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली और बातें हम कर रहे थे गाने से पहले और इस ब्रेक से पहले कि वायरल होने के जुनून में लोग न जाने क्या क्या करते हैं,
1: कम समय में प्रसिद्धि पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि दुनिया भर में हमारा नाम हो जाए।
0: अब यही बात हमारे एक श्रोता ने भी लिखी है, देखिए इन्होंने लिखा है, आजकल वायरल होने की दौड़ में लोग कभी कभी ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी पहचान कुछ पल की लोकप्रियता नहीं बल्कि अच्छे कर्म और अच्छा चरित्र है। जो चीज कुछ दिनों के लिए वायरल होती है वो समय के साथ भूल भी जाती है, लेकिन इंसान की अच्छाई, संवेदनशीलता और सादगी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहती
1: है। बिल्कुल सही कहा कि मेहनत, सादगी, सच्चाई यही हमेशा आगे तक चलती रहेगी। और एक और संदेश है, ममता जी ये कहते हैं कि आज के सोशल मीडिया के दौर में कई लोगों के लिए वायरल होना ही सफलता का पैमाना ये बन गया है। अधिक लाइक, व्यूज और फॉलोवर्स पाने की चाह में कुछ लोग ऐसे वीडियोज या पोस्ट बना देते हैं जो जोखिम भरे हो सकते हैं। ये जुनून कभी कभी उनकी पढ़ाई, काम, रिश्ते और मानसिक शांति पर भी असर डालते हैं। लोकप्रिय होना बुरा नहीं है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदारी, सच्चाई, अच्छे मूल्यों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है। और यहाँ तक हो गया है, ये एक तरह की ऐसी बीमारी बन गई है कि कई बार लोग बड़ी दुखद खबर पोस्ट करते हैं
1: जी।
0: वहां लोग जाकर हंसी का इमोजी लगा देते हैं भूल से
1: जी,
0: हड़बड़ी में, और ये देखना भी नहीं चाहते कि वो पोस्ट क्या है। कई बार लोग बिना पढ़े बिना जाने लाइक कर देते हैं कि फलाने की पोस्ट है तो यहाँ पे लाइक कर देते हैं। पता चलता है कि उससे आपकी सहमति नहीं, असहमति थी
1: जी।
0: और किसी जो वो बंदा मुसीबत में है तो आप भी मुसीबत में फंस गए क्योंकि आपने उसे लाइक किया था। कई बार सोशल मीडिया पर ये चर्चा भी होती है, कुचर्चा भी होती है, कई विवादास्पद बातें उस पर पोस्ट होती हैं, कई जैसे संगीत के बारे में, साहित्य के बारे में कुछ ऐसी पोस्ट लिखी जाती है जहां आपकी सहमति है ही नहीं, लेकिन आप लाइक करके आगे बढ़ जाते हैं। बाद में पता चलता है कि ये बात तो आपको मुसीबत में डाल
1: देती
0: है,
1: मुसीबत में डाल देते हैं। और कई बार तरह का हम लिख करके हमारे ऊपर ज्यादा ध्यान लोगों का जाएगा, हम पर ज्यादा आकर्षित होंगे लोग, और इस तरीके से हम कुछ अलग सा लिख दें, अलग सा लिखने में वो समझ ही नहीं पाते कि भाषा हम क्या इस्तेमाल कर
0: कुछ
1: रहे।
0: लोग ये भी करते हैं कि जो बात किसी ने कही नहीं उसे अपने नाम पर पोस्ट करते हैं।
1: हाँ, ये बात
0: कि फलाने ने हमें ऐसा

0: हाँ, और इतना बुरा भला कहा, मेरी निंदा की, और हम तो हमेशा कटघरे में खड़े होते हैं जबकि किसी ने कोई चर्चा ही नहीं की है।
1: जी
0: तो ये भी एक तरीका है लाइक कमेंट पाने का, लोग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ सकारात्मक पहलू भी है। जब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था तो जैसे कुछ अगर हम पढ़ने लिखने की बात करें, साहित्य की बात करें, संगीत की बात करें, तो
1: जी
0: किताबें जो छपा करती थी, प्रकाशित होती थी, तो अखबार पत्रिकाएं उसका माध्यम थे जानने के लिए,
1: जी
0: और
1: जी
0: उसके माध्यम से लोग जानते थे और चर्चा होती थी उन किताबों की। लेकिन अब ये आसान हो गया है कि अगर मान लीजिए किसी की चर्चित किताब है और अच्छी उत्कृष्ट किताब है, तो आप जल्दी से सोशल मीडिया के माध्यम से, लाइक कमेंट्स के माध्यम से
1: जी
0: जान
1: जान
0: लेते हैं
1: लेते हैं
0: कि हाँ, ये
1: जी
0: किताब चर्चित है, तो चलो हम भी खरीद लेते हैं, पढ़ लेते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। तो अगर कहीं पे बुराई है तो अच्छाई भी है, तो हमारे लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छी बातों को अपना करके उसमें आगे बढ़ें और जो नकारात्मक पक्ष है उस तक ना पहुंचे, ना ही लोगों को उसके लिए, उस तरफ जाने के लिए प्रेरित करें। एक और संदेश आया, वो हम यहाँ पढ़ना चाहेंगे कि ये कहते हैं वायरल होने का जुनून, जो कि एक वायरस का ही प्रकार है। जैसे वायरल बीमारियां फैलती हैं, उसी तरह सोशल मीडिया रूपी शक्तिशाली ये जो वायरस है, उसके कई लोग शिकार हो रहे हैं। अपनी खास पहचान बनाने के चक्कर में, उस चक्कर में जब बाहर नहीं निकल सकते, तब खुद की गरिमा को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं लोग। इस तरह का इनका एक कहना है।
0: जी बिल्कुल। तो वायरल होने के कुछ नुकसान ज़्यादा हैं और फ़ायदे कम हैं, तो जो फ़ायदे वाला हिस्सा है उसे ग्रहण कर लें,
1: जी
0: नुकसान वाला, जब वायरल होना आपका जुनून बन जाता है, पैशन बन जाता है, वो नुकसानदेह होता है। और
1: बिल्कुल
0: क्योंकि वो जुनून एक बीमारी का रूप ले रही है, और ये हर वर्ग के लोगों में, ऐसा नहीं कि युवा वर्ग को हम कहते रहते हैं कि अगली पीढ़ी एडिक्शन की शिकार है, लेकिन हमने देखा है कि बड़े बुजुर्ग भी उसमें शामिल हैं।
1: जी
0: अभी जो हमारे घरों में दादी नानी और चाची, जिन्हें बिल्कुल मोबाइल का इस्तेमाल नहीं आता था, वो अपने बच्चों से, अपने नाती पोतों से सीख कर बाकायदा अपनी रील पोस्ट करती हैं,
1: जी,
0: और कुछ लोग
1: और
0: अपना
1: कई
0: डांस
1: तो
0: का
1: लोकप्रिय भी हो रहे हैं
0: डांस का
1: जैसे
0: वीडियो
1: जी।
0: ये दिखाते हैं कि हमें देखो, हम इतनी उम्र में डांस करने में सक्षम हैं, और कोई गाना गा के पोस्ट कर रहा है, कोई अपनी कविताएं पढ़ रहा है, कोई कहानी का टुकड़ा, कहानी का हिस्सा पढ़ के पोस्ट कर रहा है, मतलब कोई नई तो रेसिपी बता रहा है, और किचन के टिप्स बता रहा है, योगा के बारे में, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में,
1: बहुत सारे,
0: मतलब मुझे तो लगता है कि दुनिया का कोई हिस्सा बाकी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं बाकी, कोई ऐसा विषय नहीं है जो वायरल नहीं है सोशल मीडिया
1: सोशल
0: पर,
1: मीडिया पर नहीं आया है। और जिनमें जिसको जिसमें हुनर हासिल है ना, वो उसी कला को चाहता है कि अब दुनिया तक पहुंचा, और उनके लिए सबसे आसान तरीका है सोशल मीडिया का इस्तेमाल
0: करना। और इसमें नुकसान क्या है कि कई बार जो नुस्खे बताए जाते हैं कि सुबह सुबह उठ के ये बीज खा लो, ये पानी पी लो, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, फिर कई लोग ये बताते हैं कि फला एक्सरसाइज, उंगली, पांचों उंगलियों को उस पर प्रेशर डालो तो आपके सिर दर्द ठीक हो जाता है, ये करो तो पेट दर्द ठीक हो जाता है, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि कई बार इस गफलत में आपकी बीमारी बहुत बड़ी बड़ा रूप ले लेती
1: जी,
0: है।
1: जी।
0: तो अब हमारी बातें कहीं बहुत बड़ी, बहुत दूर तक न जाए, इससे पहले हम यहाँ पर विराम देते हैं अपनी बात को और सुनवाते हैं अपनी सखियों और सखाओं को ये गाना, बारिश वाला गाना। जहां पर बारिश नहीं हो रही है उनके लिए सुकून देगा ये गाना, इसलिए भी ये गाना।

0: दीपा जी, हर चमकती हुई चीज अनमोल नहीं होती, ये हमारी एक सखी कह रही हैं कि आज सोशल मीडिया पर वायरल होना आसान हो सकता है, लेकिन किसी के दिल में सम्मान की जगह बनाना कहीं ज्यादा बड़ी बात है। इसलिए ऐसा काम कीजिए जिस पर समय भी मुस्कुराए और आने वाली पीढ़ियां भी गर्व करें।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि काम ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से सकारात्मकता हर तरफ फैले, है ना?
0: कुछ लोग लिख रहे हैं कि लोग वायरल होने के लिए अश्लील वीडियो भी डालते हैं, ये भी गलत है, बहुत गलत है। और अब देखिए ना, एक और मुद्दा है, वो है मोल भाव करने का। कुछ लोगों की आदत होती है कि किसी भी दुकान में गए तो मोल भाव जरूर करते हैं, जैसे कि कुछ फिक्स रेट की दुकानें हैं, कुछ ब्रांडेड चीजें जहां पर मिलती हैं, जहां पर एक पैसा भी नहीं
1: कम किया जाता है
0: कि 99 रुपए है तो वो 1 रुपए भी आपको अदा करना पड़ता है, लेकिन वहां भी लोग मोल भाव करते हैं। अरे 1 रुपए भी नहीं कम हो सकता है क्या, अरे 20 रुपए तो कम कर दो। तो ये कुछ लोगों की आदत सी बन जाती है, जहां पर ये भावना नहीं होती कि इससे बचत हो जाएगी, वो आदतन मोल भाव करते हैं।
1: उन्हें पता भी नहीं होता है ममता जी, उन्हें लगता है कि नहीं, अगर हमने ये 10 रुपए या 20 रुपए कम नहीं कराए तो ये तो मेरे कुछ खिलाफ सी बात हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? मान लीजिए कि कोई 50 रुपए में चीज है और अगर मैं 30 में नहीं करके लेकर आई तो कहीं कुछ ऐसा लगता है कि मैंने तो कहीं कुछ कमी कर दी। ऐसे कैसे हो सकता है कि भाव मैंने नहीं किया, ऐसा हो जाता है।
0: और बहुत देर तक वो सोचती रहती है कि हम तो ठग गए, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मनोवैज्ञानिक रूप से मोल भाव करने से खरीदार को ये एहसास होता है कि उसे बेवकूफ नहीं बनाया गया है और उसने एक समझदारी भरा फैसला किया है। मोल भाव करना शुरुआत में एक आदत के रूप में शुरू होता है, लेकिन जब आप इसमें माहिर हो जाते हैं तो ये एक कला बन जाती है। ये केवल पैसे बचाने का जरिया नहीं, बल्कि ये मानव स्वभाव और संवाद का एक सुंदर हिस्सा है। मोल भाव करना दोनों पक्षों के बीच एक मानसिक कसरत भी है, ये समझने की कला है कि सामने वाले की सीमा क्या है। कई बार लोग जहां पर मोलभाव नहीं करना चाहिए वहां भी करते हैं, जैसे सब्जी वाले, सब्जी वालों से अगर उसने कहा कि ये 50 रुपए में आधा किलो या 1 किलो हम सब्जी दे रहे हैं जो भी है, तो वो जरूर कहेंगे कि अच्छा 50 रुपए में आधा किलो तो ठीक है, हम 1 किलो लेते हैं, कितने पैसे कम करोगे। तो सब्जी वाले भी आनंद लेते हुए कहते हैं अच्छा ठीक है ले लो, 5 रुपए कम दे देना। तो सब्जी वालों से आप मोलभाव क्यों कर रहे हैं? वो सड़क पर सब्जी बेच रहे हैं, उनको बेच के घर जाना है। मुझे लगता है कि उनसे कम से कम मोलभाव नहीं करना चाहिए।
1: लेकिन सबसे ज्यादा देखने में आता है सब्जी वालों से होते ही है,
0: बिल्कुल
1: ये भाव ताव तो चलता ही। अगर उसने वो गठरी बना के रखी है, मान लीजिए कि वो कह रहे हैं कि ये 15 रुपए की है गठरी, तो वो बोलेंगे नहीं 10 रुपए में दो या 15 की दो गठरी दो। इस तरह की बातें तो अक्सर देखने को मिलती हैं। और एक संदेश ये कह रहा है कि मोल भाव करना आदत है या कला। मोल भाव करना, वैसे इसको करने में कोई बुराई तो नहीं है, मोल भाव करना ही पड़ता है, पर कुछ सामान इस तरह के होते हैं कि उनके मोल भाव करने ही नहीं पड़ते हैं। उनकी हर जगह की रेट फिक्स होती है, पर कुछ वस्तुएं इस तरह की होती हैं कि उनके मूल्य कहीं भी कम या ज़्यादा नहीं होते, इसलिए मोल भाव करना अच्छा रहता है। मैं कभी कभी सब्जी घर के लिए खरीद कर लाता हूँ, 2-3 दुकानों पर भाव पूछने से ही पता चल जाता है, ज्यादा दुकानों पर मोल भाव करने की मैं आदत नहीं रखता हूँ।
0: हमारी एक सखी ने लिखा है कि मोल भाव करना मेरी तो आदत है, मैं चाहती हूँ कि ये छूट जाए पर जाती ही नहीं। जब भी मार्केट जाती हूँ घर से सोच कर निकलती हूँ कि आज वो भाव मिलेगा उसी में शॉपिंग करूंगी, पर वहां जाते ही आदत जोर मारना शुरू कर देता है। भाई ये बड़ी ईमानदारी से इन्होंने अपनी बात लिखी है, और हम चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता ऐसी ईमानदारी से बेबाकी से अपनी बात रखें।
1: जी, एक गीत सुन लेते हैं ममता जी, करें।

0: अब दीपा जी, हमारे श्रोता तो मूल भाव पर तुल गए हैं, मूल भाव पे लगे हुए, मतलब मूल
1: भाव पे
0: भाव
1: लगे
0: किए
1: हुए
0: जा
1: हैं, बिल्कुल।
0: रहे हैं। अब एक श्रोता
1: और
0: ने लिखा है कि हम महिलाएं मूल भाव करने के लिए बदनाम होती हैं, मूल भाव करने की आदत भी होती है। सब्जी वाले से जब तक धनिया और हरी मिर्च फ्री में न डलवा लें तब तक चैन नहीं पड़ता है। और भी शॉपिंग में बहुत सारे मूल भाव करती हैं, सच में पता नहीं क्या मिलता है उन्हें कि थोड़ी मिर्ची और डाल दो ना,
1: हाँ,
0: अच्छा
1: ये बात
0: करी
1: तो है,
0: पत्ता भी
1: डाल दो,
0: वो फ्री में लेने में क्या मिलता है ये आज तक मुझे भी नहीं समझ में आया। मैंने भी देखा है बहुत सारी महिलाओं को। और एक श्रोता ने लिखा है कि मोल भाव करना आदत या कला, भाव करना कोई बुराई तो नहीं है, मोल भाव करना भी पड़ता है, पर कुछ सामान तो इस तरह के होते हैं कि उनके मोल भाव करने ही नहीं पड़ते, उनकी हर जगह एक ही रेट होती है, पर कुछ वस्तुएं इस तरह की होती हैं कि उनके मूल्य कहीं कम कहीं ज्यादा होते हैं, इसलिए मोल भाव करना अच्छा रहता है। मैं कभी कभी सब्जी घर के लिए खरीदता हूँ तो 2 या 3 दुकानों पर भाव पूछने से पता चल जाता है, ज्यादा दुकानों पर मोल भाव करने की आदत नहीं रखता हूँ। एक श्रोता ने लिखा है कि बदनाम महिलाएं हैं मोल भाव करने के लिए, लेकिन पुरुष भी कम नहीं है मोल
1: बिल्कुल,
0: भाव के लिए।
1: ये बात तो सही है, आपने बिल्कुल सही कहा।
0: और आप
1: पर
0: जरा बताइए कि ये क्या कर रही हैं, डेढ़ डेढ़ चावल की खिचड़ी पका रही हैं,
1: बिल्कुल आज 1.5 चावल की खिचड़ी पक रही
0: कैसे?
1: है। देखिए, जहां पे कहीं पे कुछ एक ग्रुप बैठा हुआ है, बातें कर रहा है, और किसी एक बात पर सब लोग ने हाँ कर दी, और अचानक से कोई एक उसमें से कहता है नहीं, ये इस तरीके से नहीं होगा, कुछ अलग तरीके से होगा। तो जहां जब कोई राय अपनी अलग देने लग जाता है या कुछ अलग थलग बात करता है या अपनी कहते ना एक टांग ऊपर रखना चाहता है, तो इस तरह की बात को बहुत सारे हमारे
0: मुर्गे की एक टांग, ये
1: हाँ,
0: भी एक मुहावरा है।
1: ये भी एक।
0: अब एक श्रोता ने लिखा है कि आज पता चला कि 1.5 चावल की खिचड़ी पकती है, हमने तो बीरबल की खिचड़ी के बारे में सुना था।
1: बिल्कुल, ये भी होती है, जहाँ अपना राग अलापना है या अपनी मनमानी करना, ये भी इस मुहावरे का अर्थ होता है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने संदेश लिख के भेजा है। अच्छा, एक और संदेश आया कि खिचड़ी एक ऐसा व्यंजन है जो कई लोगों के साथ मिलकर बांटकर खाने या पकाने की परंपरा से जुड़ा है। ऐसे में 1.5 चावल की खिचड़ी का अर्थ बहुत ही कम मात्रा में भोजन या एक छोटे समूह से है। जब कोई व्यक्ति समूह में शामिल न होकर खुद को अलग थलग कर देता है, तब इस मुहावरे द्वारा उस व्यक्ति को अंकित करते हैं कि भाई ये देखो, ये आ गया 1.5 चावल की खिचड़ी वाला।
0: अब हमारी एक सखी है जिन्होंने अलग ही खिचड़ी पकाई है। अब सारे श्रोता तो ये कह रहे हैं कि 1.5 चावल की खिचड़ी, मतलब कि सबकी अलग अलग राय रखना और अपनी अपनी राय ऊपर रखना, मतलब ये। अब हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि 1.5 चावल की खिचड़ी का मतलब कि किसी बात को एक ने दूसरे के कान में कहा, दूसरे ने तीसरे के और तीसरे ने चौथे के, हर एक ने एक दूसरे को कहा ये बात सिर्फ मैं तुमसे बता रही हूँ, तुम किसी से न कहना, मगर जब वो बात एक कान से होते हुए चौथे कान तक जाती है तो बात न होकर कुछ और ही हो जाता है, सीधा मतलब बात का बतंगड़ बन जाता है, कहा तो छोटे से शब्द में या अर्थ में, मगर जिसने सुना उसने दूसरा ही अर्थ लगाया और जिसको कहकर अपनी बात परोसी वो दूसरे ही अर्थ में कह दी, तो बात तो थी छोटी सी लेकिन एक से दूसरे तक जाते अर्थ का अनर्थ हो गया, या फिर कह सकते हैं कि बातों की ऐसी जुगाली हुई कि 1.5 चावल की खिचड़ी बन गई। दरअसल मुहावरे का ये अर्थ भी सही है। कई बार हम ये भी कहते हैं, जब हम छोटे थे तो जब माँ और दादी सुनाती थी नानी की इस तरह के मुहावरे, तो वहां पे अर्थ भी बताती थी, तो उसका यही अर्थ होता है कि क्या 1.5 चावल की खिचड़ी पका रही हो, तो मतलब ये कि बातें जब उलट पलट हो जाती हैं और उसका एक अपना अपनी मतलब अपना मंतव्य हो जाता है, अपनी राय हो जाती
1: जी,
0: है, तो अर्थ बदल जाता
1: अर्थ
0: है,
1: अर्थ बदल जाता है। और देखिए, यहाँ पर एक और खिचड़ी पकड़ी है, ये संदेश आया है कि हमेशा मिलजुल कर काम करना सफलता की कुंजी है, लेकिन कुछ लोग हर बात में 1.5 चावल की खिचड़ी पकाते हैं, वे दूसरों की राय को महत्व नहीं देते हैं और अपनी ही मनमानी करते हैं, ऐसे व्यवहार से टीम में मतभेद पैदा हो जाते हैं और काम भी प्रभावित होता है, इसलिए हमें अपनी बात अवश्य रखनी चाहिए लेकिन सबकी राय का सम्मान करते हुए मिलकर निर्णय लेना चाहिए, यही समझदारी है और अच्छे व्यक्तित्व की पहचान भी है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि पता है हमें एक पुरानी बात याद आ गई, तब कुछ लेना होता था तो कुछ सहेलियों या घर की मौसी या चाची साथ होती थी, पर हम एक दूसरे का मुंह देखते थे कि पहले कितना कम करवाएंगे मोल भाव के लिए, इन्होंने लिखा है
1: जी।
0: और फिर इशारे में बात करके बोलते थे, फिर खुश हो जाते थे कि इतना कम करवाया हो गया, फिर बोल के चले जाते थे कि इतने में दो, फिर मुड़ के देखते, दो नहीं तो हम नहीं लेंगे, फिर मुड़ मुड़ के देखते थे वो

0: आ तो नहीं रहा, जाओ जाओ, पर अब नहीं करते सब्जी वालों से तो बिल्कुल भी नहीं, फिर फिक्स रेट की शॉप पर भी जाना पसंद करते हैं। ये अक्सर जब पहले दुपट्टे का फैशन था बहुत सारा, तरह तरह के डिजाइनदार दुपट्टे हुआ करते थे, तो मैंने भी कई बार लड़कियों को देखा है कि दुपट्टे खरीद रही हैं और दुकानदार से कह रही हैं कि ठीक है इतने में दो, नहीं तो जा रहे हैं, और जा रहे हैं पूरी की पूरी झुंड में है लड़कियाँ और मुड़ मुड़ के देख रही हैं, फिर वो बुला रहा है आइए भाभी जी आइए ले लीजिए लड़कियाँ औरतें, फिर वापस लौट के आ रहे हैं, फिर 10 रुपए दे दिया एक्स्ट्रा। तो ऐसे
1: ऐसे शहर, कई शहरों में ऐसे कुछ जगह होते हैं ममता जी, जहाँ पर कि आपको भेजते हैं ना, या हम जाते हैं जैसे कोई बड़े शहर में घूमने गए तो हम किसी जो पहले ही जाकर आ चुका है हम पूछते हैं कि कहाँ पर बार्गेनिंग होगी और कितनी होगी ये भी बता देना, तो वहां के रहने वाले जो लोग हैं वो बताते हैं देखो वो अगर तुम्हें 200 रुपए बोले ना तो तुम 40 या 50 रुपए से शुरू करना, इतनी बार्गेनिंग होती है
0: तो 100 रुपए में मिल जाएगा। आज तो हम सब की हम आप भी खिचड़ी पका रहे हैं, कभी मोल भाव कर रहे हैं तो कहीं खिचड़ी पका रहे हैं। अब कहीं हमारी एक श्रोता ने लिखा है कारी कारे बादरा, सचमुच अब तो चला जाए तो अच्छा, सूरत गुजरात में कल से बहुत तेज तूफानी बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है, दरअसल मुंबई में भी बहुत भारी बरसात हो रही है, शहर के देश के तमाम हिस्सों में बारिश हो रही है, लेकिन जहां पर बरसात नहीं हो रही है वहां के लिए क्या है, वो गर्मी से जहां परेशान हाल है तो उनके लिए गाना ही सुकून देगा, तो सुन लेते हैं ये गाना।

0: इस गाने के साथ हम यही शुभकामना कर रहे हैं कि पूरे देश में बरखा दुल्हनियाँ आएं और इतनी संतुलित बारिश लेकर आएं कि किसी को कोई परेशानी ना हो। और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाज़त। आप सभी को ममता सिंह
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता विपुल देशपांडे से। इनसे बातचीत की है जयंत पात्रीकर ने और ये है इस बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के स्टूडियो में ऐसे कलाकार पधारे हैं जो आपके घर में भी आपसे मिल चुके हैं, आप सिनेमा हॉल में जाएं तो वहां भी आपसे मिल चुके हैं, और आपने अपने लैपटॉप के पर्दे पर या टीवी के पर्दे पर जब कभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप गए होंगे तो वहां भी आपकी इनसे मुलाकात हुई होगी। जी हाँ, एक ऐसा अभिनेता जो सेल्यूलॉइड का कोई भी जरिया हो, कोई भी मीडियम हो, वहां अपना नाम रखते हैं और अपनी जगह उन्होंने बनाई है। आइए स्वागत करते हैं विपुल देशपांडे का। विपुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। नमस्कार सभी श्रोताओं को भी।
1: विपुल जी, कहाँ से शुरू करें, शुरू से बात करते हैं, कैसे शुरुआत हुई, आप कहाँ के रहने वाले हैं, पैदाइश कहाँ की है और बचपन कहाँ बीता आपका?
2: वैसे मेरे पेरेंट्स मुंबई में ही रहते थे, मेरी पैदाइश आप कह सकते हैं कि मुंबई में ही हुई।
1: अच्छा।
2: लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड तक मेरी पढ़ाई के बाद में हम लोग शिफ्ट हो गए मुंबई से नागपुर।
1: अच्छा।
2: तो नागपुर ये मेरा वैसे विदर्भ में हम लोग का घर है
1: जी।
2: वहीं पे सब रिलेटिव्स हैं और एंसेस्ट्रल अगर बोला जाए तो अमरावती के पास अकोलखेड़ नाम की एक जगह है जहां से हम बिलोंग करते हैं
1: जी। जी।
2: बट अभी हाल ही में सभी लोग जॉब के सिलसिले में सब बाहर आए और पिताजी बैंक में थे और मेरी माँ जो है वो लेक्चरर थी, तो उन लोगों ने फिर नागपुर में अपना जो है परमानेंट एड्रेस बनाया और मेरा स्कूलिंग नागपुर में ही हुआ।
1: अच्छा।
2: मैं पिताजी का पहले से हॉबी था कि वो स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स में इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग ये सभी जरिए में अपना एक पैशन कायम रखा
1: जी।
2: और मुंबई में ये सब करने के लिए बैंक में जॉब करते हुए पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने नागपुर चुना।
1: अच्छा।
2: हालांकि एग्जैक्टली उल्टा मैंने किया कि मुझे मुंबई चुनना पड़ा वापस तो मैं वहां से वापस आया, बट वहां से आते आते बहुत समय लग गया। तो हालांकि मैं चाहता जरूर था कि मैं पढ़ाई करूं एनएसडी में या फिर ड्रामेटिक्स पढ़ूं या एफटीआई में जाऊं
1: जी,
2: बट एक्सपोजर कम होता है मुंबई के मुकाबले इस क्षेत्र के लिए स्पेशली। इसे हम लोग करियर नहीं मानते, मतलब एक्टिंग ये हॉबी करके देखी जाती है। मैं जिस शहर से आता हूं वहां पे, तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा क्रांतिकारी रवैया अपनाया था कि नहीं मुझे यही करना है। लेकिन पेरेंट्स ने कहा कि नहीं बेटा ऐसा है, पहले पढ़ाई भी कर लो ताकि बड़ी अनसर्टन फील्ड है, आप नॉलेजेबल रहोगे तो आप कुछ कर पाओगे बाद में अगर ऐसा कुछ समय आया तो, बहुत अच्छी बात थी। तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग के लिए सपोर्ट किया, देन मैंने एमबीए किया। फिर जॉब करते करते ऐसा हो गया कि वो एक होता है ना 99 का पढ़ा बोलते हैं, आदमी फंस जाता है, तो उसमें फंस सा गया था।
1: अच्छा।
2: बट देन फिर मैंने कहा कि नहीं यार करना तो पड़ेगा, तो फिर शुरू में नागपुर में जो भी थिएटर कर पाए हम वो मैंने किया
1: जी।
2: वहां पे कुछ महानाट्य थे, कुछ नॉर्मल नाटक थे, वो मैंने किए। लेकिन हालांकि मुंबई आना ही एक रास्ता था, तो मैं एक बार आके गया।
1: अच्छा।
2: मैं 2000 में मुंबई आया था, तो आज से 26 साल पहले की बात है
1: जी।
2: तब मैं 20 साल का था, लेकिन तब कुछ मुझे समझ नहीं आया क्योंकि कोई चीज का एक्सपोजर नहीं था, कुछ चीज के बारे में मालूमात नहीं।

0: तो मुझे एक महीने बाद वापस जाना पड़ा। मैंने सोचा कि यार यहाँ पे बिना किसी नॉलेज के कुछ करना पॉसिबल नहीं। देन आई वेंट बैक, आई कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग, आई कंप्लीटेड माय एमबीए।
1: अच्छा,
0: उसी के साथ कैंपस प्लेसमेंट हुआ। मैंने गोवा में एक साल जॉब किया, फिर मैं कैसे तो भी करके मतलब मिन्नतें करके मैंने कंपनी से बात की कि मुझे मुंबई जाना है। मालूम था कि मुंबई में ही करना पड़ेगा जो करना है, तो वो हुआ नहीं। वीडियोकॉन से ट्रांसफर नहीं मिली, सो आई टुक अ स्विच। मैं यहाँ पे हाइपरसिटी में जॉब करने आया।
1: अच्छा,
0: सो दो ढाई साल लग गए, उसके बाद में फिर कहीं जाके एक जगह मैंने ऑडिशन।
1: पहली बार आए तो एक नौकरी के लिए आए?
0: नौकरी के लिए।
1: अच्छा,
0: मुंबई में मैंने 2007 से लेकर 2009 तक नौकरी की। 2009 से मैंने स्विच किया, रिसेशन हिट हुआ था उस दौरान, नौकरियां सभी की थोड़ी सी डामाडोल में थी।
1: जी जी।
0: तो फिर 2000 मैंने स्विच किया बिरला में, बिरला एजुटेक में मैं काम कर रहा था, दो साल ऑलमोस्ट वहां पे काम किया। और उसी दौरान मैंने एक ऑडिशन के बारे में पता किया, जो कि फोर इडियट्स नाम की एक फिल्म थी, जो पता चला।
1: जी, ये मुंबई की जो आपकी अभिनय की यात्रा है और उसकी अब यहाँ शुरुआत होने जा रही है, उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि नागपुर में जो आपने थिएटर किया तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, किस तरह के नाटक वो हुआ करते थे जिनमें आपने अभिनय किया?
0: एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है एक कलाकार के लिए जब वो स्टेज पे जाता है या स्टेज से जुड़ी कोई भी हरकत करता है। लेकिन सीखने के लिए बहुत ही लिमिटेड वहां पे स्कोप था
1: जी,
0: क्योंकि वहां पे जितने भी लोग थे या तो यहाँ पे आके वापस जा चुके थे कि उनका यहाँ पे शायद ना हो पाया हो, या फिर वहां से आए ही नहीं है और वहीं पे एक अपनी दुनिया बसा ली है। एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी करने की बात जहां पे होती है। तो नाटक नो डाउट बहुत अच्छे थे।
1: एक उम्र होती है जब हमें एहसास होता है कि भाई हाँ, हम अभिनय की दुनिया में कुछ कर सकते हैं
0: जी।
1: और एक वो समय होता है कि जब हमें हमारे घर से प्रोत्साहन मिलता है या हमारे किसी शिक्षक ने हमें कहा कि चलो तुम तो बड़ा अच्छा कर सकते हो, तो वो हमें स्टेज पर धक्का दे देते हैं एक तरह से। तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ?
0: अभिनय मैं कुछ कर सकता हूँ, ये मेरी जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं एक्टर ही बनना चाहता हूँ।
1: क्या बात है, क्या बात।
0: आई नेवर इमेजिनड एनी अदर प्रोफेशन।
1: वाह वाह वाह।
0: बट जरिया नहीं मिल रहा था तो नाटक हम करते रहते थे। फिफ्थ स्टैंडर्ड से नाटक हर साल मेरे स्कूल में करता था। जो स्नेह सम्मेलन गैदरिंग होता है उसमें हर साल करता था, जहां जहां पॉसिबल हो वहां पे करता था। और जैसे कहा आपने कि लोग सराहना करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो वही है कि आप एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक होता है कि हाँ भी लोग जब बोल रहे हैं समझ जाते हैं आपके, आप कर सकते हैं अच्छा। तो ये फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया
1: जी,
0: बिकॉज यू हैव परफॉर्म्ड वेल, पीपल हैव अप्रिशिएटेड, उन्होंने वो सराहना की और फिर आगे बढ़ती गई।
1: और फिर मुंबई आके अपने आप को आजमाना, ये जो मन की एक इच्छा है, बाकी सारे काम करते हुए, नौकरी करते हुए या पढ़ते हुए भी हम जो है वो इच्छा मन में कुलबुलाते रहती है
0: बहुत ज्यादा।
1: ये कितने दिनों तक चला?
0: ये सर बहुत चला। ये बेसिकली अगर बात करें तो 2006 में मेरा MBA जब मेरा पास आउट हो गया
1: जी, जी।
0: मैं पहली बार जॉब करने गया तो मैंने मेरे बॉस को कहा कि मुझे सर मुंबई में आप प्लेसमेंट दे दो।
1: अच्छा,
0: तो मैं चाहता था कि जॉब करते हुए मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे लेकिन उस दौरान मुंबई में था नहीं, तो वो मेरा 1.5 साल जो है औरंगाबाद 6 महीने और फिर 9 से 10 महीने गोवा में, ऐसा मेरा बीता। और रोज रात को इसलिए क्योंकि दिन भर काम आपका समय कट जाता है, फिर जो आपको समय मिलता है शाम को 7-8 बजे, देन यू फील कि मैंने आज जो दिन भर किया क्या वो मुझे जो पसंद था वो किया,
1: अच्छा,
0: या फिर बस करना है इसलिए किया, सर्वाइव करने के लिए किया। तो वही एक बड़ी मशक्कत और बड़ा ही एक द्वंद होता था
1: जी, जी।
0: कि यार ये नहीं करना चाहता हूँ, ये खुशी नहीं मिल रही है लेकिन करना पड़ रहा है। तो कुछ तो भी करके भगवान की दया से मुझे वो स्विच करना पॉसिबल हुआ और फिर मुंबई आया।
1: तो ये मुंबई का जो सफर है हम उसकी बात करेंगे, मगर हमारे बातों के बीच में आपकी पसंद के गाने भी हम सुनेंगे, तो कौन सा गाना होगा सबसे पहला जो आपको पसंद है?
0: मैं जिंदगी को जिस नजरिए से देखता हूँ उस नजरिए से अगर बात करें तो जिंदगी को एक लाइट ली और एक हंसते खेलते जितना पॉसिबल हो बिताना चाहिए, किसी को तकलीफ न देते हुए शायद वो ज्यादा जरूरी है। तो बच्चन साहब का एक गाना है, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल,
1: वाह,
0: इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया,
0: ये एक बहुत खूबसूरत सा गाना है,
1: आइए सुनते हैं।
2: जिंदगी

0: जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, और ये जिंदगी जो अभिनय यात्रा के रूप में आपकी मुंबई में शुरू हुई, तो वो कैसी शुरुआत थी?
1: सर, मैं जब नागपुर में था 2 साल के
0: हाँ
1: लिए,
0: हाँ
1: मैंने जॉब छोड़ के मैं नागपुर में 2 साल के लिए मैंने एक पॉज लिया था कि एक नौकरी की आदत होती है, 1 तारीख को सैलरी आती है,
0: हाँ
1: वो तो वो तोड़नी थी मुझे आदत,
0: हाँ
1: क्योंकि यहाँ पे आके कोई गारंटी नहीं थी कि रोज काम मिले। तो मैंने वहाँ पे एक बिजनेस हमारा था, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो मेरी माँ के अंडर बड़ा हुआ था पूरे अच्छे
0: जी
1: से।
0: जी
1: तो क्योंकि मम्मी लेक्चरर थी और रिटायरमेंट के बाद में शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ दिस, तो फिर वो हमने थोड़ा सा एक्सपांड किया, 25 सेंटर्स हमने उसके बनाए नागपुर में। और फिर मैं यहाँ पे आने की मेरी जो एक बात हुई, तो मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, मैंने सोचा कि जाती काम कैसे मिलेगा।
0: अच्छा
1: तो आई नेवर हैड अ मुस्टैश इन माई लाइफ। यहाँ पे मैंने देखा कि क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, पुलिस फाइल्स, ऐसे कुछ क्राइम शोज आ रहे थे उस दौरान जो कि बहुत हिट होते थे, और हमेशा नए एक्टर्स उसमें दिखाई पड़ते थे और रिपीट भी होते थे कुछ।
0: जी
1: तो मैंने सोचा कि यार ये एक सही है, इन लोगों को नए नए बंदे लगते होंगे, तो यहाँ पे जाते हैं। और फिर मैंने सोचा कि मेरी हाइट है 6 फिट 2 इंच, भगवान ने दी हुई, तो उसका फायदा कॉप के रोल में किया जा सकता है, तो एटलीस्ट कॉप रिपीट भी ज्यादा होते हैं। सेम
0: हाँ
1: थिंग हैपेंड, बट इट टुक ऑलमोस्ट 7 to 8 months
0: अच्छा
1: टू लैंड इन अ पर्टिकुलर रोल। वो रोल ऐसे आसानी से नहीं मिल पाया, उसके लिए लाइन में लग के इंट्रोडक्शन देना पड़ा बहुत बार, कभी
0: जी
1: लाइन में लगने के बाद नंबर भी नहीं आता था।
0: हाँ
1: तो वो सब करते करते, बट मैंने मूंछ बढ़ाई और मैं थोड़ा
0: अच्छा
1: फिजिक उस हिसाब से किया कि मैं एक ऑथोरिटेटिव कैरेक्टर में जा सकूं,
0: जी जी
1: और वही हुआ कि फिर उसके बाद क्राइम पेट्रोल, साउथर्न इंडिया, इसमें मैं रेगुलर तौर पे पुलिस ऑफिसर के दौर में दिखने लगा।
0: अच्छा
1: तो एटलीस्ट मुझे पहले से कोई सीखने वाला, मैं ना कहीं जा पाया सीखने के लिए और कुछ कर पाया, बट कैमरा मुझे सीखने को वहां से मिला।
0: अच्छा
1: मैंने बहुत करीब से इन सब चीजों को ऑब्जर्व किया
0: जी
1: और बहुत अच्छे एपिसोड्स हुआ करते थे क्राइम पेट्रोल के। पहले सुब्बू सर उनको ऑप्टिमिस्टिक के थ्रू डायरेक्ट करते थे या देखते थे,
0: जी
1: तो ये उन्होंने बहुत अच्छा किया, तो वो मुझे समझने काफी मिला। आजकल सटल एक्टिंग ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं,
0: जी जी
1: जिसको एक नैसर्गिक तरीके से हम लोग, जैसे आप और मैं अभी बात कर रहे हैं,
0: सहज और स्वाभाविक
1: सहज और स्वाभाविक
0: अभिनय।

0: अभिनय जिसको कहते हैं, तो वो मुझे वहां से ज्यादा अच्छे से सीखने को मिला। ऐसा लगता नहीं था कि अभिनय किया जा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अभिनय ना करो, आपको करना पड़ता है कि वैसे लगे ना कि वो अभिनय हो रहा है, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये मुझे वहां से सीखने को मिला और ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, वो कंटिन्यू रही। तो दैट वॉज माई स्टार्ट इन द मुंबई।
1: क्या बात है। और उन शुरुआती दिनों में आप मराठी में भी कुछ देख रहे थे कि कुछ करने को मिले ऐसा?
0: मैं सभी चीजों के लिए ओपन था, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो। इंग्लिश तो खैर अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स नहीं होते, मराठी मेरी मदर टंग है।
1: जी जी,
0: मी मराठी है। बट यही था कि जब आया तो मुझे सामने यही चीजें मिली हिंदी लैंग्वेज की, तो मैं हिंदी में फिर काम करता रहा। मराठी में मैंने एक दो बार ट्राई किया जहां जहां मुझे लगा, जैसे मैंने आने के बाद में वो फोर इडियट्स जो फिल्म की थी उसके बेसिस पे, जस्ट गम्मत नाम की एक फिल्म की, लेकिन एक बड़ा ही छोटा सा किरदार मैंने निभाया जो कि शायद ही किसी को ध्यान में रहा हो
1: जी।
0: और बाकी जगह शायद ये लॉबी, लॉबी तो हर जगह है, ऐसा नहीं कि कोई गलत बात है। लॉबी मतलब एक ग्रुप जो साथ में मिलकर काम करता है।
1: हाँ।
0: अब वो एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल हो जाता है, इसलिए वो साथ में काम करता है
1: जी।
0: तो ये थोड़ी स्ट्रांग लगी मुझे रीजनल के दायरे में, तो वहां पे मेरी एंट्री ज्यादा नहीं हो पाई। आज भी शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं मराठी अभिनेता हूँ, मैं मराठी कर सकता हूँ। बट आई वुड लव टू एक्सपांड माय थिंग। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे कुछ अच्छे किरदार मिले जो मराठी में भी नहीं हो पाऊँ। बट हिंदी में हमेशा मुझे साथ सबका मिला और हिंदी में मैं अब तक काम करते आ रहा हूँ रेगुलर।
1: चलिए यहाँ पे एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का, कौन सा गाना होगा?
0: एक मैं कंपेनियनशिप, एक सपोर्टिव एटमॉस्फेयर पे बहुत बिलीव करता हूँ
1: जी।
0: वो कितना पॉसिबल होता है सबकी लाइफ में ये अपने अपने नसीब की बात है, लेकिन जब कोई बात बिगड़ जाए, ये एक मेरा बहुत फेवरेट गाना है।
1: बहुत खूबसूरत गीत है, आइए सुनते हैं। जब

0: जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। ये मुश्किल पड़ने वाली बात संघर्ष के दिनों में तो कदम कदम पे जो है इसका सामना होता है
1: जी,
0: है ना
1: जी।
0: कैसे मुश्किलों का सामना होता था उन दिनों में, क्योंकि एक तरफ आप काम तो कर रहे थे मगर एक ही तरह की वो टेलीविजन सीरीज थी जिसमें पुलिस की ही भूमिकाएं ज्यादा होती थी और उसमें टाइपकास्ट होने का बड़ा डर था
1: जी।
0: कैसा था वो संघर्ष?
1: ये फील्ड ही ऐसी,
0: किसी फिल्म का इंतजार कर रहे थे तब कि कोई फिल्म मिल जाए।
1: हाँ।
0: तो वो वाकया जो है
1: जी,
0: पहली
1: जी।
0: फिल्म कैसे मिली?
1: ये बेसिकली संघर्ष जो है, जैसे मैंने कहा था कि अब बोलने जा रहा था कि बच्चा साहब के जमाने मैंने सुना हुआ था कि संघर्ष तो जिंदगी भर रहेगा, अगर संघर्ष नहीं चाहिए तो डाय कोई संघर्ष नहीं रहेगा। तो जब तक हम इस जिंदगी में है, इस दुनिया में, तब तक संघर्ष रहेगा। उसको हम कितनी खूबसूरती से अपने मार्ग को क्रमण करते हैं उस पर डिपेंड है। तो संघर्ष हमेशा रहा और शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा रहा। कभी कभी ऐसा हुआ कि 3-3 महीने मेरे पास काम नहीं था। तो एक एक्टर के लिए जब 3 महीने काम नहीं है तो आप 3 महीने कुछ नहीं कमा रहे हो। वो एक बहुत बड़ी सिचुएशन थी, लेकिन ऊपर वाले की दया है कि बीच बीच में फिर उसके बाद कुछ ना कुछ काम आता गया और सस्टेन करता रहा, हैंड टू माउथ।
0: अच्छा।
1: वो चीजें चलती रही। और टाइपकास्ट आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि फिर उस दौरान लोगों को ऐसा होता है कि वो आपके डेटाबेस में ही फीड करके रखते हैं कि इंस्पेक्टर में ये 10 लोग हैं। पहला फोन जाएगा तो आपको इंस्पेक्टर के लिए आएगा। अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए ये 20 लोग हैं
0: जी।
1: तो ये चलता रहा काफी दिन। फिर हमें नहीं बोलना पड़ा, बहुत बार मुझे नहीं बोलना पड़ा कि मैं नहीं करूंगा। और वो बहुत बड़ी बात होती थी कि

0: आपको मालूम है आपको काम मिल रहा है, उसी से आपका घर चलने वाला है,
1: लेकिन मना करना,
0: लेकिन मना करना पड़ रहा है क्योंकि यार उसके अलावा कुछ दे ही नहीं रहे हैं। एक अभिनेता के तौर पे अगर मैं वेरिएशन ना दे पाऊं तो कुछ खास मजा नहीं आता है जिंदगी में। तो वो नहीं करते करते कभी हाँ कभी नहीं, जब जरूरत है उस हिसाब से हमने काम किया। फिर कहीं ना कहीं लैंड हुए, हमने ये भी सोचा था कि कोई फिल्म जो है वो एटलीस्ट अच्छे इसमें मिल जाए
1: जी।
0: तो इट हैपेंड। और ये जैसे मैं वर्क ग्रेनरी पे मतलब बिलीव करता हूँ।
1: अच्छा।
0: वर्क ग्रेनरी मतलब जैसे धान्य का कोठार होता है
1: जी, अनाज का,
0: अनाज का कोठार होता है, उसमें एक बहुत बड़ा मतलब जो जो 20-25 फीट के कोठार होते हैं, जो पहले किले पे भी हुआ करते थे, जहां पे लोग आके उस पे धान्य डालते थे। कि मेरे एक भाई जैसे दोस्त ने मुझे बताया कि ये काम आप करते हो आप उसमें डालो, वैसे एक धान्य का जैसा वर्क ग्रेनरी है, तो उसमें आप डालोगे एक बार दो बार 10 बार 100 बार कुछ नहीं होगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो जो अनाज है वो उसका लेवल तक भर जाएगा
1: जी।
0: फिर आप जो भी डालोगे, एक भी छोटा गड़वा आप उसमें डालोगे अनाज, तो बाहर आएगा। सो वर्क ग्रेनरी, आप पहले कितने काम करो शायद उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन जब वो अनाज का जो कोठार है वो भर जाएगा तो आप छोटा भी कुछ करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इट इज लाइक दैट। तो शायद वो मेरे और सभी केस में काम करता है। तो पहली फिल्म मुझे जो मिली वो ऐसे ही बहुत जगह ऑडिशन इंट्रोडक्शन ऑडिशन इंट्रोडक्शन दे दे के एक जगह से कॉल आया। और एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे जिन्होंने अर्जुन रेड्डी नाम की फिल्म साउथ में की थी
1: जी।
0: उनका नाम था संदीप सर, संदीप वांगा रेड्डी। उन्होंने मेरा वो ऑडिशन देखा।
1: अच्छा।
0: मुकेश छावड़ा साहब के यहाँ से वो ऑडिशन आया था एंड ही लाइक्ड इट फॉर द कैरेक्टर ऑफ द डीन ऑफ द हॉस्पिटल वेयर कबीर सिंह जहाँ काम करता है। और फिर वो फिल्म में मुझे एक किरदार मिला जो कि बहुत अच्छा किरदार था, सीन्स शायद कम थे लेकिन एक नोटिस करने लायक किरदार था
1: जी।
0: और वो फिल्म इतनी बड़ी हुई तो एक छोटे से छोटे किरदार को भी आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता
1: है।
0: तो दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म दैट हैपेंड इन माय लाइफ। तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद कबीर सिंह के नाम से मुझसे जानते होंगे।
1: बड़े सेलिब्रेट पर्दे का ये जो पहला अनुभव था, इसमें सारे बड़े नाम
0: बहुत,
1: तो कहीं किसी तरह का प्रेशर महसूस किया आपने या इन सब के साथ काम करते हुए क्या अनुभव क्या था?
0: मैं मेरे आर्ट से बहुत प्यार करता हूँ सर। तो मुझे बिल्कुल प्रेशर फील नहीं होता जब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ।
1: क्या बात, बहुत बड़ी बात आपने कही है। और मतलब जो भी इस क्षेत्र में आने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत सही बात है कि समझे इस बात को कि आप अपनी कला से कितना प्रेम करना चाहिए।
0: बस वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी वही है। अगर आप आपकी कला में निपुण हो, आपने उसे सफिशिएंट टाइम दिया है
1: जी,
0: तो सामने मतलब मैं बच्चन साहब के साथ भी रूबरू हुआ हूँ पर मुझे कभी प्रेशर नहीं आया। तो और यही सब लोग हैं जो इस लेवल पे जा चुके हैं। जैसे बच्चन साहब को तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं
1: जी जी।
0: जब मैं उनके साथ पहली बार रूबरू हुआ वागले की दुनिया के हमारे शो के थ्रू एक्सचेंज हुआ था। हमारा शो और उनका शो KBC और वो
1: जी जी।
0: तो हमें नसीब प्राप्त हुआ उनके इर्द गिर्द बैठने का, उनसे बात करने का। तो मुझे प्रेशर नहीं लगा, मुझे लगा कि अपना ही कोई एक सीनियर एक बहुत बड़ा
1: जी।
0: अभी मेरी आंखों में पानी आ रहा है, वो फील था वो अलग ही था। तो वो उनसे मिलने के बाद ऐसा लगा और उनसे मैंने बात भी की। मैंने उनको कहा, आई रिक्वेस्टेड हिज मैनेजर कि मुझे एक मिनट अलग से बात करनी है।
1: अच्छा।
0: जैसे अरे आप दिन भर साथ में थे सर, क्या प्रॉब्लम है, बोले एक मिनट बात करनी है। तो वो आए, पटेल साहब बहुत ही खूबसूरत इंसान है, बहुत ही अच्छे दिल से वो आए। उन्होंने कहा हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मैंने बोला सर एक प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में। अरे क्या हो गया?
1: अच्छा।
0: सर वो बचपन से आपको देखते देखते बड़े हुए हैं। तो अभी जब भी एक्टिंग करते हैं तो मेरा कोई ना कोई दोस्त या कोई डायरेक्टर ऐसा बोलता है कि यार खुद से थोड़ा बच्चन कम कर ले। He laughed the same way, the way you laughed.
1: अच्छा अच्छा।
0: डर वाला मुझसे होता नहीं है।
1: यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ कि एक गाना चुनो तो आप बच्चन साहब की फिल्म का गाना चुनेंगे?
0: बिल्कुल। मुझे उनका एक बहुत खूबसूरत गाना आता है और जो मैं गाता भी हूँ बहुत सारे गेट टूगेदर्स में, शराबी फिल्म का दे दे प्यार दे। I love that song. It starts with हम बंदे हैं प्यार के, तो एक बहुत खूबसूरत गाना है जो मैं हमेशा।
1: चलिए सुनते हैं। हम

0: शराबी फिल्म का गीत हम सुन रहे थे, दे दे प्यार दे। और ये प्यार जो आपने मांगा इंडस्ट्री से, वो आपको मिलता गया, बढ़ता गया ये प्यार, और इस प्यार की अब इंतहा होना बाकी है। मगर इस प्यार के बढ़त में जो अगला स्टेप है, वो कौन सी फिल्म थी, कौन सा प्रोजेक्ट था?
1: इस दौरान काफी फिल्में हुई। एके वर्सेस एके नाम की अनिल कपूर और अनुराग कश्यप जी के साथ एक फिल्म थी, नेटफ्लिक्स पे आई थी।
0: हाँ,
1: वो मैंने एक फिल्म की, बहुत अच्छी फिल्म थी। अनिल जी और अनुराग जी के साथ काम करने का मौका मिला, दोनों इतने महान एक्टर्स भी हैं
0: जी,
1: तो बहुत सीखने को मिलता है इन सब लोगों के थ्रू। तो एके वर्सेस एके मेरी दूसरी फिल्म थी
0: जी।
1: फिर मैंने बागी 3 भी की, जो कि टाइगर श्रॉफ के साथ में थी, रितेश देशमुख साहब थे, वो थी। फिर उसके बाद में मेरी दो प्रोजेक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मडगांव एक्सप्रेस एक फिल्म आई थी अभी, कुणाल खेमू उन्होंने वो डायरेक्ट की थी, लिखी थी
0: जी।
1: तो लाइट कॉमेडी फिल्म, तो बहुत ही खूबसूरत पिक्चर थी, जैसे मैं हेरा फेरी, अंदाज अपना अपना, ये फिल्में कभी भी लगाओ, कितनी भी बार देखो, वैसा ही मडगांव एक्सप्रेस भी आप कभी भी देखो, एक बड़ा ही लाइट कॉमेडी फैमिली के साथ देखने लायक, वो एक फिल्म थी। और एक ताजा खबर नाम के वेब सीरीज जी, जो कि भुवन बाम अपने आप में एक बहुत बड़ा यूट्यूब स्टार है आज के दुनिया में
0: जी,
1: तो उसके साथ की थी। वो दोनों सीजन मैंने उसमें किए, तो उसमें भी मेरा प्राइमरी कैरेक्टर रहा, नेगेटिव शेड है, ग्रे शेड है। पहले सीजन में विलन थे जेडी चक्रवर्ती साहब
0: जी,
1: जो कि साउथ से सत्या मूवी आई थी, उन्होंने सत्या का कैरेक्टर
0: किया।
1: और दूसरे में थे जावेद जाफरी साहब
0: जी,
1: तो ये दोनों के साथ मैंने वो कैरेक्टर किया था जो कि ग्रे शेड था, लेकिन काम करते हुए बहुत मजा आया। फिर बीच में गांधी गोड से एक युद्ध, जो राजकुमार संतोषी साहब की फिल्म थी, उसका किस्सा बड़ा खूबसूरत है। हुआ ये कि मैं रंजीत कपूर सर के साथ नाटक किया करता था।
0: अच्छा।
1: रंजीत कपूर सर जो अन्नू कपूर साहब के बड़े भाई हैं, 9 साल बड़े, वो थिएटर की वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पर्सनालिटी होंगी आज इंडिया
0: जी,
1: में
0: जी।
1: तो उनके साथ में नाटक करता था, चेखो की दुनिया, शेर अफगन भी हम करने वाले थे। तो सर को मैं बहुत मानता हूँ। लॉकडाउन खत्म होते ही मैंने सोचा कि मैं वापस आ जाता हूँ, फैमिली मेरी नागपुर में थी, लेकिन मैं आ गया, एटलीस्ट थोड़ा बहुत काम चालू हुआ था
0: जी।
1: मैं रंजीत सर को मिलने गया, रंजीत सर ने कहा कि विपुल कल आ जाओ, उस दौरान जो है वो सोसाइटीज लॉक हुआ करती थी, सबको एंट्री नहीं होती थी। बोले तुम्हारे पास गाड़ी है तो मुझे तुम छोड़ देना, मुझे जाना है जुहू।
0: अच्छा।
1: तब हमारी रास्ते में बात भी हो जाएगी। मैंने बोला सर ठीक है, मैं गया सर को पिकअप किया मैंने। हम जाते जाते बातें कर रहे थे, जो कुछ बातें थी, मैंने भी एक फिल्म लिखी थी, मैंने सर को बताई।
0: अच्छा।
1: बातें हुई, मुझे पता नहीं वो कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने

0: जू चलो।
1: अच्छा
0: बच्चन साहब के घर के सामने से जाएंगे। तो मैं वहां ले गया गाड़ी। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मेरी मंजिल आ गई, मैं उतरता हूँ, मिलते हैं बाद में। मैंने ठीक है सर। तो उन्होंने उतरते वक्त पूछा, तुम राज जी से मिले हो? मैंने बोला कौन राज जी सर?
1: हाँ।
0: अरे राजकुमार संतोषी।
1: अच्छा।
0: अरे मैंने बोला सर मैंने तो नाम ही सुना है, आप राज जी से मिले हो, कैसे मैं मिलूंगा? अच्छा तो आ जाओ चलो। फॉर मी इट वॉज लाइक गूस बम्प, इतने बड़े इंसान से आ जाओ चलो मिलने। मैंने तुरंत मैंने ठीक है आता हूँ, मैंने गाड़ी लगाई उनके साथ ऊपर गया। ऊपर गया तो राज जी नहीं थे, बाहर गए हुए थे।
1: अच्छा।
0: उन्होंने कहा कि थोड़ी देर आप इंतजार कीजिए, और वो चले गए अंदर किसी वर्कशॉप टाइप डिस्कशन के लिए।
1: अच्छा।
0: अब वो बहुत बड़ा सा फ्लैट टॉप फ्लोर पे मैं था, मैं वहां पे जाके टेरेस ओपन था, वहां पे जाके बैठ गया। और एक इंसान बड़ा खूबसूरत ख्यालों में खो जाता है। मैंने सोचा मैं ऐसे बैठा हुआ, मेरे लंबे बाल हुआ, लॉकडाउन में मैंने कंधे तक बाल बढ़ा लिए थे।
1: अच्छा।
0: मैंने सोचा मैं ऐसे बैठा हुआ, राज जी की एंट्री होती है, राज जी बोलते हैं अरे यार ये कौन है, इसको ले लेते हैं। ऐसे मैं कुछ सोच रहा था, हालांकि राज जी आए थोड़ी देर बाद, उन्होंने मुझे देखा नहीं, बाद में मुझे मिलाया गया उनसे। और एक कैरेक्टर उनके दिमाग में था जो उनके एसोसिएट ने आके मुझे बताया कि डीएसपी राणा नाम के उस दौरान के अच्छा कैरेक्टर था
1: जी।
0: तो उनको बताया कि ये है विपुल देशपांडे, रंजीत सर ने बताया ये मेरा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, थैंक्स टू रंजीत सर फॉर दैट। और उन्होंने कहा कि आप इससे जो भी आपके पास काम हो आप कराइए, बहुत बढ़िया कलाकार है। तो उन्होंने कहा यार डीएसपी का कैरेक्टर है लेकिन इतने खूबसूरत बाल बढ़ा रखे हैं, काटने पड़ेंगे। मैंने बोला सर मैं काट लूंगा, बालों का टेंशन नहीं है, अब काम करना जरूरी है। Then he gave me that character and I worked with him. It was a beautiful experience working with him also.
1: OTT की वेब सीरीज के लिए, फिल्मों के लिए आपने काम किया, टेलीविजन के लिए सीरीज की है और बड़े पर्दे पर भी काम किया है। ये तीनों अलग अलग मीडियम है मगर इसके शूटिंग की जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट एक जैसी होती है
0: जी।
1: कुछ फर्क आपने एक एक्टर के रूप में महसूस किया है इसमें?
0: फिल्म और OTT ऑलमोस्ट सेम है।
1: हाँ।
0: क्योंकि इसके पहली बात आती है बजट की, आपके पास में थोड़ा अच्छा डिसेंट बजट है तो आपके पास टाइम होता है
1: जी।
0: टेलीविजन में क्या होता है कि आपके पास में टाइम थोड़ा कम होता है क्योंकि आपको वो शूट करके पहुंचाना है।
1: हाँ।
0: आगे और
1: उसकी एक तयशुदा तारीख है कि उस दिन वो एपिसोड तो टेलीकास्ट होना ही है।
0: होना ही है
1: जी।
0: तो जैसे आपने कहा कि एक तयशुदा तारीख तो उस वक्त आपको पहुंचाना है। और आपके पास में बहुत सारा काम होता है
1: जी जी,
0: बिकॉज महीने में अगर वो 28 दिन टेलीकास्ट हो रहा है, 28 दिन आपको काम करना पड़ेगा, 28 स्टोरीज आपको लगेंगी
1: जी।
0: तो मेरा एक बहुत ही बड़ा काम जो मैंने किया है आज तक वो था वागले की दुनिया।
1: हाँ जी।
0: मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ कि जेडी सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, जेडी मजेठिया सर, आतिश कपाड़िया सर, ये दोनों प्रोड्यूसर्स हैं। मुझे मौका मिला सुमित राघवन जैसे इतने सीनियर आर्टिस्ट के साथ भाई के करेक्टर में काम करने का, तो सुमित दा मेरे मेंटर जैसे हैं।
1: क्या बात।
0: दो और हमारे आइकॉन थे भारती मौसी, भारती आचरेकर
1: जी,
0: और अंजन सर, अंजन श्रीवास्तव, जो कि सीनियर कपल थे वागले। ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूट्स हैं।
1: बिल्कुल।
0: इनसे सीखने को बहुत मिलता है। तो ये तीनों के साथ काम करने में बड़ा मजा आया, मुझे बहुत सराहना भी मिली इन लोगों के साथ काम करते हुए, बहुत सीखने मिला। ये मेरा पहला डेली शो था।
1: अच्छा।
0: तब तक मैं फिल्म्स और OTT ही करना चाहता था तो मैं उसी पे फोकस ज्यादा कर रहा था। बट ये कैरेक्टर बड़ा है अपने आप में मुझे।
1: ये मुझे लगता है 2022 की बात है।
0: जी जी, 2022 की बात है, आज से 4 साल पहले।
1: हाँ।
0: तो ये मुझे फोन आया, जैसे मैंने कहा वर्क ग्रीनरी।
1: हाँ, हाँ।
0: उसी कॉन्सेप्ट में मुझे कॉल आया। ये होता है कि आप जैसे कोई न्यू कमर भी आता है वो सोचता है यार मैं अभी ये ऑडिशन क्यों दूं, वो क्यों दूं। मुझे लगता है हर एक ऑडिशन जो आपके पास आता है वो कुछ ना कुछ मीनिंग लेके आता है।
1: हाँ।
0: वो शायद कहीं ना कहीं ऐसे सर्कल में जाएगा जहां से आपको बाद में फ्यूचर में काम मिलेगा।
1: अच्छा।
0: क्योंकि सबको चाहिए अच्छे काम करने वाले। तो कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, दे नीड गुड पीपल। तो आपके पास जो भी मौका, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है आप उसको छोड़ो मत। आपके पास में भले ही आपको लग रहा है कि ये इतना मजा नहीं आ रहा है बट आप उसको शूट करके भेज दो
1: जी।
0: आजकल तो बहुत आसान हो गया है। पहले मैं जब आया था 2013 में ये ऑनलाइन वीडियो बना के भेजने वाली बात नहीं थी।
1: बिल्कुल।
0: आज ऐसा हो गया कि आपको स्क्रिप्ट आती है, आपका मोबाइल में अच्छा कैमरा है, आप उसको स्टैंड पे लगाओ और खुद ही घर पे बैठ के शूट कर लो,
1: अपना
0: ऑडिशन भेज दो, सही लगा तो वो बुलाएंगे। ये पहले नहीं हुआ करता था। पहले एक भी ऑडिशन क्यों ना हो जाना पड़ता था, जहां जहां बुलाया जा रहा है वहां पे लाइन में खड़ा होना पड़ता था।
1: दर दर भटकने वाली बात है।
0: बिल्कुल। हमने दर दर की ठोकरें खाई है। और बहुत जगह से बाहर से ही निकाला जाता था कि यहाँ कुछ काम नहीं है। कुछ जगह पूछा जाता था कि आपकी अपॉइंटमेंट है? नहीं सर, पता करने आए, कुछ काम है? नहीं नहीं, कोई कोई काम नहीं है। तो ये भी बहुत बार, बहुत साल हुआ है मेरे साथ। तो लेकिन उसका अपना एक मजा था।
1: हाँ।

0: वो सफर है।
1: अच्छा,
0: मंजिल पे पहुंचने का मजा तभी आता है जब सफर अच्छा हो।
1: हाँ,
0: अगर सफर आप डायरेक्ट चले गए तो क्या मतलब।
1: बराबर।
0: तो एक अलग मजा रहा है, अभी भी मैं एंजॉय करता हूँ, स्ट्रगल अभी भी खत्म नहीं हुआ।
1: हाँ,
0: अभी भी ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन शायद वहां तक पहुंचने के लिए अभी समय होगा। बट जब भी मिलेगा ये सफर आनंददायी ही रहेगा।
1: क्या बात। कोई ऐसा गाना जो आपके इस संघर्ष के दिनों में बार बार आपके जहन में गूंजता हो?
0: देवानंद साहब का जो एक गाना मैंने उनपे फिल्माया हुआ गाना देखा था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला।
1: है, क्या बात है।
0: और फिक्र को धोए में उड़ाता।
1: हम दोनों फिल्म का गाना है।
0: हाँ जी,
1: बेहद लोकप्रिय गीत।
0: बेहद लोकप्रिय।
1: आइए सुनते हैं।

0: कोई ऐसा गाना जो आपके इस संघर्ष के दिनों में बार बार आपके जहन में गूंजता हो?
1: देवानंद साहब का जो एक गाना मैंने उनपे फिल्माया, वो गाना देखा था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला,
0: क्या बात है,
1: और फिक्र को धोए में उड़ाता।
0: हम दोनों फिल्म का गाना है।
1: हाँ जी,
0: बेहद लोकप्रिय गीत,
1: बेहद लोकप्रिय।
0: आइए सुनते हैं।

0: विपुल जी, जिंदगी का साथ निभाते निभाते आप वागले की दुनिया तक पहुंचे। हम उसकी बातें और थोड़ा विस्तार से करना चाहेंगे। अंजन जी जैसे वरिष्ठ और श्रेष्ठतम कलाकार के साथ काम करना, भारती जी आचरेकर और सुमित दादा के बारे में आप बता रहे थे, सुमित राघवन जी, कैसा इंटरेक्शन होता था ऑफ द कैमरा, कैसे सब माहौल होता था?
1: एक बहुत ही खूबसूरत बात सुमित दादा के साथ ये होता था कि मैं जब तक सेट पे जाऊं और हम लोग रिहर्सल करें
0: जी,
1: तब तक मैं उसको बोलता था कि सुमिता ये करते हैं, सुमिता ये करेंगे, हाँ ये करेंगे।
0: हाँ।
1: जैसे एक्शन होता है वो दादा मुझे बोलता था
0: जी जी,
1: क्योंकि
0: मैंने बड़े भाई का रोल,
1: मैंने उनके बड़े भाई का रोल किया था,
0: मनोज वागले मेरा नाम था जी जी जी।
1: तो बड़ा अजीब सा वो लगता था।
0: हाँ।
1: मुझे बड़ा मजा आता था उसमें सुनते हुए।
0: हाँ।
1: कि जब तक एक्शन नहीं हो रहा है तब तक मैं उनको दादा बोल रहा हूँ। सभी हम लोग सभी से सीनियर है, और फिर उसके बाद में जैसे एक्शन हो गया तो सुमित दादा की यहाँ से आवाज आती थी, अरे दादा। खैर ये तो हुई मजाक की बात, लेकिन जहां तक उनके साथ काम करने का सवाल है, सुमित दादा को भी 40+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो बहुत बचपन से काम कर रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: फास्टर फेने वो शो किया करते थे 80s में शायद।
0: बिल्कुल।
1: और अंजन जी और भारती मौसी का तो क्या ही कहना, मतलब वो मेरे फर्स्ट रील

0: मदर फादर थे और उन्होंने उतना ही प्यार दिया।
1: हाँ, आपको वो पहला शॉट याद आ रहा होगा जानजन जी के साथ जो दिया था आपने।
0: अमेजिंग इट वॉज। हाँ, पहला शॉट सुमिता के साथ भी, अंजन जी के साथ भी। तो हालांकि सुमिता के साथ तो मेरा मॉक शूट भी हुआ था।
1: अच्छा।
0: क्योंकि ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जिनको प्रोडक्शन बुलाता है, चैनल बुलाता है, एक ऑडिशन होता है, उसके बाद में देखा जाता है कि इनके साथ में केमिस्ट्री होगी कि नहीं होगी।
1: हाँ।
0: तो मुझे बुलाया था मेरे ऑडिशन के बाद में, शॉर्टलिस्ट होने के बाद में प्रोडक्शन ने मॉक शूट के लिए।
1: अच्छा।
0: तब सीन ये था कि माँ, मतलब भारती मौसी, एडमिट है।
1: अच्छा।
0: और ये जो कैरेक्टर है मनोज बागले का, ये थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड कैरेक्टर है।
1: ओके।
0: मेरा जो कैरेक्टर मैंने जो प्ले किया था, और उतना ही कूल और उतना ही शांत सुलझा हुआ है राजेश वागले, जो कि सुमित दादा प्ले करते थे।
1: हाँ, हाँ।
0: तो इतना उसमें डिफरेंस दिखाना था कि माँ के हॉस्पिटल में वो उधर बजर बजा रही, कोई आ नहीं रहा है और ये भड़का हुआ है, और फिर नर्स को बुलाता है, नर्स को झाड़ता है और वो डर के चली जाती है। इस टाइप का एक वो सीन था। मैं सीन प्रिपेयर करके आया, सुविधा को भी मैं पहली बार मिला था। तो बड़ी प्लीजेंट पर्सनालिटी है। जितने बड़े आर्टिस्ट होते हैं उतने ही डाउन टू अर्थ होते हैं, उतने ही दिल के खूबसूरत होते हैं, मैंने देखा हुआ है। ये तभी तो एक अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। इंसान अगर दिल से अच्छा नहीं है तो
1: बड़े कलाकार इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छे और बड़े इंसान है।
0: जी जी जी।
1: और बहुत विनम्र होते हैं।
0: बहुत विनम्र होते हैं। इनको कभी भी आप देखेंगे नहीं कि अननेसेसरी शॉर्ट टेम्पर हो, किस पे चला रहे हैं कुछ।
1: जी, जी,
0: तो ये बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो सुमिता के साथ वो भी मैंने जो एक मॉक शूट किया, एक्शन होने के पहले तक मैं बिल्कुल उस जोन में नहीं जाता, लेकिन एक्शन के बाद मैं चाहता हूँ कि इंसान वही रहे जो कैरेक्टर है, वही मैं फील करूं अंदर से। और ये मुझे वहां सीखने को मिला। हमारे डायरेक्टर थे समीर कुलकर्णी सर, अमित कानेरे सर, दीपेश शाह, ये तीन डायरेक्टर्स थे वहां पे। तीनों ने भी जब तक सीन ओके नहीं होता तब तक वो आगे नहीं भेजते थे।
1: अच्छा।
0: मेरे ख्याल से ऊपर से आया हुआ, जेडी सर से तू आया कि यार ये चीज करनी है तो अच्छी करनी है, छापना नहीं है कि हाँ चलो हो गया आगे बढ़ो। हालांकि वहां पे जाके कोई रोक ही देगा आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं ये सीन नहीं है। आप भी रोजमर्रा के आर्टिस्ट आप रोज कर रहे हो चीजें तो हो जाती है, लेकिन जो मूड आया है वो हम करते थे। जैसे अंजन सर मुझे मोस्ट ऑफ टाइम, अगर मेरा और उनका सीन है, वो मुझे उनके रूम में बुला लेते थे।
1: अच्छा।
0: कि यार उपल आ जाओ अपना सीन है, रूम में बैठ के रिहर्सल करते हैं। वो भी थिएटर आर्टिस्ट है, मैंने भी थिएटर किया है, मुझे बड़ा पसंद है। तो वो बुला देते हैं और मैं और अंजन सर फिर हम लोग रूम में ही, उनके वैनिटी में ही पहले रिहर्स करते थे क्या मूड रहेगा। सिर्फ लाइन्स ही नहीं होती है एक आर्टिस्ट के लिए, न्यूएंसेस जो छोटे छोटे उसमें की हरकतें होती है
1: जी,
0: वो ज्यादा मैटर करती है।
1: बिल्कुल।
0: पॉजेस मैटर करते हैं। टीवी जो है आपके छोटे से छोटे एक्सप्रेशन को पकड़ लेता है, आई मूवमेंट हो, चाहे आपने कहीं बीच में हल्का सा कान मूव किया है, या मराठी में आवंडा गेड़ा सुनते हैं अपन,
1: एक घूंट लेने की
0: प्रक्रिया वो है। तो ये छोटी छोटी बातें जो है कैमरा नोटिस करता है आपकी, तो ये चीज सीखने को मिलती थी। भारती मौसी के साथ इमोशनल सीन करने में बहुत कष्ट लगा था,
1: प्रयास करना
0: पड़ता था कि उस लेवल तक कैसे उसके आजू बाजू पहुंचा जाए।
1: हाँ।
0: लेवल तक पहुंचने की बात ही नहीं करता, सो सीनियर। तो भारती मौसी के साथ जब इमोशनल सीन एक माँ बेटे वाला होता था, और बहुत ज्यादा उनके साथ ही रहे इनिशियली, बाद में फिर अंजन जी के साथ भी रहे, लेकिन पहले माँ के साथ वो बेटे का बॉन्डिंग दिखाना था, तो एक अलग जोन में चले जाता था फिर मैं।
1: हाँ।
0: मैं उतना जरूर समझता कि ये चीज उस राइटर ने इतने प्यार से लिखी है।
1: हाँ।
0: इतने इमोशन सोच के लिखी है, मैं करने वाला हूँ एक बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट के साथ
1: जी,
0: तो वो उस लेवल पे जाना ही चाहिए, तो ही मजा आएगा।
1: हाँ।
0: तो आई यूज टू हैव इट फॉर एन आर टू आर, मैं लिखता था खुद, मैं लिखता हूँ जितने भी लाइन्स आती है, वैसे तो स्क्रिप्ट मिलती है, बट आई यूज टू राइट इन माई वर्ड्स एंड देन रिपीट इट ऑन रेगुलर बेसिस। ये मैंने सीखा है शायद नाना पाटेकर साहब से भी सुना था, आमिर खान साहब से भी सुना था, कि वो खुद लिखते हैं एंड देन वो रिहर्स करते हैं 20 बार 25 बार।
1: जी जी।
0: उसी से फायदा होता है, आपके पास जो भी है वो स्क्रिप्ट है
1: जी,
0: वो स्क्रिप्ट में ही चीजें मिलेंगी आपको जो डिलीवर करनी है
1: जी।
0: तो ये इन तीनों के साथ मैंने सीखा है और बहुत मजा आया। बाकी भी मेरे जितने भी को एक्ट्रेस थे, मेरी वाइफ थी विद्या वागले, सुकन्या ने वो किरदार किया था, फिर हमारे पड़ोसी थे अमित और दीपक पारिक, और उनके साथ भी करने में बड़ा मजा आता था। एक अलग ही जोन में वागले जो है चलता रहा। वागले ने मुझे बहुत कुछ दिया
1: जी जी।
0: घर घर में पहचान मेरी मनोज वागले के नाम से।
1: हाँ, मैं अभी उसी सवाल पे आने वाला हूँ कि घर घर में आप पहुंचे, मगर ये वागले का शूटिंग करने के बाद जब आप अपने घर नागपुर पहुंचे तो कैसा रिएक्शन था?
0: मेरे बहुत सारे दोस्तों को पता तो था ही कि मैं ऑलमोस्ट 7-8 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ।
1: हाँ।
0: कुछ लोगों ने मेरे काम देखे थे, क्राइम पेट्रोल साउथ इंडिया, लेकिन वो छोटे मोटे काम थे जो ज्यादा दिखते नहीं थे।
1: अच्छा।
0: तो वागले करने

0: के बाद जब घर घर में सील पहुंची तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी बताना चालू किया, ये हमारा दोस्त है। तो लोग यकीन नहीं करते थे
1: हाँ
0: कि ये तेरा रोज कहाँ से आएगा। जो नागपुर का तो नागपुर में होगा या ऐसा थोड़ी होता है।
1: हाँ
0: बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते थे। एक बहुत ही मजाक किया सीन हुआ मेरे साथ।
1: अच्छा।
0: मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, 2023 की बात है, हॉस्पिटल में हम लोग थे। एक बार मैं नीचे से, मैं और मेरी शायद माँ थी मेरे साथ, हम लोग नीचे से लिफ्ट में ऊपर के फ्लोर पे जा रहे थे। वहां पे एक इंसान आए, उन्होंने मुझे थोड़ी देर घूर के देखा।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

हैं दोस्तों, शाम के 5 बज चुके हैं। हम उपस्थित हैं युवा श्रोताओं के साथ कार्यक्रम युवाणी को लेकर के। अभी से लेकर के शाम के 5:40 तक हम आपके साथ बने रहेंगे इस कार्यक्रम में, और अन्य दिनों की भांति आज भी आप सुनेंगे इस कार्यक्रम में कुछ लोकगीत, साथ ही साथ कुछ आपसे बातचीत भी हम करेंगे। तो देर न करते हुए कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं ये लोकगीत। गायक कलाकार हैं पार्वती मिश्रा।

अभी आप सुन रहे थे उषा देवी के स्वर में ये लोकगीत। अब सुनिए कुमारी कल्याणी के स्वर में ये विवाह गीत।

अभी आप सुन रहे थे कल्याणी कुमार प्रेरणा कुमारी के स्वर में ये लोकगीत। अब प्रस्तुत है पूनम कुमारी के स्वर में ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे पूनम कुमारी के स्वर में ये लोकगीत। दोस्तों अब सुनिए सुषमा कुमारी के स्वर में ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे अरविंद कुमार झा के स्वर में ये लोकगीत। और इसी गीत के साथ आज के युवाणी कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब सुनिए कुछ फिल्म संगीत। तो कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म अखंड का यह गीत। गायक कलाकार हैं सपना पाठक, प्रकाश प्रभाकर। संगीत निर्देशन थॉमन एस का है और बोल हैं कृष्णा पालीवाल के।

सपना पाठक प्रकाश प्रभाकर, संगीत निर्देशन थॉमन एस का है और बोल हैं कृष्णा पालीवाल के।

अब सुनिए फिल्म अकेली का यह गीत। गायक कलाकार हैं रोमी, बोल हैं मुकुंद भाले राव के और संगीत निर्देशन मेहुल व्यास का है।

अब सुनिए गदर टू का यह गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, बोल है सईद कादरी के और संगीत निर्देशन मिथुन का है।

0: अभी आप सुन रहे थे कनेक्ट फिल्म का यह गीत बेनी दयाल हानिया नफीसा की आवाज़ में, बोल थे आकांक्षा सेठी के और संगीत निर्देशन पृथ्वी चंद्रशेखर का था। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। शाम के 6 बजने ही वाले हैं, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: चार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा

0: सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए तैयार है। हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के बाद श्री नायडू ने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जीएमआर समूह के आपसी सहयोग से निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली गई है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया और उन्हें मेपड़ी के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। इस बीच वायनाड और कोझिकोड जिले के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड के शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार वर्षा के कारण आज सुबह डोडा जिले के थथरी क्षेत्र में एक बादल फट गया, जिससे कई घरों में दुकानों को नुकसान पहुंचा। हालांकि बादल फटने से कोई हताहत नहीं हुआ है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में आज दोपहर 2 विस्फोट हुए। इनमें 4 पुलिसकर्मियों सहित 18 लोग घायल हो गए। ये विस्फोट फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रों और सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शराकी राष्ट्रपति भवन में होने वाली बैठक से ठीक पहले हुए। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगहम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। अब जानकारी प्राप्त कीजिए आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। अब से थोड़ी देर बाद 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत। गामघर संध्या 6:30 पर प्रसारित किए जाएंगे और खेती गृहस्थी आप सुनेंगे शाम 7 बजे। फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे शाम 7:52 पर तथा मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार प्रसारित किए जाएंगे 8:15 पर। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे विविधा कार्यक्रम।

कार्यक्रम देववाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:45 पर। एक फनकार कार्यक्रम रात्रि 10 प्रसारित किए जाएंगे और फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे रात्रि 10:30 पर। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। अब जानकारी प्राप्त कीजिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। कल प्रातः 5:50 पर आप सुनेंगे चिंतन, विषय होगा हमारा मृत्योर्मा, आलेख एवं वाचन सुरेंद्र झा का होगा। कृषि चर्चा 5:55 पर प्रसारित किए जाएंगे और 6:05 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य चर्चा, विषय होगा ब्रेन ट्यूमर लक्षण और इलाज, विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर एजाज आलम। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुनेंगे प्रातः 6:10 पर। रामचरित मानस गान 6:40 पर प्रसारित किए जाएंगे। नमस्कार मिथिला कार्यक्रम आप सुनते हैं प्रतिदिन 7:05 पर। उर्दू प्रोग्राम अंजुमन का वक्त होगा दिन में 9:10 पर, जिसे हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। फिल्म संगीत का आप आनंद लीजिए दिन में 10:00। लोकगीत 10:30 पर प्रसारित किए जाएंगे तथा शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे दिन के 11:00। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT 30 आप सुनेंगे दिन में 11:30 पर। फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे दोपहर 12:00। नारी संसार कार्यक्रम 12:30 पर प्रसारित किए जाएंगे। देशभक्ति गीत आप सुनेंगे दोपहर 1:10 पर और पुनः आप फिल्म संगीत का आनंद लेंगे दोपहर 1:15 पर। रोजगार सूचना 2:10 पर प्रसारित किए जाएंगे और फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे 2:30 पर। संध्या 3:00 आप दोपहर 3:00 आप सुनेंगे सुगम संगीत। शाम 5:00 आप सुनेंगे युवानी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे संध्या 5:40 पर। विद्यापति गीत 6:10 पर प्रसारित किए जाएंगे तथा गाम घर कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 6:30 पर तथा खेती गृहस्थी आप सुनेंगे शाम 7:00। फिल्म संगीत आप सुनते हैं संध्या 7:52 पर। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे चर्चा का विषय है, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। लोक माधुरी कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:00 और 10:30 पर आप सुनेंगे गीतों के रंग। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विद्यापति गीत।

0: अभी आप विद्यापति गीत सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के पटना केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना से प्रस्तुत है संवाद। संवादक संग हम छी बैजू कुमार झा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सीमावर्ती जिला सबके घुसपैठ मुक्त बनायबाक सरकारक प्रतिबद्धता दोहरौलनि। श्री चौधरी आइ अररिया जिलाक फारबिसगंज प्रखंडक हरिपुर पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में उपस्थित जनसमुदाय के संबोधित कऽ रहल छलाह। ओ कहलनि जे राज्य में घुसपैठ, आतंकवाद आ अपराधक लेल कोनो स्थान नहि अछि। श्री चौधरी कहलनि जे सहयोग शिविर आम लोकक समस्याक त्वरित समाधानक प्रभावी माध्यम बनिकऽ उभरल अछि। ओ जनौलनि जे एहि शिविरक माध्यम सँ एखन धरि 4,53,000 लोक आवेदन कयलनि। एहिमे मात्र 27,000 आवेदन

0: लंबित अछि। एहि अवसर पर मुख्यमंत्री सहयोग शिविर में लोकक समस्या सुनलनि आ एकर शीघ्र समाधानक निर्देश देलनि। एम्हर हमर संवाददाता सब जनौलनि जे प्रदेशक सभ पंचायत में सेहो सहयोग शिविरक आयोजन कयल गेल। प्रदेश में आब राज्य सरकारक स्वामित्व वाला राजमार्ग, पैघ पुल, बाईपास आ सुरंग सब पर टोल टैक्स देबय पड़त। परिवहन विभाग पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026 केर अधिसूचना जारी कऽ नव टोल नीति लागू कऽ देलक अछि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहलनि जे नव टोल नीतिक तहत मात्र वाणिज्यिक वाहन सबकेँ टोल टैक्स देबय पड़त, निजी गाड़ी सबकेँ कोनो प्रकारक टोल नहि देबय पड़त। एम्हर हमर संवाददाता जनौलनि जे अलग अलग सड़कक लेल गाड़ी सभक श्रेणीक हिसाब सँ टोल टैक्स केर निर्धारण कयल गेल अछि। नव व्यवस्थाक तहत दू लेन सँ बेसी मुदा चारि लेन सँ कम चौड़ाई वाला स्टेट हाईवे पर नेशनल हाईवे केर निर्धारित दरक 60% टोल लेल जायत। चारि लेन वा ओहिसँ बेसी चौड़ाई वाला सड़क पर 100% आ 5.5 मीटर चौड़ाई वाला मध्यवर्ती लेन वाला सड़क पर 50% टोल लेल जायत। ओतहि राज्य सरकारक एजेंसी सब द्वारा निर्मित 250 मीटर नम्हर पुल, बाईपास आ सुरंग सब पर सेहो टोल टैक्स वसूलल जायत। नियमक उल्लंघन करबा पर 3 गुना धरि जुर्माना देबय पड़त। केंद्र सरकार सुपौल सँ दरभंगा धरि बेड़िया मंच आ मधेपुर होइत नव राष्ट्रीय राजमार्गक निर्माणक लेल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट माने DPR तैयार करबाक प्रक्रिया शुरू करबाक निर्णय कयलक अछि। सड़क परिवहन आ राजमार्ग मंत्रालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एहि संबंध में पत्र जारी कर जल्द से जल्द DPR तैयार करबाक आ व्यवहार्यता रिपोर्ट मंत्रालय के सौंपबाक निर्देश दिलक अछि। रिपोर्ट भेटलाक बाद परियोजना पर आगूक निर्णय कयल जायत। भाजपा बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव लेल अभिषेक कुमार के अपन उम्मीदवार बनौलक अछि। पार्टीक राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह एहि संबंध में पत्र जारी कयलनि अछि। अभिषेक कुमार पटना महानगर भारतीय जनता युवा मोर्चाक अध्यक्ष रहि चुकल छथि। पटना में 10 जुलाई के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA केर एकटा महत्वपूर्ण बैसार आयोजित होयत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अध्यक्षता में होबय वाला एहि बैसार में जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार समेत NDA केर सभ वरिष्ठ नेता सम्मिलित हेता। जदयू केर कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जनौलनि जे बैसार में बांकीपुर विधानसभा उपचुनावक रणनीति पर विस्तार सँ विचार विमर्श कयल जायत। एकरा अलावा गठबंधन सँ जुड़ल आन महत्वपूर्ण राजनीतिक आ संगठनात्मक मुद्दा सब पर सेहो चर्चा होयबाक संभावना अछि। प्रदेशक सभ परम्परागत विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रमक 4वें वर्ष में प्रवेशक लेल 7.5 CGPA केर बाध्यता खत्म कऽ देल गेल अछि। लोक भवनक अनुसार संबंधित पाठ्यक्रमक अध्यादेश में संशोधन कऽ ई शर्त खत्म कयल गेल अछि। संशोधनक बाद आब 6 सेमेस्टर पूरा करय वाला सभ विद्यार्थी लोकनिकें 7वें सेमेस्टर मने 4वें वर्ष में प्रवेश भेटत। कोनो विद्यार्थी के मात्र कम CGPA केर कारणे 4वें वर्ष में जयबा सँ नहीं रोकल जायत। प्रदेश में मानसूनक सक्रियता सँ रुकि रुकि कऽ बरखाक सिलसिला जारी अछि। मौसम विभागक अनुसार राज्य में अगला 1 सप्ताह धरि बरखाक अनुकूल परिस्थिति बनल रहत। विभाग काल्हि अररिया, किशनगंज, मधुबनी, सुपौल आ कैमूर जिला में किछु ठाम भारी बरखाक चेतावनी जारी कयलक अछि। राज्यक आन भाग सभ में सेहो बरखाक पूर्वानुमान अछि। एम्हर पछिला 24 घंटाक दरमियान अधवारा में सबसँ बेसी 57.2 मिलीमीटर बरखा रिकॉर्ड कयल गेल। महाराष्ट्रक नासिक में आयोजित 14वें जूनियर सब जूनियर पेंचक सिलाट चैंपियनशिप में बेगूसराय केर सुप्रिया राज स्वर्ण पदक आ साक्षी राज कांस्य पदक जीतलनि। सुप्रिया राजक चयन कॉमनवेल्थ गेम्स लेल सेहो भेल छनि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गाम घर।

0: कार्यक्रम गाम घर सुनय वाला सब स्नेही श्रोता लोकन के सत्तो भाई के दिशा नमस्कार, संगे गोपी भाई अहूँ के नमस्कार।
1: नमस्कार सत्तो भाई, संगे संग नव ऊर्जा कार्यक्रम के श्रोता लोकन युवा लोकन उनका ए कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
0: बहुत बहुत स्वागत है।
1: देखियो सत्तो भाई, युवा वर्ग जे अहाँ के बुझबे करे छे कि अक्षय ऊर्जा के स्रोत होइत अछि,
0: देश के रीढ़ के
1: हड्डी छै, हड्डी छै।
0: अहाँ के युवा जे छथि से अपन देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या में छथि आ उनका लेल बहुत रास एहन कार्यक्रम सब अछि जे चलायल जाइत अछि।
1: देखियो युवा लोकन जे होइत छथि ओ अहाँ के नव ऊर्जा और नव उनकर सोच होइया, नव कल्पना होइया, उनका लेल जे नव नव छै से समय ओ अनुसंधान करै छथि, तो हुनका लेल नव विचार होइए, तो नव विचार के साथ ओ काज करै छथि, तो निश्चित रूप से अहाँ के देश के विकास बहुत तेजी से आगू बढ़े। तो प्रधानमंत्री के जे नव 15 सूत्री कार्यक्रम अछि ई भारत सरकार के एकटा प्रमुख कल्याणकारी योजना अछि जेकरा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा लागू कयल जाइत अछि। एकर मुख्य उद्देश्य अछि कि केंद्र द्वारा अधिसूचित छोटा जे अल्पसंख्यक समुदाय अछि, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन का आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास को सुनिश्चित केना
0: संगे शिक्षा के अवसर जे अछि ओकरा बढ़ाबे
1: बढ़ेने
0: एकीकृत बाल विकास सेवा जना ICDS जकरा कहै छै आंगनबाड़ी, ओहि में समान लाभ सुनिश्चित करब सेहो अछि, कियाकि धियापुता के देखबनि जे ओहि में पढ़े छथि तो बहुत रास एहन चीज सब अछि जे उनका देल जाइ छनि, जना खाना भेल, उनकर अथी ड्रेस भेल, चाहे छात्रवृत्ति भेल, तो ई सब उनका लेल देल जाइ छनि। खास कऽ कऽ एहन युवा के हमरा लोकन के जानबाक चाही जे गाम घर में रहै छथि, उनका लेल प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम जे अछि से खास कऽ कऽ अल्पसंख्यक जाति के जे आदमी छथि उनका लेल चलायल जाइत अछि आ एकर उद्देश्य अछि जे सब वर्ग के समान लाभ अवसर मिले।
1: हाँ देखियो हुनका बीच शिक्षा के अवसर बढ़ाने में आंगनबाड़ी के माध्यम से नेना भुटका और गर्भवती स्तनपान कराबे वाली माता के पूरक पोषण, टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच प्रदान केने एकीकृत बाल विकास सेवा के एक निश्चित प्रतिशत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रक नेना भुटका और माता तक पहुँचने सर्व शिक्षा अभियान और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जेहन योजना के लाभ अल्पसंख्यक बहुल इलाका में सुनिश्चित केने। उर्दू और मदरसा शिक्षा प्राथमिक विद्यालय में उर्दू शिक्षक के भर्ती और मदरसा के आधुनिक शिक्षा के संग जोड़ने, मुख्य धारा से जोड़ने, छात्रवृत्ति योजना प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक में, उन्हीं ये आर्थिक और रोजगारक अवसर, ऋण सहायता भेटी या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम के माध्यम से आर्थिक गतिविधि और स्वरोजगार के लेल आसान ऋण उपलब्ध कराएल जाइए।
0: संगे मेधावी जे छात्र छथि उनका लेल प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक जे होइत अछि ओहि मे वहाँ के मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति योजना सेहो चलायल जाइ
1: सेहो चलायल जाइ आ कौशल विकास मे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक युवा के प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान केने बुझलहुँ।
0: संगे जे युवा लोकन छथि उनका लेल राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम जकरा कहै छै ओहि के माध्यम से रियायती ऋण सेहो प्रदान कयल जाइ छनि, जाहि माध्यम से ओ अपन खुद के रोजगार कऽ सकै छथि, संगे खुद के रोजगार कऽ कऽ दोसर के सेहो रोजगार से जोड़ सकै छथि इनका लेल एहन ऋण के उपलब्ध करायल जाइत अछि। तऽ हमरा लोकन के युवा जे छथि से सब क्षेत्र में देख रहल छी जे आगा बढ़ै छथि, ओ नौकरी हुए चाहे पुलिस बल में उनकर भागीदारी हुए, खास कऽ कऽ अल्पसंख्यक जाति के जे छथि तो सब क्षेत्र में उनका सरकार अवसर दै छन।
1: किया ने आगू बढ़ता हो किया तो देखियो युवा छथि तो एकदम उत्साह, उमंग और नव विचार से अहाँ के लैस छथि, प्रेरित छथि, तो सब क्षेत्र में आगू बढ़ता अइले बस आवश्यक ई कि वो जागरूक बनेत, साकांक्ष बनेत, सजग बनेत।

0: अब देखियौ जीवन स्तर बुनियादी सुविधा जे दीनदयाल अंत्योदय योजना जेहन जे ग्रामीण योजना अछि ओहिमे अल्पसंख्यक लोकनिके भागीदारी सुनिश्चित केने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमक द्वारा अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में स्कूल अस्पताल और कौशल केंद्र जेहन बुनियादी ढांचा के निर्माण केने
1: चाहिए संगे राज्य आ केंद्र सरकार के जे नौकरी अछि जना पुलिस बल के अछि आर बहुत रास अछि शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी अछि जाहि क्षेत्र में नौकरी अछि उनका सब क्षेत्र में अवसर देल जाय छन ओ अवसर के लाभ उठावत ओहि के लेल ई योजना सब चलायल जाइत अछि
0: आर आवास और स्वरोजगार योजना में ग्रामीण आजीविका मिशन जेहन योजना में अल्पसंख्यक उचित भागीदारी तय केने आप प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में स्कूल अस्पताल और सामुदायिक केंद्र में बुनियादी ढांचा विकसित
1: कर
0: आ सांप्रदायिक दंगा के रोकथाम हेतु सांप्रदायिक हिंसा के रोकबाक लेल आ प्रभावित क्षेत्र में दंगा के बाद पीड़ित के उचित राहत और पुनर्वास प्रदान करबाक लेल विशेष उपाय प्रदान केने
1: संगे स्वच्छ भारत आ आवास से जुड़ल योजना सब सेहो चलायल जाइत अछि जना कि किनको आवास नहीं छन तो उनका सरकार दिस से आवास उपलब्ध करायल जाय छन तो ई जे अवसर सब अछि ओकर लाभ कखने उठा सकै छी जखन हमरा लोकन जागरूक है जागरूकता बड़ बेसी आवश्यक अछि हमरा लोकन जागरूक होय संगे शिक्षा से लक आवास जत्ते चीज अछि सब में अवसर प्रदान कयल जायत अछि तो हमरा लोकन के चाही जे अपन अवसर के लाभ उठाबी
0: सतो भाई मानव जीवन जे अछि ओ बेशकीमती अछि तुलसीदास जी कहै छथि कि बड़ भाग जो मानुष तन
1: पावा
0: तो मनुख के जे छन छन छे ओ बड कीमती छे तो प्रत्येक छन व्यक्ति के सजग हेबा के चाहिए साकांक्ष हेबा के चाहिए और नव कल्पना और नव विचार अनबा के चाहिए कि छै से अहां का जना नव कोनो अहां का आकांक्षा है आ वो पूरा नहीं भ रहा है तो वो आकांक्षा के बदले का या वो कल्पना के बदले का आवश्यकता नहीं है आवश्यकता एक गप के कि अहां का तरीका अहाँ के जरूर किछ गड़बड़ अछि तरीका बदलू बुझलहुँ लेकिन नीक काज या तो नीक काज के निश्चित रूप से करबाक चाहिए तो युवा लोकन जो अहाँ के नीक लक्ष्य रखता समाज और राष्ट्र के विकास में अपन भागीदारी सुनिश्चित करता तो निश्चित रूप से समाज और राष्ट्र के विकास हैत संगे संग गीत नाद सुनब से अपन सबके जीवन में खुशहाली के विकास है हाँ मन प्रसन्न हैत गदगद हैत आ तखन और दुगुना उत्साह ऊर्जा के संग काज करो की गीत सुन लीजिए
1: तो सुनल जाए

0: अखन हमरा लोकनि बोध नारायण सिंह के गौल ई भगवती गीत सुनलहुँ।
1: वास्तव में छै से अहाँ के मानव जीवन जे यऽ सतो भाई ओ नाना प्रकार के परेशानी तरह तरह के परेशानी संकट से घिरल जीवन अछि, तऽ एहि मे छै से एहि संकट से जे पार हैब ओ तो माँ भगवती के आशीर्वादे से पार हैब लेकिन आ जँ हुनक आशीर्वाद रहत आ अपन छै से अहाँ के उचित कर्म रहत तो निश्चित रूप से ओहि संकट से पार हैब। आ संकट से घबरेबाक नहीं चाही, किया तऽ संकटे से छै से अहाँ जूझ के लड़ के मानव के चरित्र में व्यक्तित्व में निखार होइ
0: छै। ओहिके लेल संघर्ष केनाइ बड बेसी आवश्यक अछि। जीवन जे अछि से संघर्षमय ही अछि, तऽ हमरा लोकनि के संघर्ष कखनो नहि छोड़बाक चाही। अपन जे कोनो कठिनाई अछि ओकरा दूर करय में अपने प्रयास करबाक
1: चाही। देखियौ छै से अपने प्रयास नहि करबै तऽ भगवानो अहाँ के छै से हाथ थामे से इनकार कऽ देता, बुझलहुँ। किया तऽ अपन अपन प्रयास जखन करबै आ तखने छै से भगवानो साथ दै छथिन, तऽ अपन प्रयास तऽ सबसे पहिने जरूरी छै, बुझलहुँ। आ जखन छै से अहाँ प्रयास करै छियै तऽ प्रयास करै वाला के कखनो हार नहि होइ छै, बुझलियै। प्रयास के अहाँ के बेसी या कम फल भेटबे करै छै निश्चित रूपे, तऽ प्रयास निश्चित रूप से करी। ओना ही प्रयास करी बरसात के मौसम, बरखा के जो मौसम या अब गर्मी से देखियो राहत भेटल हम एकदम अचारू दिस एकदम समय लिए अहाँ का हरियर कचोर वातावरण है। देखियो गाछ वृक्ष के पात सब एकदम छै से हरियर कचोर भ गेल
0: हँ, पात पर हरियर हाँ
1: आ पात पर पानि के छै से बूंद, बरखा के पानिक बूंद कते सुंदर लागैए। हाँ मुदा अ मौसम में स्वास्थ्य के रक्षा केने बड़ आवश्यक है, क्या तो तरह तरह के जो कीड़ा मकोड़ा है आ तरह तरह के समझ लीजिए अहाँ के परजीवी ओ संक्रमण करे लेल अहाँ के एकदम छै से ओ आक्रमक रहिए, तो अइ लेल आवश्यक है सतो भाई कि बरखा के मौसम में स्वास्थ्य रक्षा लेल पानि के अहाँ के उबाल के या फिल्टर कैल पानी पी। पहले तो अहाँ के जो फिल्टर वाला फिल्टर में पानि दो दियो, फिल्टर में जे छनल पानि निकलत ओकरा

0: उबालू
1: उबालू
0: तखन छै से सुषुम कऽ कऽ पीबू आ बाहर के जे अहाँके जे ठेला तेला लागल रहैये तो बाहर में के भोजन नहीं करी कहते पर माछी कीड़ा मकोड़ा दस तरह के धूल धक्कर पड़ित रहैये संक्रमण। अच्छा एक आन मौसम में तो अहाँके सलाद जना गर्मी के मौसम छै खीरा के या छै से प्याज के कोनो कच्चा सलाद छै से फायदा करे छै लेकिन बरखा के मौसम में कच्चा सलाद खाए से बची
1: हाँ
0: किया तक कच्चा जे चीज या ओय में अहाँके कीड़ा मकोड़ा आ दस तरह के परजीवी के संक्रमण होय के खतरा है आ मच्छर के पनपे से रोके के लेल घर के लग पास में पानी के जमा नहीं होवा दी बुझलहुँ आ घर एकदम आ जैठमा पानी या कीचर या तो ओहिठमा डीडीटी पाउडर अहाँके निश्चित रूप से ओकर छिड़काव करते रहे
1: संगे व्यक्तिगत स्वच्छता है ओहि पर विशेष ध्यान देबाक चाहिए जना कि खाय वाला जे किछ है साग सब्जी चाहे अति पत्तेदार सब्जी है तो इस सब के धो के तकर बाद एकर उपयोग
0: करबाक चाहिए एकदम टटका भोजन करी आई मौसम में बासी भोजन जे करो तो बीमार पड़ जाए आ गरम एकदम पाकल भोजन करबाक चाहिए अपन डाइट में अहाँ का अपन भोजन में नेबू और आंवला जेहन विटामिन सी से भरपूर फल शामिल करी जे अहाँ के इम्यूनिटी के बढ़ावे या
1: संगे मच्छर से बचाव के लेल जना भ गेल डेंगू भ गेल मलेरिया भ गेल ऐ से बचाव के लेल घर के जे आसपास है ओहि में पानी इकट्ठा नहीं हुआ देबा के चाहिए सांझ के समय में खिड़की दरवाजा जे है ओकरा बंद कर देबा के चाहिए संगे सूतक काल में मच्छरदानी के प्रयोग अवश्य
0: करबा के चाहिए घर से बाहर निकले से पहिने या खाए से पहिने हाथ का साबुन और जल से निक जना धोली क्या तो भेजला के बाद तुरंत बाद साफ पानी से नहाली आ मच्छर से बचाव लेल अहाँ कहबे के लिए कि डेंगू मलेरिया से बचे के लिए पूरा बाजू के कपड़ा पहनी मच्छर भागे वाला क्रीम के उपयोग करी और सुते समय में मच्छरदानी के उपयोग करी आ त्वचा और पैरक सुरक्षा करी बारिश के गंदा जे जल होइया ओहिमे जाय से बची ऐसे इन्फेक्शन के खतरा रहिया आ फंगल इन्फेक्शन से बचबा के लेल पैर और जूता के हमेशा सूखल राखी
1: संगे अहाँ के एहन सब्जी के उपयोग करी जाय में विटामिन बी सी प्रोटीन ई सब भरपूर मात्रा में
0: भरपूर मात्रा हाँ
1: ओहन के प्रयोग करबा के चाहिए संगे सब्जी में अखन कीड़ा मकोड़ा देखबे जे बड़ बेसी लाग जाते पत्तेदार खास कर के जे साग सब्जी है ओहि में कीड़ा के प्रकोप बेसी होते तो एहन समय में हमरा लोकन के चाहिए जे ओकरा पहिने बढ़िया से साफ क दी तकर बाद ओकरा उबाल के बढ़िया से तकर बाद ओकरा बनेबा के चाहिए संगे बरसात में जे धियापुता छै बुजुर्ग छै खास कर के उनकर देखभाल केनाय बड़ बेसी आवश्यक भ जाते डेंगू या वायरल बुखार के शुरुआती लक्षण यदि देखाई पड़े तो तुरंत अहाँ के जे चिकित्सक छै उनका से सलाह ल के परामर्श ल के आ तकर बाद उचित उपचार जे है ओहि में लाग जेबा
0: कते युवा लोकन छै कि देखबे कि बरखा बरस रहल अछि तो एकदम जोश में उत्साह में निकल जाता कि बरखा के जल में नहा ली
1: बिना छते लेने चले
0: बिना छते लेकिन एखुनका जे बरखा के जल जे अहाँ के माथा पर भिजत पड़त तो ऐसे अहाँ के बुखार होकर डरिया सर्दी होकर डरिया आ तरह तरह के संक्रमण भ सकैया तो अति उत्साह से बची आ आदि आ लहसुन के सेवन करी जे कनी देह के गर्मो राखत और देख के अहाँ के मानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकास करिए और स्वच्छता पर एकदम बेसी से बेसी ध्यान दी
1: छे घर के आसपास अपना लोकन के स्वच्छ रखबा के चाहिए संगे बासी भोजन भ गेल चाहे अहाँ के बैक्टीरिया सब पनप वाला जो पत्तेदार सब्जी भ गेल एकरा निक जना धो के खेबा के चाहिए संगे अगल बगल में स्वच्छता बना के रखबा के चाहिए साँझ के समय में आ सुबह के समय में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देबा के चाहिए नाला जे हुआ ओहि में जो मच्छर बेसी पनपत हुआ तो ओहि के लेल तुरंत अहाँ के कोनो ने कोनो जे छिड़काव ओकर होइत अछि मच्छर पनप से रोकबा के लेल तो ओकर छिड़काव करबा के चाहिए संगे अहाँ के यदि छिड़काव वाला रासायनिक दवाई नहीं अछि तो मटिया तेल जो होइत अछि ओकर प्रयोग सेहो कयल जा सकै
0: हां संगे संग नियमित व्यायाम करी आ साफ सुथरा कपड़ा पहनी
1: संगे चाय सूप गरम पेयजल पदार्थ के बेसी से बेसन अखन सेवन कयल जा सकैत अछि गर्म चाय हमरा लोकनि देखते छियै सुबह शाम हुए चाहे अहाँ के दुपहरिया हुए तो हमरा लोकनि ओकर प्रयोग करै छी तो ऐसे की होइत अछि सर्दी भेल बुखार भेल ओहिसँ राहत भेटैत अछि
0: आ जल पीबैत रहबाक चाही प्यास नहियो लागल रहै तो जल पीबैत रहू हाँ हाइड्रेटेड रहू अहाँ कम से कम 8-10 गिलास फिल्टर वाला पानि या जैसे उबलल पानि अहाँके पीबाक चाही

0: आ संतुलित आहार लिया, सेब भेल, नाशपाती भेल, अनार जेहन मौसमी फल के संग संग करेला और सजमनि जेहन तीमन तरकारी शामिल कला से स्वास्थ्य लाभ भेटे आ पाचन में सहायता सेहो भेटे। तो ई सब जे गप के ध्यान में रखब, स्वच्छ रहब, आरोग्य रहब, आ जखन आरोग्य रहब, निरोग रहब, हाँ तखन गीतनाद सुने के तो और आनंद आयत। तो किया ना हम सब एक गीतनाद सुनी
1: सुनल जाए।

0: शिव हो उतरब पार कौन विधि।
1: शारदा सिन्हा के गौली गीत सुनलहुँ, बहुत नीक गीत छल, श्रोता लोकन के नीक लागल हेतन।
0: देखू
1: जो अखन जो गर्मी के समय चल रहा है ओहिमे तपत जो धूप अछि ओहिसँ किछु राहत भेटैत अछि, जखन कि झमझम बारिश भऽ जाइत अछि। लेकिन बदलैत जे मौसम अछि एहिमे शरीर के ध्यान रखनाइ बेसी आवश्यक भऽ जाइत अछि, स्वास्थ्य के खास कऽ
0: कऽ। मानव शरीर जे अहाँ स्वस्थ रहब आरोग्य रहब तखने न छै से कोनो काज अहाँ करब आ तखने अपन जीवन के सार्थक कऽ सकै छी। तऽ एहि लेल आवश्यक अछि कि एकदम सजग रही, साकांक्ष रही, कपड़ा लत्ता से लऽ कऽ आ खान पान तक एकदम स्वस्थ राखी।
1: मानसून आबो से पहिने बहुत रास परेशानी सेहो आबि जाइत अछि, एहि के संग जना कि खांसी भेल, जुकाम भेल, पाचन संबंधी समस्या भेल, ओ सब एहि के साथ भऽ जाइत अछि। संगे अहाँके मलेरिया भऽ गेल, डेंगू भऽ गेल, टाइफाइड भऽ गेल, ई सब बीमारी के खतरा बढ़ जाइत अछि। तऽ एहन मौसम में, बदलैत मौसम में हमरा लोकन के स्वास्थ्य के विशेष कऽ कऽ ध्यान रखबा के चाही। एहिमे जे अहाँके उचित जे उपचार अछि ओकरा केनाइ बड़ बेसी आवश्यक भऽ जाइत अछि। जेनाकि सड़के के अहाँ देखू तऽ सड़क के जे बाहर अहाँ कोनो कचरा फेंक देलियै ओहिसँ अहाँके बैक्टीरिया पनपेतै, संक्रमण पकबै, ओहि के संग अहाँके मच्छर बेसी।
0: अपन जिम्मेवारी के बुझबा के चाही मनुष्य के, बुझलहुँ कि नहि। आ दोसर गप ई अछि कि एकटा घरेलू हम अहाँके अथी बताएब, नुस्खा बताएब छै से कि भोर मे जे फिल्टर के पानी जल या ओकरा उबाइल कऽ ओहिमे तेजपात दऽ दियौ आ तेजपात दऽ कऽ ओकरा उबाइल दियौ आ उबाइल कऽ फेर ओकरा सुसुम कऽ कऽ ओहिमे 5 बूंद नेबो रस दऽ कऽ छै से आ ओ पीबू आर चाय जे बनाबू ओहिमे आदि और तुलसी दऽ दियौ, बुझलहुँ। आदि तुलसी वला जे चाय या ओ जे पीबै छी तऽ कोनो प्रकार के संक्रमण से बरसात के मौसम में बचल रहब और एकदम आरोग्य रहब और मन प्रसन्न रहब, बुझलहुँ। ताही के संगे अहाँ के जे गाम घर के समय अछि ओ सम्पन्न भऽ रहल अछि। अब हमसब खेती पथारी के कार्यक्रम खेती गृहस्थी दिस चली, तऽ खेती गृहस्थी कार्यक्रम में किसान भाई लोकनि के हार्दिक स्वागत अछि।
1: बहुत बहुत स्वागत हमरो
0: तरफ। केना की खेती बाड़ी चल रहल छै सत्तू भाई से कहू।
1: जे हमरा लोकनि तऽ रंग बिरंग के खेती पथारी करै छी, जाहि मे भऽ गेल अखन धान के रोपनी, बिया गिरेनाइ, ई सब काज चल रहल अछि। तऽ एहि मे जोर शोर सँ किसान भाई लगले छथि, संगे एहनो खेती पर विशेष ध्यान देबा के चाही जे खास कर के औषधीय हुए। ओहि मे अहाँ के तुलसी भऽ गेल, सर्पगंधा भऽ गेल, बहुत रास खेती होइत अछि,
0: अश्वगंधा भेल,
1: आद भऽ गेल, तऽ ई सब के खेती पर विशेष ध्यान देबा के चाही, कियाकि ई सब खेती अपना सब के क्षेत्र में बहुत कम जगह कयल जाइत अछि। लेकिन एकर यदि व्यापक पैमाना पर वैज्ञानिक ढंग से यदि खेती कयल जाए तो इहो औषधीय जे खेती अछि एहिसे बेसी से बेसी लाभ कम।
0: यौ एकर बाजार मांग बहुत जबरदस्त, आब तुलसी के औषधीय मांग तो छले, हाँ आब एकर व्यावसायिक खेती जे भऽ रहल यऽ एहिमे एकर बाजार मांग बड़ जबरदस्त अछि। आब तुलसी के पात से तरह तरह के अहाँके अखैत बनि रहल यऽ।
1: आ एकरा अहाँके

0: देखियो अब एकर बेहद माने कम लागत में लाखों का मुनाफा दे वाला ई बेहतरीन औषधीय फसल है प्रति एकड़ 15,000 से लेकर 18,000 का शुरुआती खर्च के संग संग अहां ऐसे सालाना 3 से 4 लाख 4 लाख धर कमा सके छी। एकर पात बिया और लकड़ी तीनू बाजार में आसानी से बिके ये, लेकिन मुदा तुलसी का जे अहां का तुलसी के लिए गर्म और समशीतोष्ण जलवायु चाहिए, जे सबसे नीक होया उत्तम होया कि जहां जैठम तापमान अहां के 20 डिग्री सेल्सियस से लोक 30 डिग्री सेल्सियस के बीच हुए आ जे एकर बाव का समय है और जलवायु है एकरा मुख्य रूप से बारिश के मौसम उगाल जाइए आ गाछ तैयार करे के लिए मई जून में नर्सरी लगा दिल जाइत है और मानसून के समय जुलाई अगस्त में मुख्य खेत में एकर रोपाई कैल जाइए।
1: संगे एकर बिया द्वारा नर्सरी तैयार क के जखन पौध थोड़े पैघ भ जाए तखन एकर रोपाई करबाक चाहिए। अइ खेती के लेल बलुई दोमट माटि जाहि में जल निकासी के नीक व्यवस्था हुए ओहन खेत के चुनाव करबाक चाहिए।
0: संगे खेत के 2 बेर 3 बेर गहीर जोताई क माटि के भुरभुरा बना दी। खेत में रासायनिक खाद के बजाय 15 टन प्रति हेक्टेयर के दर से सरल गोबरक खाद या बर्मी कम्पोस्ट मिला भी आ एकर बाद लगभग 3 सेंटीमीटर उचगर उठल क्यारी तैयार करी आ बिया रोपण के जे प्रक्रिया है सतो भाई बाव के समय देखो 2 प्रकार के मुख्य तुलसी अपना सब को तरफ हो गया रामास तुलसी जे हल्का लाल हो गया और श्याम तुलसी
1: जे उजर हां
0: जे अहां के एकदम कारी हो गया
1: हां
0: चैन कर सके तो नर्सरी लेकिन अइमे जे श्याम तुलसी है वो बेसी लाभदायक नर्सरी में तैयार कैल गेल गाछ जखन 6 सप्ताह के भ जाए ओइमे 5-6 गो पात आब जाए तखन ओकर रोपाई करी आ गाछ के बीच के जे दूरी राखी वो लगभग 45×45 सेंटीमीटर आ 50×50 सेंटीमीटर बुझलो आ रोपाई का तुरंत बाद हलुक पटौनी निश्चित रूप से कर देबा के चाहिए।
1: संगे एहन खेत के चुनाव करबा के चाहिए अति गोपी भाई जेमे भरपूर धूप लागत आबत हुए
0: रौद लागत
1: संगे 6-8 घंटा धूप लागे ओहन खेत के चुनाव क के तुलसी के खेती करबा के चाहिए। संगे नर्सरी तैयार क के सही समय पर जना कि यहां के फरवरी मार्च भ गेल संगे जुलाई जखन मानसून से पहिने नीक मानल जाते छ एकर खेती तो एकरा लेल सबसे पहिने नर्सरी तैयार क ली आ तकर बाद जखन थोड़े पैघ भ जाए गाछ तकर बाद ओकरा खेत में रोपाई करबा
0: एकटा गप के ध्यान राखी सतो भाई कि तुलसी के फसल में कोनो प्रकार का रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग नहीं कैल जाते फसल के जरूरत के अनुसार सप्ताह में एक बेर जल दौ देबा के चाहिए मुदा कटाई से 10 दिन पहले पटौनी अहां के निक जना रोक देबा के चाहिए आ कमौनी क के खेत के हमेशा खर पात से मुक्त राखी आ पैदावार कमाई जे तुलसी के फसल के 70 से 75 दिन में पहली बेर काटल जा सके 1 एकड़ से लगभग 2.5 क्विंटल बिया और भारी मात्रा में पात प्राप्त हुई एकर बिया जे या वो 300 से 400 रुपये प्रति किलो बुझलिए और सूखल पात जे या वहां का तेल कंपनी सब या कर तेल सोझे निक निक कंपनी सब आयुर्वेदिक कंपनी कहाँ बेच सके छी एकर लकड़ियों छे से धार्मिक स्थल वृंदावन मथुरा में माला बनावे के लेल प्रति जैसे अहां के 300 किलो तक बिके तुलसी के माला जे होय छे तुलसी के लकड़ी से बने छे।
1: हां तो संगे अहां के बिया के मात्रा जे से 1 हेक्टेयर खेत के रोपाई के लेल लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम बिया पर्याप्त होते छे तब बिया के पहिने नर्सरी में गिरेला के बाद पौध निक जना तैयार भ जाए संगे सुखा नहीं अइ के लेल मेड़ पर मेड़ बना दी और ओइ के ऊपर में रोपाई करबा के चाहिए आ जल निकासी के नीक व्यवस्था हुए ओहन खेत के चुनाव करबा के चाहिए किसान भाई के।
0: आ देखियो तुलसी के जे कीमत है ओकर हिसाब पात बिया लकड़ी का ओकर गुणवत्ता पर निर्भर करिए थोक बाजार में तुलसी का सुखल पात लगभग 80 रुपया से 150 रुपया प्रति किलो तक बिके ओहिठाम तुलसी के बिया के भ जाइए ओ 300 से 400 रुपये प्रति किलो होते
1: संगे साँझ के समय जखन होइत अछि तखन ओकरा नर्सरी से निकाल क आ जे मेड़ बनेलौ ओहि में लगेबा के चाहिए। ई नहि जे रौद उगल अछि तखने हमरा गाछ उखाड़ि के रोपि देबाक चाहिए साँझ के समय में नीक मानल जाइत अछि आ संगे पटौनी जे अछि से मौसम के अनुरूप आवश्यकता अनुरूप करबाक चाहिए जेना मानसून के मौसम अछि तऽ यदि पानि नहि भऽ रहल अछि तो 7 से 10 दिन के अंतराल पर पटौनी करबा के चाहिए संगे बरखा ऋतु में आवश्यकता अनुसार पटौनी करबा के चाहिए।
0: तो जो इस सब गप को ध्यान में रखो तो तुलसी के जे अहां के फसल है

0: ओ खूब निक है,
1: निक है
0: आज कहबे कलू के बाजार मांग जबरदस्त है तो बाजार में बेच कर निक कैचा कमायब हाँ आ जखन कैचा लग में रह तो मन एकदम गदगद रह आ मन जब गदगद रहे गीत सुने में और मन लागे हाँ तो किया ना हम सब एक गीत सुनी
1: सुनल जा

बन गेले बलमा किसान। वास्तव में जखन अहाँ के बलमा किसान बन जाइए तखन देश के उत्पादन होइए आ किसाने तो अन्नदाता छथि।

0: जे देश का छै से अहाँके भरण पोषण करै छै देश के लोगक का, तऽ ई शारदा सिन्हाके स्वरमे हमसब पार्वती मिश्राके स्वरमे सुनै छलहुँ, बड़ नीक गीत छल। आ देखियौ छै से ओनाही अहाँके अछि कि जे मौसमके अपना सबके जे पूर्व सूचना भेट जाइए तऽ एहिके आधार पर खेती बाड़ी के काज केनाइ आसान भऽ जाइए।
1: तऽ सबसँ पहिने किसान भाइ के समसामयिक जे सुझाव छै
0: मौसम
1: सूचना तऽ ओ बता दिअ।
0: हाँ, तो देखियौ ग्रामीण कृषि मौसम सेवा पूसा समस्तीपुर आ भारत मौसम विज्ञान विभाग के दिस सँ जारी 8 जुलाई से 12 जुलाई 2026 धरि मौसम पूर्वानुमानक अनुसार पूर्वानुमान अवधि के दौरान उत्तर बिहार के बहुत रास स्थान पर 10 से 12 जुलाई के लगपास मेघ गर्जन वज्रपात आ तेज झोंकादार हवा चलवा के संभावना है। पूर्वानुमान के अवधि में बेसीतर दिन में आकाश में हलुक से मध्यम मेघ देखल जा सकैए आ परंच 10 से 12 जुलाई के बीच घनगर मेघ लग सकैए। मुजफ्फरपुर शिवहर सीतामढ़ी मधुबनी पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण जिला के बहुत रास स्थान पर 11-12 जुलाई के बीच नीक वर्षा भ सकैए। आन जिला में पूरा अहाँक पूर्वानुमान के अवधि में नीक वर्षा के संभावना नहीं अछि, हल्क वर्षा भ सकैए, एक दू स्थान पर मध्यम वर्षा हेबाक संभावना सेहो अछि। एहि अवधि में अधिकतम तापमान 34 से 37 डिग्री सेल्सियस आ न्यूनतम तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबाक अनुमान अछि। भोर में सापेक्ष आर्द्रता 80 से 85% आ दुपहरिया में सापेक्षिक आर्द्रता 45 से 50% के बीच रहबाक संभावना अछि। आ पूर्वानुमान अवधि में हवा मुख्यतः पूर्वी दिशा से 12 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चलवा का अनुमान
1: है। छल मौसम पूर्वानुमान। आप किसान भाई के समसामयिक सुझाव जे छन वो कह दियन जे धान जे छ वो बरखा के कमी के देखत जना कि प्रभात राजेंद्र अछि सरस्वती एवं राजेंद्र भगवती अछि ई सब जे आगात वाला जे किस्म अछि ओकर अहाँ के बुआई कऽ लैत।
0: अच्छा, मध्य जुलाई तक कऽ लेबाक छै।
1: तकर बाद अहाँ के पूर्वा
0: कम वर्षा के स्थिति में
1: कम वर्षा के स्थिति में सीधा बुआई हेतु जे किस्म अछि ओ राजेंद्र भगवती एवं राजेंद्र नीलम उपयुक्त अछि। बुआई से पूर्व बिया के उपचारित कऽ लेबाक चाही। कार्बेंडाजिम 2.0 ग्राम प्रति किलोग्राम के दर से बिया के उपचारित करी संगे 10 से 15 दिन जे अहाँ के पुरान जे नर्सरी अछि ओहिमे समय पर सिंचाई आ निराई गोराई करैत रहबाक चाही। सिंचाई के सुविधा उपलब्ध हुआ पर राजेंद्र नीलम राजेंद्र कस्तूरी एवं राजेंद्र श्वेता एहन मध्यम वाला किस्म जे अछि ओकर रोपाई से किसान भाई के अखन प्रारंभ कऽ देबाक
0: चाही। तिलक खेती में जैठाम वर्षा के कमी के कारण धान के खेती संभव नहीं अछि ओहि उचास जमीन में तिल के वैकल्पिक फसल के रूप में एकर खेती कऽ सकै छी। मध्य जुलाई तक एकर भाव कऽ ली आ बिया के थिरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बिया से ओकरा उपचारित करी आ 30 × 10 × 15 सेंटीमीटर के दूरी पर एकरा बाव करी। अंतिम जोताई के समय कंपोस्ट आ अनुशंसित जे उर्वरक अछि ओकर उपयोग करी
1: करी संगे मोट अनाज जकरा श्री अन्न सेहो कहल जाइत अछि
0: खरीफ मकई
1: ओकरा उचास एवं जल निकासी वाला जे जमीन अछि ओहिमे रोपबाक चाही। जना भेल रागी भऽ गेल राजेंद्र मरुआ भऽ गेल आरयू 8 भऽ गेल आरयू 3 भऽ गेल ई सब जे अनुशंसित किस्म अछि ओकर रोपाई करबाक चाही। संगे राजेंद्र कौनी 1 के बुआई सेहो कयल जा सकै
0: आ खरीफ मकई जे अछि सतो भाई उपलब्ध एखन मृदा अछि माटि मे एखन नमी बनल यऽ तऽ एकर उपयोग करैत बाग एकदम शीघ्र से शीघ्र कऽ ली बुझलहुँ। अंतिम जोताई के समय 100 से 150 क्विंटल FYM के संगे 50 किलोग्राम नेत्रजन 60 किलोग्राम फास्फोरस आ 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के दर से बाग के समय उपयोग करी आ बाग के लेल शक्तिमान 2 शक्तिमान 5 शक्तिमान 6 आ राजेंद्र शंकर मकई 3 किस्मक जे अछि ओ अनुशंसित अछि।
1: संगे राहर जे अछि से उचास वाला जमीन पर अखन किसान भाई के करबाक चाही। धान के विकल्प के रूप में खरीफ राहर जे होइत अछि ओकर खेती अपनेबाक चाही। ओकरा लेल अहाँ के बहार भऽ गेल पूसा 9 राजेंद्र राहर 1 एवं राजेंद्र राहर 2 किस्म के चयन करबाक चाही। बीज के उपचारित केला के बाद अनुशंसित किस्म के उर्वरक प्रबंधन अपना कर तकर बाद जल निकासी वाला जे नीक व्यवस्था हुआ ओहन खेत के चुनाव कर

0: कऽ ओकरा राहरि के बुआई करबाक चाही।
1: आ सूर्यमुखी मे उचास आ नीक जल निकासी वाला जमीन में बाग करी, अनुशंसित जे कम्पोजिट अछि संकर किस्म का चयन करी, अंतिम जोताई के समय FYM नेत्रजन फास्फोरस पोटास आ गंधक का अनुशंसित मात्रा का व्यवहार करी। आ बिया के थीरम कैटकैप टॉप आ 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बिया से उपचारित करी। आ कुसियार जिया जे क्षेत्र में वर्षा बड कम भेल ओहिठाम बसंत कालीन कुसियार के फसिल में आवश्यकता अनुसार पटौनी क खेत में पर्याप्त नमी बना कर राखी, ताकि नमी के कमी से फसिल पर कोनो प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े।
0: संगे कृषि वानिकी जे अछि ओकरा वर्तमान मौसम के परिस्थिति में फलदार जना पौधा अछि तो ओकरा रोपबाक चाही। कृषि वानिकी पौध में रोपण के लेल अनुकूल अखन समय अछि तो एहन समय में ओकर पौधन रोपण कयल जा सकैत अछि। आ दीमक सफेद सूरी या व्हाइट ग्रब एकरा प्रकोप से बचेबा के लेल क्लोरोपाइरिफास 20 EC 5 ml प्रति लीटर पानि में घोल कऽ तकर बाद अहाँ के दर्शक गड्ढा में ओकरा देबाक चाही चाहे उपचारित करबाक चाही।
1: दुधिया जे मशरूम अछि, दुधिया मशरूम के जे किसान अगर इच्छुक छथि तो वर्तमान मौसम में दुधिया मशरूम के खेती कऽ सकै छथि। आ दुधारू पशु के खुरपका मुँहपका जे अहाँ के मौसमी बीमारी भऽ जाइए लंपी स्किन डिजीज आदि रोग से बचाव हेतु एक अही समय पर टीकाकरण करा दी वर्षा के समय में, आ हुनक समुचित स्वास्थ्य एवं प्रबंधन पर विशेष ध्यान दी। आ जै स्थान पर अहाँ के नीक वर्षा भ रहल यऽ ओहिठाम किसान खेत के मजबूत छै से अहाँ के मेहरबंदी कऽ के वर्षा जल के अधिकतम संरक्षण कऽ लेथ, ताकि आवश्यकता पड़ला पर एकर उपयोग कृषि काज में कैल जा सके। तो ई सब गप के ध्यान में रखब तो उपजा निक हैत, आ उपजा निक हैत तो उपजा बेच कर निक कैचा कमा
0: सकै।
1: ओनाही जे अछि अहाँ के गीत नाद जे सुनब तो मन अहाँ के एकदम खनगर हैत, तो किया न हम सब एकटा गीत नाद सुनी।
0: हाँ सुनाल जाए किसान भाई के सुना दियन की।
1: हाँ हाँ

0: हाँ, एखन पूनम कुमारी के स्वर में ये गीत हम सब सुने छलो हाँ, बड नीक गीत छल। आ देखियो छै से सब तत्व भाई, एखन बरखा के मौसम अछि, तई में माल जाल के जो हम सब पोसने छी तो ओहि पर विशेष ध्यान देबा के चाही।
1: हाँ, आवास प्रबंधन पर खास कर के विशेष ध्यान देबा के
0: चाही। जै ठाम बथान अछि ओहि ठाम जल जमाव नहि हुए। हाँ, आ भोर में साँझ में घूर करियो, जल जमाव नहीं हुए। तो अही के संग खेती गृहस्थी कार्यक्रम के समय सम्पन्न हो पड़े, तो खेती गृहस्थी कार्यक्रम से किसान भाई से हम सब आज्ञा ली।
1: आज्ञा ली। नमस्कार गोपी भाई।
0: नमस्कार सत्तू भाई।

यथ खेती गृहस्थी प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

0: जानते हैं आपके द्वारा पॉलिथीन में फेंका गया खाद्य पदार्थ पशुओं की जान ले सकता है। पॉलिथीन में लिपटा बचा हुआ खाद्य पदार्थ पशुओं का साइलेंट किलर बनता जा रहा है। खाद्य पदार्थों के साथ ये पॉलिथीन उनके पेट में जमा होकर पाचन तंत्र को बंद कर देता है, जिससे उनकी मौत तक हो सकती है। पॉलिथीन के कैरी बैग पर लगाए गए प्रतिबंध का पालन करें, उसे खुले में न फेंकें, बचे हुए खाद्य पदार्थों का सही निपटान करें, पॉलिथीन मुक्त समाज बनाएं, पशुधन बचाएं।
1: डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीमावर्ती जिलों को घुसपैठ मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, सरकार सीमांचल के विकास पर दे रही है विशेष ध्यान। प्रदेश में नई टोल नीति लागू। मुख्यमंत्री ने कहा, स्टेट हाईवे पर केवल कॉमर्शियल वाहनों को ही देना होगा टोल टैक्स। भाजपा ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया। उपचुनाव के रणनीति पर चर्चा के लिए 10 जुलाई को पटना में होगी एनडीए की बैठक। और मौसम विभाग ने कल अररिया, किशनगंज, मधुबनी, सुपौल और कैमूर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीमावर्ती जिलों को घुसपैठ मुक्त बनाने की

0: सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री चौधरी आज अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड की हरिपुर पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में घुसपैठ, आतंकवाद और अपराध के लिए कोई स्थान नहीं है।
1: दो चीजों से मैं कभी समझौता नहीं करता हूँ। एक, कोई भी अपराधी हो उससे कोई समझौता नहीं हो सकता है, और दूसरा, ये जो सीमावर्ती इलाके हैं इसमें जो घुसपैठी है इससे भी समझौता हमारी सरकार कभी नहीं करेगी साहब, क्योंकि अपराध को, अपराधी को जाना होगा, बिहार छोड़ना होगा। अपराध के लिए कोई जगह नहीं है साथियों, उसी तरह घुसपैठियों के लिए भी कोई जगह नहीं, बिहार सुशासन के लिए जाना जाता है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सीमांचल के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि फारबिसगंज में अगले वित्तीय वर्ष में एयरपोर्ट निर्माण शुरू हो जाएगा, साथ ही जल्द ही अररिया को मेडिकल कॉलेज अस्पताल की भी सौगात मिलेगी।
1: हम आपको जरूर आश्वस्त करते हैं, इस पूरे जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ से पूरे जमीन की व्यवस्था करके दे दिया है, और हम लोगों ने भी तय कर दिया है अगले वित्तीय वर्ष में यहाँ पर एयरपोर्ट का काम भी शुरू करने का काम हम लोग जरूर करने का काम करेंगे। किसी दिन आएंगे और आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करने का काम करेंगे साथियों।
0: श्री चौधरी ने कहा कि सहयोग शिविर आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। उन्होंने बताया कि इन शिविरों के माध्यम से अब तक 4,53,000 लोगों ने आवेदन किया, इसमें मात्र 27,000 आवेदन ही लंबित हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सहयोग शिविर में लोगों की समस्याएं सुनी और इसके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि प्रदेश की सभी पंचायतों में भी सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। प्रदेश में अब राज्य सरकार के स्वामित्व वाले राजमार्ग, बड़े पुलों, बाईपास और सुरंगों पर टोल टैक्स देना होगा। सरकार ने पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026 की अधिसूचना जारी कर नई टोल नीति लागू कर दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नई टोल नीति के तहत स्टेट हाईवे पर केवल कॉमर्शियल वाहनों को ही टोल टैक्स देना होगा, निजी वाहनों को किसी प्रकार का टोल नहीं देना होगा।
1: कुछ लोग ये प्रचार करने में लगे हैं कि टोल टैक्स लगाने का काम किया जाएगा। टोल टैक्स तो कमर्शियल व्हीकल को लगना ही चाहिए, लेकिन जो परिवार के लोग घूमते हैं उनको जरूर हमारी सरकार रिलैक्स देने का काम करे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टोल टैक्स पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, भारत सरकार के मानक है। बिहार सरकार ने अपने तरफ से जो प्राइवेट गाड़ियां होगी उस पर किसी तरह का टोल टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो कमर्शियल गाड़ी होगी उससे ही टैक्स लेने का काम किया जाएगा।
0: इधर हमारी संवाददाता ने बताया कि अलग अलग सड़कों के लिए वाहनों की श्रेणी के हिसाब से टोल टैक्स का निर्धारण किया गया है।
2: नई व्यवस्था के तहत दो लेन से अधिक और चार लेन से कम चौड़ाई वाले स्टेट हाईवे पर नेशनल हाईवे की निर्धारित दर का 60% टोल लिया जाएगा। चार लेन या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर 100% और 4.5 मीटर चौड़ी मध्यवर्ती लेन वाली सड़कों पर 50% टोल लिया जाएगा। वहीं राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा निर्मित 250 मीटर लंबाई वाले बाईपास और सुरंगों पर भी टोल टैक्स वसूला जाएगा। अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि टोल टैक्स सिर्फ उन्हीं रास्तों पर लागू होगा जहां वैकल्पिक मार्ग की सुविधा नहीं है। टोल की वसूली फास्टैग या अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के माध्यम से होगी। अधिसूचना के अनुसार स्थानीय निवासियों, दोपहिया वाहनों, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहनों, तिपहिया वाहनों, ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर जैसे वाहनों को टोल टैक्स से नियमानुसार छूट का प्रावधान होगा। नियम का उल्लंघन करने पर 3 गुना तक जुर्माना देना होगा। समाचार कक्ष से निधिश्री।
0: भाजपा ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। अभिषेक कुमार भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने अपने ऊपर विश्वास जताने के लिए पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया।
3: मेरे जैसा कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ा खुशी का पल है। आज भारतीय जनता पार्टी हम पर भरोसा किया है, राष्ट्रीय नेतृत्व और बिहार के नेतृत्व पर भरोसा किया है। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी बाकी पूरे कार्यकर्ता

0: फकीरपुर की जनता का।
1: गौरतलब है कि इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता को जबकि जन स्वराज पार्टी ने प्रशांत किशोर को उम्मीदवार बनाया है। जनशक्ति जनता दल ने वीणा मानवी और शोषित समाज दल ने सिकंदर कुशवाहा को मैदान में उतारा है। उपचुनाव के लिए प्रत्याशी 13 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 16 जुलाई है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। पटना में 10 जुलाई को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार समेत एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बताया कि बैठक में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की रणनीति पर विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा।
2: पांचों पार्टी के जिला अध्यक्ष उस मीटिंग में रहेंगे, एनडीए के सारे मंत्री रहेंगे और जो सीनियर लीडर हैं सारे लोग रहेंगे और पर्पस एक ही है, जो सरकार काम कर रही उनसे भी फीडबैक लेना हर एक जिला का, जो सरकार का काम काज कैसे चल रहा है। और उस बैठक में नीतीश जी भी रहेंगे और मेरे ख्याल से पूरा एनडीए का उद्देश्य एक ही है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार चल रही है वो जो हम लोगों ने प्रॉमिस किया उससे ज्यादा करके अगले 5 साल में ये सरकार करके दिखाई।
1: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले एक सप्ताह तक बारिश की अनुकूल परिस्थितियां बनी रहेंगी। विभाग ने कल अररिया, किशनगंज, मधुबनी, सुपौल और कैमूर जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी बारिश का पूर्वानुमान है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के अनेक स्थानों में, उत्तर मध्य एवं पूर्वी भाग के कुछ स्थानों में, जबकि उत्तर पश्चिम भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा राज्य के अररिया, भभुआ, किशनगंज एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सुपौल जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: केंद्र सरकार ने सुपौल से दरभंगा तक पेड़ियामंच और मधेपुर होते हुए नए राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी TPR तैयार कराने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को इस संबंध में पत्र जारी कर जल्द से जल्द TPR तैयार करने और व्यवहार्यता रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपने का निर्देश दिया। देश में E20 पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक जानकारियों के बीच केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि E20 ईंधन पूरी तरह परीक्षण के बाद लागू किया गया है और इससे वाहन मालिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार E20 पेट्रोल का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और प्रदूषण में कमी लाना है। मंत्रालय ने बताया कि विभिन्न तकनीकी संस्थानों और वाहन निर्माताओं के परीक्षणों में E20 पेट्रोल से इंजन पर कोई गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पाया गया। माइलेज में इथेनॉल की कमी ऊर्जा क्षमता के कारण मामूली कमी संभव है, लेकिन वाहन के प्रदर्शन पर इस

0: का कोई बड़ा असर नहीं पड़ता है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि E20 पेट्रोल को लेकर फैलाए जा रहे भ्रामकताओं पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। समाचार कक्ष से बैजू कुमार झा।
1: स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को 24 घंटे रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी की सुविधा मिलेगी। आज पटना में LNJP अस्पताल के निरीक्षण के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार मरीजों को हर आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: हमने कहा है इन्हें कि रेडियोलॉजी जो है सीटी स्कैन MRI वो 24 घंटे होना चाहिए और पैथोलैब जो होता है जो ब्लड टेस्ट होता है उसको भी 24 घंटा होना चाहिए। और समाधान कर रहे हैं हम लोग, पेशेंट को दवा मिलनी चाहिए, खाना मिलना चाहिए, उनका सीटी स्कैन रेडियोलॉजी पैथोलॉजी की सुविधा मिलनी चाहिए उन्हें और उनका जो है डॉक्टर जो है टाइम से ड्यूटी पे रहे वो करें।
1: राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पूर्वी चंपारण जिले के फेनहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कालू पाकर गांव में मोहम्मद कलामुद्दीन नामक एक व्यक्ति के घर पर छापेमारी की है। जांच

0: समाधान कर रहे हैं हम लोग। पेशेंट को दवा मिलनी चाहिए, खाना मिलना चाहिए, उनका सीटी स्कैन रेडियोलॉजी पैथोलॉजी की सुविधा मिलनी चाहिए उन्हें, और उनका जो है डॉक्टर जो है टाइम से ड्यूटी पर रहे वो करें।
1: राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पूर्वी चंपारण जिले के फेनहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कालू पाकर गांव में मोहम्मद कलामुद्दीन नामक एक व्यक्ति के घर पर छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने उससे लगभग 5 घंटे तक पूछताछ की। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहम्मद कलामुद्दीन पर युवकों को झांसा देकर कंबोडिया भेजने का आरोप है। इस मामले में उसे 13 जुलाई को पटना में पेश होने का निर्देश दिया गया है। दरभंगा जिले के पतौर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंचल नगर गांव में एक निर्माणाधीन चारदीवारी के पास बम विस्फोट हो गया। धमाके में 2 लोग घायल हो गए, जिनका डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेगूसराय जिले के मठियानी थाना क्षेत्र अंतर्गत ढाला सिंहमा के पास पुलिस और डीआईयू की टीम ने एक चारपहिया वाहन से 927 ग्राम स्मैक के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र के मधुबन स्थित एक किराना दुकान से पुलिस और एसटीएफ की टीम ने 30 लाख रूपये मूल्य के मादक पदार्थ चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पटना के हाथीदा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 कार से 1 क्विंटल गांजा बरामद कर 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं गया जिले के डेल्हा थाना क्षेत्र से पुलिस ने लगभग 1 किलो गांजा और 1 पिस्तौल के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पूर्वी चंपारण जिले के हरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सीमावर्ती इलाके से एसएसपी और पुलिस की टीम ने यूक्रेन की एक महिला को गिरफ्तार किया है। वे बिना वैध कागजात के नेपाल जाने की कोशिश कर रही थी। बरौनी रिफाइनरी के समक्ष प्रदर्शन कर रहे मजदूरों पर सीआईएसएफ के जवानों ने लाठीचार्ज किया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। मौके पर सदर डीएसपी आनंद पांडे ने पहुंचकर मामले को शांत कराया। शेखपुरा जिले के कोरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत भंदोसी गांव से पुलिस ने कुख्यात अपराधी बच्चू राम को गिरफ्तार कर लिया है। लोक शिकायत निवारण अधिनियम के कार्यान्वयन में बांका जिले को राज्य भर में पहला स्थान मिला है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीमावर्ती जिलों को घुसपैठ मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, सरकार सीमांचल के विकास पर दे रही है विशेष ध्यान। प्रदेश में नई टोल नीति लागू, मुख्यमंत्री ने कहा, स्टेट हाईवे पर केवल कॉमर्शियल वाहनों को ही देना होगा टोल टैक्स। भाजपा ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया। उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए 10 जुलाई को पटना में होगी एनडीए की बैठक। और मौसम विभाग ने कल अररिया, किशनगंज, मधुबनी, सुपौल और कैमूर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है बेगूसराय जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता विजय कुमार झा।
1: बेगूसराय के कारगिल भवन में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जिले के विधायक, जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान जिले में संचालित विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बेगूसराय के विधायक कुंदन कुमार, तेघड़ा के विधायक रजनीश कुमार, बछवारा के विधायक सुरेंद्र मेहता, जिला अध्यक्ष राजीव वर्मा, मंडल अध्यक्ष तथा बड़ी संख्या में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सम्मेलन को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी संबोधित किया।
2: नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी ने दो निशान, दो प्रधान, दो विधान को हटा करके एक देश, एक निशान, एक प्रधान, एक विधान को स्थापित किया। ये आज उनका बलिदान बेकार नहीं गया। आज भारत फिर से सांस्कृत राष्ट्रवाद का केंद्र बन करके दिनकर की इस कप्ता को मोदी पूरा कर रहे हैं।
1: बरौनी जंक्शन पर अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। कवि गुरु एक्सप्रेस से लगभग 25 लाख रुपए की हेरोइन बरामद की गई। इस मामले में दो महिलाओं सहित चार तस्करों को गिरफ्तार किया गया। खोदावंतपुर प्रखंड में इस वर्ष खरीफ मौसम के दौरान 1250.30 हेक्टेयर भूमि में धान की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कृषि विभाग ने पंचायत बार लक्ष्य तय करते हुए किसानों को समय पर बिचड़ा तैयार करने और वैज्ञानिक पद्धति से धान की खेती करने के लिए प्रेरित किया है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA की जिला इकाई ने प्रख्यात चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर BC राय की जयंती डॉक्टर्स डे के रूप में मनाई। कार्यक्रम में बरौनी रिफाइनरी के कार्यपालक निदेशक सत्य प्रकाश, सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार और IMA के पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर चिकित्सकों को सम्मानित किया गया तथा डॉक्टर BC राय के योगदान को याद किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जिला इकाई ने पोखरिया स्थित चित्रगुप्त सामुदायिक भवन में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती मनाई। इस अवसर पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय जनता दल ने कंकोल स्थित प्रेक्षागृह सह आर्ट गैलरी में अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मोहित यादव ने की। इस अवसर पर पूर्व MLC डॉक्टर तनवीर हसन सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बरौनी जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा बल ने दो नाबालिग सगी बहनों को सुरक्षित संरक्षण में लेकर बाल कल्याण समिति को सौंप दिया। दोनों बहनें परिवार से बिछड़ गई थी। जिले में मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। वर्षा होने से मौसम सुहावना हो गया है। मकई सहित खरीफ की अन्य फसलों को लाभ पहुंचा है, जिससे किसानों में खुशी है। 4 जुलाई को जिले के सभी सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमें विद्यालय छोड़ चुके बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने, सरकारी योजनाओं की जानकारी देने तथा अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया गया। इधर जीरो ऑफिस डे अभियान के तहत राज्य से प्रखंड स्तर तक अधिकारियों ने सामुदायिक संस्थाओं का भ्रमण कर उनके कार्यों का मूल्यांकन किया। अभियान का उद्देश्य जमीनी स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। और मधुरापुर दक्षिण टोला में अग्निकांड से प्रभावित 54 परिवारों के बैंक खातों में 8,000 रुपए की सहायता राशि भेजी गई है। महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित 14वीं जूनियर सब जूनियर पेंचक सिलाट चैंपियनशिप में बेगूसराय की सुप्रिया राज ने स्वर्ण पदक और साक्षी राज ने कांस्य पदक जीता है। सुप्रिया राज का चयन एशियन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है।
0: अभी आप सुन रहे थे बेगूसराय जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता विजय कुमार झा।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। वक्त हो चला है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म अपनापन का यह गीत लता एवं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे आंधी फिल्म का यह गीत किशोर कुमार एवं लता मंगेशकर की आवाज़ में। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म आराधना का यह गीत किशोर कुमार एवं लता मंगेशकर की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर एवं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म आराधना का यह गीत। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त तो होता है। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार।

श्रोतागण नमस्कार। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहारक आजुक अंकक संग हम नीतू आधा घंटा धरि एहि कार्यक्रमक माध्यमे अहाँ सबसँ गप करब। आ गप एहन ओहन नहि, एकदमसँ सार्थक गप। रौदक धाहीसँ कनिक आफियत भेल तऽ आब सब काज करबामे कनि मोन लागि रहल अछि। बरखाक बुन्न पड़िते अपना सब कतेक हर्षित भऽ जाइ छी, अपन प्रकृति के हृदय सँ आभार व्यक्त करै छी। एतेक मोन बेकल छले जे की कहू, मोन एकदम सँ औल बौल भेल छले। बुझाय छले कतऽ जाउ, की करू, एहन मोन एकदम सँ तंग तंग भेल छले गर्मी सँ, जे सदिखन आकाशे दिस टकटक्की लगेने छलहुँ जे कखन बरखाक बुन्न पड़त आ मोन एकदमसँ आराम भेटत ओहिसँ। आ कोनोटा काज बुझियो।

हाँ तऽ अखन कुमकुम झा के स्वर में ई देवी गीत सुने छलहुँ हैं। तो जखन अपना सब संकट में रहे छी, कोनो कष्ट में रहे छी, समस्या में रहे छी, तऽ देवीय देवता अपना सब मोन पड़े छथि आ अपना सब कतेक रास कुबला पाती कऽ लै छी जे मोन एकदम सब व्याकुल भऽ जाइत अछि जे कोना एक कष्ट सँ निवारण हैत। तैं वरदान भगवती से मंगे छियनि आ निश्चित रूप से माँ के आशीष अपना सबके संग रहैत अछि आ ओहिसँ जीवन में सब कठिनाई के केहनो कठिन से कठिन बेर के अपना सब सामना कऽ लै छी। बड दिन से अपन सबक जे मिथिलाक भूमि अछि, माँ जनक नंदिनी सीता की भूमि अछि, बड पवित्र भूमि अछि आ अपना सबके ई सौभाग्य भेटल जे एहि धरती पर अपना सब एहि पृथ्वी पर एलहुँ आ एहिठाम जे कला एहिठामका जे कला अछि ई सांस्कृतिक दृष्टिसँ सबहक लेल उदाहरण आ असाधारण रहल अछि। कतौ चलि जाउ तऽ मिथिलाक जे ई संस्कृति अछि बड्ड बेसी एकरा अपना सब बहुत पैघ आदर्श रूपमे देखैत एलहुँ अछि। एतऽ कतेको विद्वान आ विदुषी लोकनि भेली जे अपना सबके सदिखन प्रेरणा भेटैत रहल अछि। एतुका असाधारण लोक चित्रकला शैली निरंतर पल्लवित आ पुष्पित होइत आबि रहल अछि। स्त्रीगण सब द्वारा बनाओल जायवला ई विलक्षण कला मिथिलाक सांस्कृतिक आ कलात्मक अस्मिताक पहचान बनि चुकल अछि आ बहुतो गोटे बहुतो स्त्रीगण लोकनि एहि क्षेत्रमे एकरा व्यावसायिक रूपमे सेहो अपना लेने छथि आ आगू बढ़ि रहल छथि। आ जखन अपनासभ कोनो खिस्सा पिहानीके गप करै छी

0: ओहिमे खिस्सा पिहानी अपना सबके अपन दादी नानी से सुनल खिस्सा बड्ड मोन पड़ैत अछि। आब तऽ ओ समय नहि रहल, किएक तऽ आब जे छै से तकनीकी युग आबि गेलै। आब तऽ अपना सब बेसी समय मोबाइलमे लागल रहैत छी, तऽ आब कहाँ ओ समय अछि। मैथिली कथाक विकासमे कतेको एहन विशिष्ट पत्रिका सब प्रकाशित भेल जे सबहक लेल ओ मार्गदर्शकके रूपमे ओ काज केलक। मैथिली साहित्यमे कथा लेखन एहन विधा अछि जे समाजमे घटित घटनाके रोचक ढंगसँ तेना प्रस्तुत करैत कयल जाइत अछि जे पाठकक हृदयमे ओ एकदमसँ स्थापित भऽ जाइत अछि, ओ ओकर हृदयके झक झोड़ि दैत अछि। सौ हृदयके मोमसँ दृश्य पिघलेबा लेल एकदमसँ समर्थ होइत अछि। आ जखन ओ भाव मोनमे अबैत अछि तऽ होइत रहैत अछि जे वास्तवमे एहिसँ कोना निकलल जाय। तऽ श्रोतागण, आप किएक नहि जखन अपना सब ई चर्च केलहुँ तऽ अपनो सब एक गोट कथा सुनि लै छी। कामचाम कथाकार छथि डॉक्टर नीता झा, तऽ सुनी अपना सब ई कथा।
1: सोचब अछि जे स्त्रीके घर परिवारसँ कहियो कनियो पलखैत नहि होइ छै। बारहो मास 36 दिन ओकर पहिनेसँ बान्हल रहै छै, पूर्व निर्धारित, कतौ कोनो गुंजाइश नहि। एना सोचब अछि ठीक अछि कि सही हैत कि ओकरो लेल सब रहै छै आओर केओ, नहि तऽ घरवला तऽ अपन होइते छै, लड़ैत झगड़ैत रूसैत बौसैत एक दोसरक लेल अवश्य सोचै छै। घरक सब लोकक जरूरतके मुताबिक सब चीज समय पर पूरा दै छियनि आ सब अपना अपनीमे लागि जाइ छथि। एकटा हम रहि जाइ छी घर आँगनक देखभाल, साफ सफैया करू अथवा करबाओ, भानस भात करैत आ सैंतैत उसारैत। बुढ़ा बुढ़ीके हम नहि देखबनि तऽ दोसर के, फेर दुनू बच्चाके पढ़ऽ लेल बैसाबऽ पड़त, नहि तऽ दुनू भाय बहिन खेलाइत रहत आ नहि तऽ आपसमे टोनामनी करत। तो छा सची न हम की छी, तो छा लड़की, लूडो खेल, कैरम खेलो, एह बड्ड काबिल, तो इएह पढ़ै छै आ टी वी पर देखै छै, लड़कियो खेलाइ छै क्रिकेट, हम छी डायना इडुल जी। सचिन आ डायनाके बीचमे नहि पढ़बै तऽ कखन बैट बॉल चलि जेतै आ माथ कपार फोड़ि लेत से बुझबो नहि करबै। एहि गुनधुनमे रही कि हमर एकमात्र संगी दीपाक बाजब सुनबामे आयल। कतऽ छी सनिहाले गृहस्थिन, कने देशो दुनिया देखियो, लोक कतऽसँ कतऽ चल गेल आ अहाँ भनसे घरमे, बाहर बहुत किछु छै। एम्हरे चला दीपा, हम भनसामे छी, तो आ तोहर भनसा घर, तो आइयो नहि अयला पार्लर, पछिलो मास नहि आयल रह, देख अपन बगाए बहिन आ दोसरोके देखी, सब आबै छै मासे मास एकटा तोरा छोड़ि कऽ। आब के एहन छै जे ब्यूटी पार्लर नहि आबै छै, शहरसँ सटल जे गाम छै ओतुको छौड़ी सब आ कनिया मनिया सब आबै छै, नव नव हेयर स्टाइल आ बनल बनायल भौ लऽ कऽ, पेटेसँ नहि जन्मै छै केओ। अपन छाती पर औंठा रोपि कऽ बाजल रह दीपा, हम बना दै छियै आ हमरे सन सन कलाकार बनबै छै, मासे मास केशमे मेहदी लगबै छै कि तऽ रंगै लेल अथवा केशमे चमक आनै लेल, हाथ पैरक मैनीक्योर पेडीक्योर। अच्छा तो ई सब छोड़, तोरा एहिसँ कोन मतलब, तू तो घरसँ बाहर निकालबे नहि आ सब दिन खाली प्लानिंग कर। अच्छा भेलो भेलो, बहुत भेलो, चुप रह, दुनू जीव अपने छै तैं एते भाषण झाड़ै छै, पहिने ई बता जे तोहर नकपिचियाके की भेलो, छौ कि चल गेलो। बड़का समस्या हमरा भऽ जायत गलफुलियाके चल गेलासँ, फेर सब नव लोकके सिखाओ आ काज करो, जोग होइ छै तऽ चलि जाइत अछि, ककरो बियाह भऽ जाइ छै, केओ अपन खोलि लैया, की करबिही, ताक दोसर छौड़ी आ दही ट्रेनिंग तुरते सीख जेतौ। चाह पीबैत काल दीपा कहने रहै, नकपिचियाके माय एक दिन कहने रहै जे ओकर घरवला रोगाह छै, से परिवार चलेबाक भार आ दुनू बेटीके बियाहक चिंता जिम्मेदारी ओकरे छै। नकपिचियाके की हाल, काज तऽ ओ सम्हारि लै छौ ने। हाँ, ओकरे पर तऽ छोड़ि कऽ चल अबै छी तोरा लग कनि काल लए, आब जाइ छियौ, तू काल्हि अयबे ने। दीपाक गेलाक बाद नकपिचिया पर हमर ध्यान गेल। वयस संधि पार करैत एकटा श्याम वर्णी किशोरी समर्थाय दिस बढ़ैत, जकर थोपल थापल मुँह छै आ दीपली सन कपार, बिज्जी सन आँखि आ तीन धूरमे पसरल नाक, फूलल फूलल दुनू गाल, पीचल नाक, सौसे मुँहमे एकेटा आकृति जगजियार छै, ओकर भौंह आ कारी कुछ कुछ

केस पार्लर में काज करत मुदा भौं ओकर अपन छे असली पेटे से ल के आयल नकपिचिया दू बहिन मोनी आ सोनी मोनिक नाम मोनी रहले आ एकर नाम सोनी छे से एकर माय आ एकरा अलावा ककरो मोन नहीं छे बहुत लोग तो जानितो न छे दीपा आ हमहू तो सोनी नहीं कहे छे जकरा जे मोन होय छे ताही नामे एकरा सोर करे छे नकपिचिया गलफुल्ली नकफकड़ी दीपली वाली नेने से सुनत सुनत ओकरा पर कोनो असर नहीं होई छे कोनो राग रोष बिना सबक संबोधन के गर्दन घुमा के अथवा नजर उठा के सकार ले छे आ आदेशक अनुरूप काज क दे छे। दीपा कहियो कहने रहा जे एकर जेठकी बहिन मोनी देख सुनो में नीक छे रंगो गोर छे कोनो तेहन डेरा में काज करे छे जे ओ सब लड़को ताक देने छे लड़का कोलकाता में काज करे छे परिवारक लोक देख सुनने छे फागुन में लड़का एते आ बियाह के नेने चल जेते। दीपली वाली के माय कहब छे जे बड़की के विवाहक बाद एकरा ओही डेरा में काज कर देते जतय एकर बहिन छे एही करार पर विवाह में ओ सब कर्ज देते सुद नहीं लेते। हम कहने रहिए दीपा के जे इहो तो काज करते छे तखन जगह बदलवा के कोन बात ओ ओत कमाई छे ई तोरा ल काज करे छो बेर पर ओकर बियाह भ रहल छे एकरो भ जेते विवाहक चिंता हेते न। दीपा कहने रहा नहीं गलफुल्ली के माईक कहनाम छे जे घर गृहस्थी के काज सीख तखन न बियाह भेला पर घर डिबत केस कटनाय रंगनाय आ हाथ पैर ठोर रंगनाय से फैशन केनाय सीखला से आश्रमक काज नहीं चलते ते घर आश्रमक काज सीखवे ले ओत देते भात दालि रान्हब सीखत रोटी सोहारी पकायत तीमन तरकारी बनेबा के लुरि चाही न। अपन फिकिर में डूबल कहलक दीपा भीड़ नहीं रहे ते हम टुघरल टुघरल चल एलियो जो आर कस्टमर एते तो घुर जात जानक पिचिया छे ता तोरा कौन चिंता छो आराम कर लेना फिर तो तोहर फिरिसानी बढ़वे करतो जा धर ओ छो धरो बड़ होशियार काजो बड़ जल्दी सीख लेलको उहिगर छो ककरो घूरा नहीं देतो सबके बिलमा के रखतो एक रत्ती लोशन आ क्रीम ल के कस्टमरक हाथ में औसा लगते आ कस्टमर खुश। हाँ से बात तो छे ओकरा से सब प्रसन्न रहे छे एक तो ओकर मुँह कान बड़ एंटरटेनिंग छे आ दोसर ओकर सह मिल्लू स्वभाव आ सब से बढ़ के ओकर हंसी सब कम मोह ले छे छै ओकरा में कनियो सुनरताई नहीं मुदा ओकर स्वभाव व्यवहार पर सब लुभा जाए छे ओकरा अलग से 5-10% दे वाली के कमी नहीं छे। रात ओछान पर पड़लो त नकपिचिया मुन पड़ल आन लोग का कोन कथा जे अपन माइये बहिनों कर तिरस्कार करे छे चामक रंग आ मुखाकृति के गोबरक चोत कहे छे गोइठा कहे छे। हम नकपिचिया के कनैत देखने छे एक दिन ब्यूटी पार्लर में दीपा हमर मुँह ठोर पाइब ओकर अंतरक पीड़ा बह लागल रहे हम देखे में अधलाह छी झरकल सन छी तो एमे हमर कोन दोख जो ककरो दोख छे तो भगवानक ककरो गलती छे तो हमर माय बापक रूप रंग भगवानक देन आ जन्म दिलक माय बाप हम कतौ छियै सब में जो हम काली भेलौं हमर बहिन सुन्नर छे ओकर देह हाथ नीक छे तो ओहो जरते आ जेते माटि तर हम कारी खोरी छी नाक पीछल अछि गाल फूलल अछि हम मरब तो हमहू जाब ओही विधि ओ डेरा से काज क के आबे छे तो माय ओकरा कते दुलार करे छे जे भर दिनक थाकल अछि हमर बेटी ओकर देह जाइत पीच दै छे आ हमरा एकटा नीक बोलो न कहिया कहिया जे भर दिन त ऐसन फैशन में लागल रहै छे एहिमे कोन थाकन ओहो कमा के रुपया आनै छे हमहू कमा के दै छी तब केना एना कहै छे हमर माय हमर आत्मा दुखा जाइए। नकपिचिया के दुखनामा में डूबल नींद पड़ गेल कखन आ अही संकल्पक संग जे काल्हि ब्यूटी पार्लर अवश्य जाब से हम ओही दिन भिनसरे से समय बचबैत रहलों आ पहुँच गेलों पार्लर। दीपा पार्लर में झाड़ू लगबैत रह काटल केश जे धरती पर खसल छले तकरा बाहर के समेटैत रह एकटा कस्टमरक मुँह पर पैक लगा देने रहे आ फेसियलक बाद ओकर दुनू आँखि पर तूरक फाहा रहे आ हा हा केहन शीतल लगे हेतै एनाम तो हमरा नींद पड़ जाते दीपा संकेत से बैस कहलक ओ फ्री भेल तो पूछलिए नकपिचिया कत गेलो ओ गेले कत विवाह करो आर कत विवाह ओकर बहिनक विवाह हुआ वाला छले ना आ सेहो सौन में एकरे विवाह भ रहल छे मंदिर में आइए आई मधुश्रावणी के पहिल दिनक पाबनि छे ना लड़का वाला कहलके देवस्थान में दिनक कोन काज गे लड़का कत से तुब खसले देखा सुनी मोनी के भेले आ परिवारक लोग के मोनी पसिन पड़ले ओ सब कह गेले जे लड़का से राय विचार क के खबर क देते लड़का से सब बात विचार केने हेते
सबटा जानकारी लड़का नेने हेतै।

0: आब जाकर अपन बाप के कहलकै जो ओकरा छुटकी पसीन छे। तो कोना बुझलही ई सब बात, के कहलको तोरा? काल्हि साँझ खन जखन घर पहुँचलहुँ तो गलफुल्ली के माय रह बैसल। कहलिए जो ओ तो घर गेल तो बाजल जो अही से काज अछि, अही से भेंट कर अयलहुँ अछि। काज की रहतै, भेंट की करत? वज्र खसा कर चल गेल। ओहो बड़ दुखी रह, कहाँ तो बड़की के ब्याह ठीक भेल रहे आ की से की भ गेल। कनैत कनैत कहलक जे लड़का के कहनाम भेले जो ओकरा इलिम वाली लड़की चाही, परदेश में हुनर काज देते, सुनरता ही नहीं, सो ओकरा काम वाली चाही, चाम वाली नहीं।
1: हाँ तो श्रोतागण, अखन अपना सब एक कथा सुने छलों। कथाकार छली डॉक्टर नीता झा। वास्तव में जखन अपना सब काज करे छी तो काजक प्रधानता बेसी अछि, कर्मक प्रधानता बेसी अछि, आ मात्र सुंदरताए से काज नहीं चलत अछि। पहिने क होइए तखने खो होइए। तो जखन अपना सब कथा साहित्य दिस बढ़े छी, कोनो खिस्सा सुने छी, तो एक खिस्सा से बहुत रास गप भराइत अछि, बहुत रास मनोभाव अपन दृष्टिकोण बदलैत अछि। कोनो नाटक देख लै छी, कोनो दृश्य देख लै छी, ककरो कोनो समाज में जखन कोनो घटना घटैत अछि तो वह घटना के एकटा लेखनी के माध्यम से जखन हमर सबके बीच उपरसल जाइत अछि तो ओ मन मस्तिष्क पर ओकर बड गहीर प्रभाव होइत अछि। कथा साहित्य ओ विधा अछि जे यथार्थ जीवन के सबहक समक्ष आनि कऽ ठाड़ कऽ दैत अछि। कथा में आकलन, आवरण, आत्मीयता, आकर्षण आ आह्लाद पांचों तत्वक समावेश रहित अछि। एकर एकेटा उद्देश्य अछि जे मनोरंजनक संग संग जीवन सत्यक सामंजस्य आ पाठक लोकन लेल ओ कोना रोचक बन सकत, केना ओ रोचक बनत आ लोक ओकरा पढ़त, ओकरा बुझत, ओहिसँ सबके लाभ भेटतै। मैथिली साहित्यक सृजन विविध विधा में निरंतर होइत आबि रहल अछि। आयु वर्गक अनुसारे सेहो कथा लिखल गेल। नेना भुटका सब देशक भविष्य छथि। हुनक विकास परिवार आ समाजक गतिविधि पर आधारित होइत अछि। हमसब जेहन हुनका वातावरण दैत छियनि तेहन हुनकर व्यक्तित्वक विकास होइत छनि। पहिने नेना सब खिस्सा सुनै लेल कतेक ओ बिगड़ाइयो खाइ छलथि हैं, कहै छलियनि जे अहाँ सुति रहू, मुदा ओ सुतिते नहि छलथि। नहि, जाबे तक हमरा अहाँ खिस्सा नहि सुनायब ता धरि हम नहि सुतब। जाहिसँ हुनका में एकाग्रता आ कल्पना करबाक सामर्थ्य विकसित होइत छलनि। एहने तरहक खिस्सा हुनका सुनायल जाइत छल जैसे कि हुनका में नीक गुणक विकास भऽ सकनि, हुनका में नैतिकता के विकास भऽ सकनि, जाहिसँ हुनका में धैर्य, साहस, आत्मबल बढ़ि सकनि। संग संग सुतबै काल में सेहो हुनका लोरी गीत सुनायल जाइत छल। तऽ अपनो सब कियाक ने कार्यक्रम में सुनै छी ई गीत।

हाँ, तो वास्तव में जखन नैना रहै छी अपना सब, तो ओ जे समय होइए बड्ड नीक लगैत अछि, बुझाइत अछि एहने समय सदिखन रहै। मुदा समयक संग अपना सब आगू बढ़ैत चलि जाइ छी आ ओकरा बिसरल चलि जाइ छी अतीतके। तऽ आब कार्यक्रममे हमरा शब्द विमर्श नहि बिसरबाक अछि, तऽ बढ़ै छी शब्द विमर्श दिस। मुदा शब्द विमर्श दिस बढ़बासँ पहिने अपने सबसँ आग्रह जे कार्यक्रम केहन लगैत अछि, अपन सुझाव आ प्रतिक्रिया अवश्य पठाबी। तऽ हमर सभक कार्यक्रमक जे पता अछि से एक बेर कहि दै छी। कार्यक्रम सिंगरहार द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिनकोड अछि 8460004 आ ईमेल के पता अछि akashwanidarbhanga@gmail.com। तऽ आब रहै छी शब्द विमर्श दिस। अपने सबसे एक गोट इहो आग्रह जे कोनो प्रचलित शब्द बुझल हुए तऽ सेहो अपने सब सूचित करी।

आ ओकरा बिसरल चलि जाइ छी अतीतके। तऽ आब कार्यक्रममे हमरा शब्द विमर्श नहि बिसरबाक अइ तऽ बढ़ै छी शब्द विमर्श दिस। मुदा शब्द विमर्श दिस बढ़बासँ पहिने अपने सभसँ आग्रह जे कार्यक्रम केहन लगैत अछि अपन सुझाव आ प्रतिक्रिया अवश्य पठाबी। तऽ हमर सभक कार्यक्रमक जे पता अछि से एक बेर कहि दै छी। कार्यक्रम सिंगरहार द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड अछि 8460004 आ ईमेल के पता अछि akashwanidarbhanga@gmail.com। तऽ आबरै छी शब्द विमर्श दिस। अपने सबसे एक गोट इहो आग्रह जे कोनो प्रचलित शब्द बुझल हुए तऽ सेहो अपने सब सूचित करी। तऽ आ बढ़ै छी शब्द विमर्श दिस। एकटा शब्द अछि करताइक। देखियौ ने, विवाह ठीक केलहुँ, ओ छली है बड़की काकी, एहन करताइक रहक चाही जे सबटा ओ सम्हारि लेत, कोनो तरहक व्यवस्थामे कमी नहि आओल। एकटा शब्द अछि कहरब। एह, की कहू, तेहन ने ई घाव भेल जे एक माससँ कहरि रहल छी। एकटा शब्द अछि कठाइन, अप्रिय। केहन शब्द अहाँ बाजि देलहुँ जे हमरा बड़ अप्रिय लागल। गर्मीसँ तेहन मोन व्याकुल आ तंग भऽ गेल जे मोन एकदमसँ ऑल बॉल भऽ गेल। ऑल बॉल जे अपनासभ बेसी व्यवहार करै छियै, जखन बड्ड बेसी गर्मी बढ़ि जाइए तऽ मोन एकदमसँ व्याकुल भऽ जाइत अछि। एकटा शब्द अछि आह्लाद। एह, बड्ड आह्लाद छनि, एतेक आवेश करै छथि, बड्ड बेसी प्रसन्न जखन अपनासभ भऽ जाइ छै तऽ कहै छै ने बड्ड आह्लादित छथिन। तऽ आइ अपनासभ एहि शब्द विमर्शक सङ्ग अगला भेट धरिक लेल नीतूके दियौ आज्ञा। नमस्कार।

0: अभी आप मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरल में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक

0: मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
1: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है। और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
2: बेंगलुरु IIM वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में QS रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
3: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी।

0: और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांगी रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6,300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
2: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
3: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
1: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
4: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
0: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री

0: मंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
2: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मानसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगहम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses Indonesian Parliament, says India stands for freedom of navigation in the Indo-Pacific and follows the path of development, not expansionism. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari asserts ethanol blending program is scientifically proven and delivered significant economic and environmental benefits. Home Minister Amit Shah launches mission to plant 70 lakh saplings in Delhi, over 6,000 hectares of green ridge area to be developed into forest land. 3 persons killed and 6 go missing after landslide hits Wayanad tunnel construction site in Kerala. IMD forecasts heavy rain in several parts of North and South India over next 4 days. And in men's cricket, India to take on hosts England in the third T20 international of the 5-match series in Nottingham tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development, not expansionism.
4: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai, aur isliye हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
3: Here is more from a correspondent covering the Prime Minister's visit.
5: Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership

0: से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
1: जनाब शाह ने आज 300 इलेक्ट्रिक बसों का भी आगाज किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली हुकूमत राजधानी को सरसब्ज, साफ सुथरी और ज्यादा पायदार बनाने की समत में काम कर रही है। इस तकरीब में माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू और दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति प्रोजेक्ट का आगाज किया, जिसका मकसद 20 लाख किसानों और 20,000 से ज्यादा ज़रई कारोबारियों को बाइख्तियार बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए जनाब चौहान ने विकसित भारत के नजरिए को हासिल करने के लिए ज़राअत, खुशहाल गांव और खुशहाल किसान बनाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर ज़राअत ने मजीद कहा कि हुकूमत ने प्रगति प्रोग्राम के तहत 26,000 छोटे ज़रई कारोबारियों को तरबियत देने का फैसला किया है।
2: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
1: देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा के साथ एक मीटिंग की, ताकि रियासत में विकसित भारत जी राम जी और दीगर देही तरक्याती प्रोग्रामों के नफाज का जायजा लिया जा सके। उन्होंने ग्राम सभा की जेर क्यादत मनसूबों में अवामी फंड्स के शफाफ इस्तेमाल और ग्राम चौपाल मॉडल की पेशरफ का भी जायजा लिया, जिससे देही इलाकों में रोजगार पैदा करने में तेजी लाने में मदद मिलेगी। मीटिंग के दौरान जनाब चौहान ने बताया कि विकसित भारत जी राम जी के तहत अब तक राजस्थान को 445 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 200 करोड़ रुपए इस्तेमाल हो चुके हैं। केरलम में आज शदीद बारिश के बाद वायनाड जिले के कल्लाड़ी के करीब एक जेर जमीन सुरंग की तामीर के दौरान मिट्टी के तोड़े खिसकने से 3 लोगों की मौत हो गई। जेर जमीन फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है और उन्हें मैपाडी के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दीगर 6 मजदूर अब भी लापता हैं और इनके मलबे के नीचे फंसे होने का खदशा है। फायर और बचाव खिदमत और कुदरती आफात से निमटने की एजेंसियों की टीमों के जरिए बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आइंदा 3 से 4 रोज के लिए दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरलम, माहे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शदीद बारिश की पेशगोई की है। जनूब मगरबी मानसून आज गुजरात के बकिया हिस्सों और राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों की जानिब मजीद बढ़ गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: IMD ने इस माह की 13 तारीख तक शदीद से बहुत शदीद बारिश के साथ साथ जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, साहिली कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और जनूबी अंदरूनी कर्नाटक में इस माह की 13 तारीख तक शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कारेकल और तेलंगाना में आइंदा पीर के रोज तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। दिल्ली से ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
1: जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के ठाठरी इलाके में आज अलसुब बादल फटने के बाद हुई शदीद बारिश के सबब कई मकानात और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। हमारे नामा निगार ने बताया कि किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि उन्होंने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर डोडा से बात की है और जिला इंतजामिया को मुतासरा कुनबों को फौरी राहत और इमदाद पहुंचाने की हिदायत दी है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा ने आज उस वक्त बड़ी हुसूलियाबी हासिल की जब सालाना यात्रा के 5वें दिन पवित्र गुफा के दर्शन करने वालों की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि आज सपहर 3 बजे तक 20,537 यात्रियों ने गुफा के दर्शन कर लिए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा है कि भारत बहरीन इश्तराक लगातार वसअत पा रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने आज शाम बहरीन का अपना दो रोजा दौरा मुकम्मल कर लिया। अपने दौरे में

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में है।

0: बढ़िया।
1: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हिंदी वार्ता। वार्ता का विषय है पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका। वार्ताकार हैं हरिशंकर यादव।
0: पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। महिलाएं अपने बच्चों की तरह पेड़ और पौधों को सेवा कर रही है। आज़ादी के पहले से महिलाएं पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रयास करती रही है। आज पर्यावरण संरक्षण में महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। इतना ही नहीं, महिलाएं पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रही हैं। प्रकृति से प्यार महिलाओं में जन्मजात होता है। जहाँ वे आम घरों में अपनी छोटी छोटी कोशिशों के जरिए प्रकृति को सहेजने में अपना योगदान देती है, वहीं व्यवसाय या सार्वजनिक पहल में भी प्रकृति को बिना

से बचाने की सोच रखती है। महिलाएं अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता फैलाने और पर्यावरण के क्षरण के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की है। महिलाएं परिवार और समुदाय के स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। पर्यावरण के संरक्षण में भारतीय महिलाओं की महती भूमिका रही है। पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन में महिलाओं की भूमिका को अलग अलग विद्वानों ने परिभाषित किया है। कार्ल मार्क्स के अनुसार कोई भी बड़ा सामाजिक परिवर्तन महिलाओं के बिना नहीं हो सकता। कोफी अन्नान के अनुसार इस ग्रह का भविष्य महिलाओं पर निर्भर है। रेडियो डिक्लेरेशन में माना गया है कि पर्यावरण प्रबंधन एवं विकास में महिलाओं की भूमिका रही है। इतिहास से लेकर वर्तमान तक इस कथन को कई महिलाओं ने साबित भी कर दिया है। गौरा देवी, सुनीता नारायण, मेघा पाटेकर, अमृता देवी और तुलसी गौरा जैसी बहुत सी महिलाओं ने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये महिलाएं भारतीय समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनी है। मेघा पाटेकर की नर्मदा बचाओ आंदोलन और वंदना शिवा की नवधान्या आंदोलन की पर्यावरण बचाओ आंदोलन में अहम भूमिका रही है। महिलाओं ने आज़ाद भारत के बिगड़े पर्यावरण को बचाने, प्रकृति की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन को एक आंदोलन का रूप दिया। चिपको आंदोलन का नेतृत्व महिलाओं ने ही किया था, यह किसी से छुपा नहीं है। गौरतलब है कि उत्तराखंड के चमोली जिले में मजदूरों को करीब 2500 पेड़ों को काटने के लिए भेजा गया था। पेड़ों को काटने से बचाने के उद्देश्य से रैनी गांव की महिलाएं गौरा देवी के नेतृत्व में पेड़ों से चिपक गई थीं। उनका कहना था कि पेड़ों को काटने से पहले उन्हें काटा जाए और मजदूरों और कर्मचारियों को पेड़ों को नहीं काटने और चले जाने की सलाह दी, परंतु कर्मचारी नहीं माने। गौरा देवी ने कहा, जंगल हमारा मायका है और पेड़ ऋषि है। यदि जंगल कटेगा तो हमारे खेत मकान के साथ मैदान भी नहीं रहेंगे। जंगल बचेगा तो हम बचेंगे। जंगल हमारा रोजगार है। इस प्रकार इस आंदोलन में महिलाओं को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। फलतः वन कर्मचारियों और मजदूरों को वापस लौटना पड़ा। यह संदेश भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में गया। 1983 में चिपको आंदोलन से प्रेरित होकर दक्षिण कर्नाटक में भी महिलाओं ने अपिको आंदोलन का सूत्रपात किया। यह आंदोलन लगातार 38 दिनों तक चला और सरकार को मजबूर होकर अपना आदेश वापस लेना पड़ा। उत्तराखंड में महिलाओं ने रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने पेड़ों की रक्षा धागा बांधते हुए उनकी रक्षा का संकल्प लिया। इस आंदोलन के कारण महिलाओं का पेड़ों से भाइयों के जैसा रिश्ता बना। इस आंदोलन के कारण वन विभाग को पेड़ काटने की कार्रवाई को रोकना पड़ा। हालांकि चिपको आंदोलन के 100 साल से भी अधिक पहले इसी प्रकार का आंदोलन 1730 में राजस्थान के खेजरली गांव में हुआ था, जो पर्यावरण चेतना का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हमारे ग्रह को नष्ट करने वाली बढ़ती पर्यावरणीय समस्याओं के सामने महिलाएं विशेष रूप से उनके प्रति संवेदनशील हैं। उन्होंने हमेशा नाजुक परिस्थिति तंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने, प्राकृतिक आपदाओं से बचने और प्राकृतिक संसाधनों को स्थायी रूप से व्यवस्थित रखने में एक महती और आवश्यक भूमिका निभाई है। महिलाएं वैदिक काल से ही पर्यावरण संरक्षण की पक्षधर रही है। हर भारतीय घर में तुलसी, केले का पौधा होना, उनका पूजन हमारे पर्यावरण से जुड़ाव को ही परिलक्षित करता है। प्रातः काल को सूर्य अर्घ्य देना, चंद्रमा का पूजन, जल का पूजन, भूमि पूजन सहित पर्यावरण के प्रत्येक जैविक घटक के प्रति सम्मान का सूचक है। पर्यावरण संरक्षण में भारतीय महिलाओं ने सदैव ही योगदान दिया है। जहां पर्यावरण को हानि पहुंचाने का कार्य हुआ है, वहां मुखर विरोध हमारी पर्यावरणविद महिलाओं सहित सभी ने किया है। भारतीय इतिहास में ऐसे कई पर्यावरण संरक्षण आंदोलन हुए हैं जिनकी प्रणेता महिलाएं रही हैं। उनमें से कुछ प्रमुख हैं। खेजरली आंदोलन। राजस्थान में खेजरली आंदोलन पर्यावरण चेतना का अतुलनीय उदाहरण है। राजस्थान के खेजरली गांव में हुआ यह आंदोलन गांव के स्थानीय लोगों द्वारा किया गया था।
सन 1730

में जोधपुर के महाराजा द्वारा बनाए जाने वाले महल के निर्माण हेतु जब लकड़ी की आवश्यकता हुई तो राजा के सिपाही कुल्हाड़ी लेकर खेजरली गांव में पहुंचे, जहां खेजरी के वृक्ष बहुतायत से लगे हुए थे। किंतु गांव की महिला अमृता देवी सिपाहियों का विरोध किया और वृक्षों को काटने से बचाने के लिए अपनी 3 पुत्रियों सहित वृक्षों पर लिपट गई और वृक्ष बचाने हेतु अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस खबर के प्रचारित होते ही 363 लोगों ने भी वृक्ष संरक्षण हेतु अपने प्राणों को त्याग दिया। इस घटना को रिचर्ड वर्वे द्वारा संपूर्ण विश्व में पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण देते हुए प्रचारित किया गया। चिपकू आंदोलन, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए की भावना पर आधारित यह आंदोलन तात्कालिक उत्तर प्रदेश के चमोली स्थान से सन 1973 में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन के प्रणेता श्री सुंदरलाल बहुगुणा थे, किंतु महिलाओं ने इस आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लगभग 1 दशक तक चले इस पर्यावरण संरक्षण आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण की महत्ता को जनसमान तक पहुंचाया। इसे इको फेमिनिस्ट आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी कार्यकर्ता अधिकांश महिलाएं ही थी। गोरा देवी के नेतृत्व में 26 मार्च 1974 को रेनी के वृक्ष काटने आए लोगों को चमेली गांव की महिलाओं ने यह कहकर भगा दिया कि जंगल हमारा मायका है, हम इसे काटने नहीं देंगे। नवधान्या आंदोलन, इस आंदोलन के अंतर्गत जैविक खेती के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाता है, किसानों को बीज वितरित किए जाते हैं, उपभोक्ताओं को जंग फूड और हानिकारक कीटनाशकों और उर्वरकों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने व जैविक पोषक युक्त खाद्य पदार्थों के उत्पाद व उपयोग की जानकारी देते हैं। इस आंदोलन का उद्देश्य भोजन संपन्न नगर बनाना है, साथ ही इस आंदोलन के माध्यम से भारत की जैव विविधता के संरक्षण का भी कार्य किया जा सकता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रणेता के रूप में प्रसिद्ध पर्यावरणविद मेधा पाटेकर गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। सरदार सरोवर परियोजना के कारण वर्धा के स्थानीय पर्यावरण संरक्षण आदिवासियों के अधिकार के लिए आवाज़ उठाने वाली मेधा पाटेकर को पर्यावरणविद के रूप में अधिक जाना जाता है। वनों में महिलाएं संग्रहणकर्ता, संरक्षक व प्रबंधक तीनों की ही भूमिका निभाती हैं। महिलाओं की महत्ता को देखते हुए ही राष्ट्रीय वन नीति 1988 में महिलाओं की सहभागिता को महत्व दिया गया है। राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में महिलाओं ने ऊसर व रेतीली जमीनों को हरे भरे खेतों में बदल दिया। महिलाओं द्वारा संचालित सेवा मंडल संस्था को 1991 में पर्यावरण संरक्षण हेतु केपी गोयन का पुरस्कार दिया गया। बेटी बचाओ पर्यावरण बचाओ की भावना के साथ सन 2006 में राजस्थान के राजसमंदर जिले के एक ग्राम में बेटी के जन्म पर 111 वृक्ष लगाने का नियम बनाया गया। इस गांव को 2008 में निर्मल ग्राम पुरस्कार भी मिला है। आज भी महिलाएं अपने घरों में अगर छोटी सी खेती करती है, वह भी उनके पर्यावरण संरक्षण का ही तरीका है। इसमें वे एक छोटे से प्रयास से प्रकृति को सजाती है और पर्यावरण का संरक्षण करती है। महिलाएं शौक के लिए ही अपने गार्डन को सजाती हैं, वहीं कुछ महिलाएं इसे मुहिम बना लेती हैं और पर्यावरण के संरक्षण में अपना जीवन लगा देती हैं। कार्ल मार्क्स का कथन भी है, कोई भी बड़ा सामाजिक परिवर्तन महिलाओं के बिना नहीं हो सकता है। पर्यावरण प्रबंधन और सतत विकास में महिलाओं का योगदान बेहद जरूरी है। हमेशा से महिलाएं पर्यावरण की पक्षधर रही है। हर घर में तुलसी, केले का पौधा होना और पीपल के पेड़ का होना, ये सभी महिलाओं के पर्यावरण से जुड़ाव को ही दर्शाता है। पर्यावरण संरक्षण में महिलाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है। जहां भी पर्यावरण को हानि पहुंचाने का काम हुआ है, महिलाएं उसका पुरजोर विरोध किया है। महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करते हुए वंदना लिखती है, जिन महिलाओं ने चिपको को एक बड़े आंदोलन में बदलने के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाई, उनका नाम मीराबेन, सरलाबेन, विमलाबेन, हिमा देवी, गौरी देवी, गंगा देवी, बचना देवी, इतबारी देवी, छमुन देवी और कई अन्य महिलाओं के नाम शामिल हैं। वंदना बताती है कि सुंदरवाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, घनश्यामपुर सैलानी और धूम सिंह नेगी और अन्य आंदोलन से जुड़े पुरुष इन्हीं महिलाओं के छात्र और अनुयायी रहे हैं।

महिलाएं अपने अपने स्तर से पर्यावरण के हित में काम कर रही है, क्योंकि महिलाओं का प्रकृति से जुड़ाव अनमोल होता है। इतिहास गवाह है कि भारत की महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। महिलाओं में न केवल पेड़ पौधे अपितु पशु पक्षियों के प्रति भी संरक्षण की संकल्पना प्राचीन काल से ही विद्वान है। यही नहीं, जल स्रोतों के प्रति भूमि संरक्षण की भावना महिलाओं में प्राचीन काल से ही चली आ रही है। जैसे गंगा पूजन, कुओं की पूजन करना अथवा तालाब की पूजन करना हमारी भारतीय संस्कृति में रची बसी महिलाओं द्वारा प्रकृति संरक्षण अथवा पर्यावरण संरक्षण की यह भावना पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई है एवं आज भी देखने को मिलती है। वन, मिट्टी एवं जल से महिलाओं का सीधा एवं गहरा संबंध है। यही कारण है कि महिलाओं को ही इसका संरक्षक माना जाता है। राजस्थान में उदयपुर के निकट ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ऊसर एवं रेतीली भूमि को हरे भरे खेतों में बदल रही है। सेवा मंडल एक संस्था ने पिछड़े भील

0: वन, मिट्टी एवं जल से महिलाओं का सीधा एवं गहरा संबंध है। यही कारण है कि महिलाओं को ही इसका संरक्षक माना जाता है। राजस्थान में उदयपुर के निकट ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ऊसर एवं रेतीली भूमि को हरे भरे खेतों में बदल रही है। सेवा मंडल एक संस्था ने पिछड़े भील समुदाय को इतना अधिक प्रेरित किया है कि अब वह सैकड़ों वर्षों से वीरान पड़ी भूमि को हरा भरा बनाने में जुट गया है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण में भारतीय महिलाओं का योगदान उल्लेखनीय है। इसलिए प्रकृति की संसाधनों का संरक्षण और पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए योजना और प्रशिक्षण में महिलाओं को शामिल किए बिना प्रकृति संरक्षण की आशा बेमानी होगी।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता, विषय था पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका। वार्ताकार थे हरिशंकर यादव। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

अभी आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से एक फनकार कार्यक्रम सुन रहे हैं और आज के फनकार हैं आशा भोसले।

0: छू।
1: अचानक ये बाहर जाने का प्रोग्राम कैसे बना लिया आपने?
2: क्यों भाई, हनीमून पे जा रहे हैं, कोई बुरी बात है क्या?
1: आप भाग तो नहीं रहे हैं किसी से?
2: किससे?
1: आप जानते हैं किससे?
2: देखो सुधा, ये दिन रात माया का ख्याल हम दोनों के बीच अच्छा नहीं है। याद है एक बार पंचगनी में तुमने मुझसे कहा था कि जो सच है और सही है सिर्फ वही कीजिए। यकीन मानो सिर्फ वही कर रहा हूं। मैं माया से प्यार करता था, ये सच है, और उसे भूलने की कोशिश कर रहा हूं, ये सही है। लेकिन इसमें तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि मुझसे ज्यादा वो तुम्हें याद रहती है। सुधा, माजी को माजी ना बनाया
1: माजी?
2: तो माजी पास्ट, बीता हुआ, जो बीत गया उसे बीत जाने दो, उसे रोक के मत रखो।

अभी आप सौदागर फिल्म का यह गीत सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में। इसी गीत के साथ आज के फनकार कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त, नमस्कार। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। वक्त हो चला है फिल्म संगीत का।

अब सुनिए धर्मवीर फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म धर्मवीर का यह गीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हम आपको अब सुनवाते हैं महेंद्र कपूर की आवाज़ में, फिल्म है हमराज।

मंगेशकर की आवाज़ में। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म हमराज का यह गीत, महेंद्र कपूर की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे हमराज फिल्म का यह गीत। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

0: रात्रि के 11 बजने ही वाले हैं, अब आकाशवाणी के पटना दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: भवतारिणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कामराज पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि यह उपलब्धि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है जो भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गृह मंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है।

इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिस्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सिएटल में अमरीका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।